मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के

0: बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर हमें शांति, धैर्य, वैराग्य और आंतरिक शक्ति का मार्ग दिखाते हैं। महादेव कहते हैं कि सब कुछ नश्वर है, इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। श्रोताओं, लीजिए सुनिए सोनू निगम के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन भजऊं जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है और सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। और अंतर मन तो सब कुछ जानता है कि हम क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रभु का नाम व्यक्ति को उसके सभी जन्मों के किए गए पापों से मुक्त करता है। तो हे मन, जप ले हरि का नाम। श्रोताओं लीजिए सुनिए जसविंदर नरूला के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

राम का नाम एक बार जप लिया तो उसकी धुन लग ही जाती है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हरिहरन के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

श्रुतो इसी भजन के साथ अब आराधना कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप सरदार भगत सिंह के विचार सुनेंगे।
1: 1931 के 23 मार्च को सायंकाल ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर कांड के राजद्रोह में सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव, इन तीन राष्ट्रभक्तों को फांसी दी थी। लाहौर कांड का संबंध पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या से था। ये सैंडर्स वही था जिसने सन 1928 में लाहौर स्टेशन पर साइमन कमीशन का विरोध करने पर महान राष्ट्रसेवी लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसवाई थीं कि एक महीने के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। इन क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने सैंडर्स की हत्या कर उसका बदला चुकाया था। इनमें शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम था, पर वे पकड़े नहीं जा सके थे। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली के असेंबली भवन में बम फेंक कर भारत के क्रांतिकारी युवकों का सिंहनाद ब्रिटिश हुकूमत को सुनाया था। पहली बार भगत सिंह ने असेंबली भवन के दरवाजे पर बम फेंकने के साथ इनकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दो नारे लगाए थे। इस बम कांड के बाद उन्होंने अपने आप को वहीं गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला। भगत सिंह ने बलवंत सिंह इस छद्म नाम से पत्रकारिता भी की थी। वे देश की स्वतंत्रता चाहते थे तथा देश में समाजवादी प्रजातंत्र देखना चाहते थे। इसीलिए जिस दल का गठन किया गया था उस दल का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमें भगत सिंह के विचार उनकी पत्रकारिता के लेखों में तथा जेल से लिखी चिट्ठियों में मिलते हैं। उनसे ये प्रकट होता है कि स्वतंत्र भारत की कैसी तस्वीर सरदार भगत सिंह के हृदय में थी। सरदार भगत सिंह अखंड भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। उनके क्रांतिकारी साथियों में भारत के उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी सभी क्षेत्रों के लोग थे। भगत सिंह मानव मात्र को अपना भाई समझते थे तथा भारत को हिमालय से समुद्र तक एक राष्ट्र मानते थे, जिसमें कई जातियों, धर्मों तथा भाषाओं के लोग निवास करते हैं। इन सभी का राष्ट्र धर्म एक है, ये उनका विचार था। वे आदर्श क्रांतिकारी नेता थे। उनकी स्वतंत्रता ये नहीं थी कि गोरों का शासन समाप्त हो जाए और भारतीय शासन करने लगे, वरन वे चाहते थे कि समाजवादी व्यवस्था कायम हो, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, धर्म और संप्रदाय के नाम पर भोली भाली जनता बेवकूफ न बनाई जाए। वे सिख होकर भी मानव मात्र को अपना भाई समझते थे। 2 फरवरी 1931 को जेल से गुप्त रूप से उन्होंने साथियों के नाम एक पत्र भेजा था। उस समय भगत सिंह के सामने गांधी इरविन समझौते का भी खाका था, जो इन क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं था। उस पत्र की कुछ पंक्तियों में ये कहा जाता है कि भगत सिंह के हृदय में

आज़ादी की कितनी बड़ी तमन्ना थी उसका हमें पता चलता है। राजनीतिक संग्रामों का समझौता एक अत्यावश्यक अंग है। किसी भी कौम के लिए जो किसी अत्याचारी शासन के विरुद्ध खड़ी होती है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी चाल थोड़े समय के लिए धीमी हो तो उसके नेता पीछे पड़ जाएं, किंतु जनता की बढ़ती हुई ताकत समझौतों को ठुकरा कर उस आंदोलन को जययुक्त करा देती है। नेता पीछे रह जाते हैं, आंदोलन आगे बढ़ जाता है। अपने भाई करतार सिंह को उन्होंने पत्र में लिखा था, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे या न रहे। अर्थात मेरे बलिदान के पीछे स्वतंत्रता के विचारों की बिजली चमकेगी, ये मुट्ठी भर मिट्टी का नश्वर शरीर रहे या न रहे। उनके विचार और भाव बहुत सत्य थे। भगत सिंह के नाम के पीछे आज भी राष्ट्रीयता के भावों की बिजली चमकती है। विचार विंदु का

0: बढ़ जाएं, किंतु जनता की बढ़ती हुई ताकत समझौतों को ठुकराकर उस आंदोलन को जययुक्त करा देती है। नेता पीछे रह जाते हैं, आंदोलन आगे बढ़ जाता है। अपने भाई करतार सिंह को उन्होंने पत्र में लिखा था, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है, फानी रहे या न रहे। अर्थात मेरे बलिदान के पीछे स्वतंत्रता के विचारों की बिजली चमकेगी, ये मुट्ठी भर मिट्टी का नश्वर शरीर रहे या न रहे। उनके विचार और भाव बहुत सत्य थे। भगत सिंह के नाम के पीछे आज भी राष्ट्रीयता के भावों की बिजली चमकती है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप सरदार भगत सिंह के विचार सुन रहे थे और इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे ऊसर भूमि में सुधार कैसे करें, और इस विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश यादव से बातचीत किया है चंद्रजीत यादव ने।
1: किसान भाई कहिया थे कि भाई माटी ही अपन धन है, माटी में भैया हमेशा खेती बाड़ी के काम करेगी। तो निश्चित तौर पर भाई माटी अगर ठीक रहा है तो अच्छी भाई जो है पौधन के बढ़वार होता है, उत्पादन भी अच्छा मिलत है। लेकिन अगर ऊसर भूमि हो भैया, जौन के अपने देश में ढेर सारी जमीन भैया ऐसा बाटे, एकर अगर सुधार किया जाए तो हम समझते ही काफ़ी कुछ जो समस्या बाटे भाई जमीन के वो दूर हो सकत है। तो ऊसर भूमि के सुधार कैसे किया जाए भाई, देखा यही विषय पे डॉक्टर वेद प्रकाश यादव भैया जो उनकी मृदा वैज्ञानिक हैं, भैया से जाना जाए कि कैसे ऊसर भूमि सुधार किया जाए, भैया बताओं।
2: हमारे देश में लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि लवणों से प्रभावित है, जो सदियों से बंजर पड़ी है।
1: जी,
2: भारत के किसी अन्य राज्य की तुलना में लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल लगभग 12.5 लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में है।
1: जी,
2: हमारे यहाँ लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियों को ऊसर रे अथवा कल्लर के नाम से जाना जाता है।
1: तो भैया ये जो ना जमीन होगी बाटी, इनका कैसे सुधार किया जाए, पहले तो यही जानना चाहब कि जमीन ऊसर हुई काहे की जात बाटे।
2: देख किसान भाइयों, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियाँ आमतौर पर उन क्षेत्रों में बनती हैं जहाँ वर्षा कम होती है एवं वाष्पीकरण अधिक होता है।
1: जी,
2: मृदा जल के साथ घुलनशील लवण सतह पर आ जाते हैं, जहाँ से पानी तो उड़ जाता है परंतु लवण मिट्टी की सतह पर जमा हो जाते हैं। सूखे मौसम में मिट्टी की सतह पर लवणों की पपड़ी सी नजर आती है। इन लवणों से सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट एवं कार्बोनेट मुख्य होते हैं।
1: तो ये तो कारण रहा भाई जवन आप तत्वों के बात कर बाटे, कौन कौन तत्व ऐसा है जवन की ज़्यादा प्रभावित कर बाटे ऊसर जमीन बनावे में।
2: देखिए, ऊसर भूमि में विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण भूमि के भौतिक व रासायनिक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पीएच मान अधिक हो जाता है। पीएच मान अधिक होने के कारण पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, जस्ता, पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
1: जी जी,
2: जिससे फसल उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
1: तो इस तरह से भाई प्रभाव डालत है, ये बताओ कि फसलन पे का कुछ प्रभाव अगर वही जमीन में खेती की जाए तो कैसे पैदावार ना हो पावत, पौधन बढ़वार काहे ना हो पावत।
2: देखिए, मृदा घोल का प्रसरण दाब बढ़ जाने के कारण पौधों के लिए जल की उपलब्धता बहुत घट जाती है, जिससे मिट्टी में नमी रहने पर भी जड़ों पानी का अवशोषण नहीं कर पाती हैं।
1: जी,
2: मिट्टी घोल में लवणों के कारण सोडियम एवं बोरान की उपलब्धता बढ़ जाने के कारण पौधों के शरीर में इनकी बड़ी मात्रा जमा हो जाती है तथा मैग्नीशियम, मैंगनीज एवं लोहा की उपलब्धता घट जाती है।
1: जी जी,
2: मृदा लवणता बढ़ने के साथ ही फसलों की उपज में भी कमी आने लगती है।
1: तो ऐसी स्थिति में भाई अपने यहाँ ढेर सारी जमीन बा ऊसर बाटे, ओकर का कुछ प्रबंधन किया जाए भैया कि उसी कुछ फसल और पौधन को हमें लेके अच्छी उसी जो है पैदावार ली जा सकत है।
2: ऊसर भूमि सुधार के लिए सबसे पहले तो जल निकास का उचित प्रबंध बहुत आवश्यक है।
1: जी जी,
2: जहाँ कहीं भी प्राकृतिक रूप से जल निकास नहीं हो पाता है वहीं भू जल स्तर के निकट आ जाता है। कृत्रिम रूप से जल का निकास किए बिना ऊसर भूमि का सुधार संभव नहीं है।
1: जी जी,
2: जल निकास के लिए सामान्यतः 3 तरह की विधियां व्यवहार में लाई जाती हैं, जिसमें पहला है पृष्ठीय जल निकास, जिसमें भू सतह पर नालियां बनाई जाती हैं और अतिरिक्त जल को बाहर निकाल दिया जाता है।
1: जी जी,
2: दूसरा है अवमृदा जल

0: निकास, जिसमें गहरी नालियां बनाकर अतिरिक्त जल को व्यापक रूप से निकाला जाता है।
1: जी।
0: तीसरा है नलकूपों से पंप द्वारा जल निकास, इस विधि द्वारा इच्छा अनुसार गहराई तक भू जल स्तर को नीचे ले जाया जा सकता है।
1: जी जी।
0: इस विधि में 6 इंच व्यास वाले नलकूप से यदि लगातार पंप द्वारा पानी निकाला जाए तो 1 किलोमीटर व्यास वाले क्षेत्र के भू जल स्तर को नीचे गिराया जा सकता है।
1: अच्छा, जौन ये क्षारी तत्व बाटे जौने कि भाई कारण जौन है मृदा जौन है उस रेली होत बे, एका कैसे हटावा जाए, कैसे एका हटाई के एका सुधार किया जा सकत है?
0: देखिए, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है नवड़ों का निछालन।
1: जी।
0: तो निछालन क्रिया के अंतर्गत घुलनशील लवण को जड़ क्षेत्र से हटाने के लिए काफ़ी पानी का उपयोग किया जाता है। लवण पानी में घुलकर मृदा संस्तरों से होकर जड़ क्षेत्र से दूर चले जाते हैं, जहाँ से केशकीय गति द्वारा लवण पुनः ऊपर नहीं आ पाते। निछालन हेतु खेत का समतल होना अति आवश्यक है। इसके अलावा एक क्रिया होती है फ्लशिंग, निर्वाधन। निर्वाधन क्रिया में घुलनशील लवणों को पानी के साथ बहाकर खेत के निचले भाग में ले जाया जाता है, जहाँ से पृष्ठी नालियों द्वारा उन्हें खेत से बाहर किया जाता है। परंतु यह विधि वहीं उपयोगी जहाँ भूमि ढलान पर हो।
1: भैया, जब ना निछालन विधि बाटे इनमें जल के गुणवत्ता पे का कुछ कहा चाहिए?
0: देखिए, यह सही है कि लवण रहित जल से अधिक अच्छा और कोई भी जल नहीं हो सकता, पर यह भी सही है कि पूर्णतः लवण रहित जल सभी स्थानों पर पाना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसलिए जल यदि लवणीय हो तो जल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए।
1: तो ऐसे काफी कुछ सुधार हो सकता है,
0: इससे काफी कुछ सुधार हो सकता है। निछालन का समय होता है,
1: हाँ।
0: आमतौर पर गर्मी के दिनों में मई जून में निछालन करना अति लाभदायक पाया गया है। परंतु जहाँ कहीं भी पानी की कमी पाई जाती है वहाँ गर्मी में निछालन संभव नहीं हो सके तो वर्षा ऋतु में निछालन क्रिया करना लाभदायक होता है।
1: एक चीज भैया हम आपसे जानना चाहते बटे, जैसे कुछ जवन भाई उस रीली जमीन में कुछ खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में या कहलिया रासायनिक पदार्थ के रूप में डाला जाए तो उसी भी का उसर सुधार हो सकत है?
0: जी देखिए, इसके लिए उसर भूमि को सुधारने के लिए ऐसे सुधारकों का प्रयोग किया जाता है जो अम्लीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।
1: जी।
0: ये सुधारक अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
1: देखिए,
0: अकार्बनिक जो होते हैं उसमें जिप्सम, गंधर, फेलस सल्फेट, अल्मोनियम सल्फेट, चूना पत्थर प्रमुख अकार्बनिक मृदा सुधारक हैं।
1: जी, तो इन्हन के इस्तेमाल कैसे करें किसान भाई?
0: देखिए, इन सभी मृदा सुधारकों में जिप्सम सबसे अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय विधि है। मृदा सुधारकों के प्रयोग से पहले यह आवश्यक है कि भूमि को समतल करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मेड़बंदी कराएं, जिससे पानी का रिसाव ठीक प्रकार से हो सके।
1: जी जी।
0: देखिए, जिप्सम का अगर प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई तो सर्वप्रथम मिट्टी की जाँच कराकर यह जान लें कि कितनी मात्रा में जिप्सम का प्रयोग करना आवश्यक है।
1: जी।
0: परंतु मिट्टी जांच संभव न हो तो साधारणतः 12 से 15 टन जिप्सम प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं।
1: 12 से 15 टन प्रति बढ़ के 4 बीघा में?
0: जी।
1: अच्छा।
0: अब जिप्सम को प्रयोग करने के लिए मिट्टी की सतह पर फैलाकर 10 सेंटीमीटर गहराई तक उसको अच्छी प्रकार मिलाते हैं।
1: अच्छा।
0: इसके बाद 15 से 20 दिनों तक पानी भरा रखते हैं, 6 इंच ऊंचाई तक पानी भरा रखते हैं।
1: जी।
0: इसके बाद खरीफ ऋतु में धान एवं रबी की में गेहूं की फसल लेनी चाहिए।
1: जी, जी।
0: और यह फसल चक्र लगातार 3 से 4 वर्षों तक लेने से ऊसर भूमि का सुधार हो जाता है।
1: अच्छा, तो इस तरह से जोने तरह से बतावत बाटे जिप्सम अगर खेत में फैला दे ही और फैलाए के बाद पानी लगा दे ही तो का उसमें जौन जौन क्षारी तत्व होते भाई वो जमीन के नीचे कुछ चला जाते हुई जौन से माटी जौन हो जहाँ की जड़ फैले थी उनका कुछ कम तत्व मिल पाई?
0: देखिए, इससे क्या होता है कि जो लवण होते हैं वो जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं।
1: जी जी।
0: और मृदा में चले जाते हैं।
1: जी जी।
0: जिससे उसका प्रभाव नहीं हो पाता है।
1: तो इस तरह से कुछ सुधार किया है इसे?
0: जी। और देखिए, कुछ कार्बनिक सुधारक भी हैं।
1: हाँ, बता दीजिए।
0: जैसे ऊसर भूमि के सुधार के लिए फाड़ में यार्ड मनोर, सीरा, गन्ने की खोई, हरी खाद, फसलों के अपशिष्ट भाग तथा कुछ खरपतवार।
1: जी जी।
0: ये जो है इनको अच्छी तरह से खेत में फैला करके जुताई करके और लगातार इसमें पानी भर के सड़ा करके।
1: जी।
0: और लवणों को की कभी काफ़ी जो है इससे क्या होता है कि इसमें अम्लीय गुण पैदा होते हैं।
1: जी जी।
0: और जो लवण होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा काफ़ी कम हो जाते हैं।
1: तो इसी उत्साह सुधार में
0: इसे उस सुधार
1: है सहायता मिलत है।
0: जी।
1: एक चीज़ और जानना चाहिए भैया, जिसे कहा जाता है उस जमीन के पानी जो खेत में जाए वह उसरीली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कैसे किसान भाई इनको बचे चाहे?
0: देखिए, इसके लिए आप जल निकास वहीं करें जहाँ पर
1: जी
0: कि जैसे नाले से बाहर चला जाए, किसी दूसरे के खेत में न जाए।
1: अच्छा, ये ध्यान दे जाए,
0: ये ध्यान दे रखना चाहिए।
1: तो भैया आप आए ना और इतना बढ़िया जानकारी दें कि कैसे उस सुधार किया जाए, ये सब जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

कृषि जगत कार्यक्रम में अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे ऊसर भूमि में सुधार कैसे करें, और इस विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश यादव से बातचीत किया चंद्रजीत यादव ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: श्रोताओं लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर यशवंत कुमार की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है याटिका में फिजियोथेरेपी से उपचार।
1: याटिका आज बहुत कॉमन समस्या हो गई है। याटिका एक ऐसा लक्षण है जिसमें कमर से दर्द शुरू होता है एवं जांघ के पिछले हिस्से से होता हुआ नीचे की तरफ पैर में जाता हुआ महसूस होता है। यह अधिकतर 40-45 वर्ष के बाद शुरू होता है। महिलाएं एवं पुरुष दोनों प्रभावित होते हैं। इसके होने का जो कारण होता है, रीढ़ की हड्डी हमारी जो बनी है उसमें हर एक वर्टिब्रे के बीच में डिस्क लगा होता है जिसमें फ्लूइड के रूप में न्यूक्लियस पल्पोसस होता है जो हमारे वजन को लेने का काम जो है करता है, स्प्रिंग टाइप का काम करता है। तो जब यह न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की तरफ आ जाता है और सियाटिक नर्व को किसी तरीके से दबाने लग जाता है तो ये दर्द शुरू होता है। हड्डियों का कमज़ोर होना भी इसका कारण हो सकता है। एक ही अवस्था में अगर हम अधिक देर तक बैठ करके जैसे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या और कोई भी काम कर रहे हैं तब भी हो सकता है, ज़्यादा खड़े रह जाए तब भी हो सकता है, वजन अधिक होना भी इसका कारण हो सकता है, व्यायाम ना करना भी कारण हो सकता है, अचानक झटके के साथ भारी वजन को उठा लेने के कारण भी हो सकता है, कार या मोटरसाइकिल को ज़्यादा देर तक ज़्यादा लंबी दूरी तक चलाने से हो सकता है, डायबिटीज की समस्याओं में भी इसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका जो लक्षण आता है मुख्य रूप से आप देख रहे हैं दर्दी होता है, सुन्नपन भी कभी कभी अगर ज़्यादा उस सियाटिक नर्व का दबाव हो जाए तो सुन्नपन हो जाता है, मसल्स की कमजोरी हो जाती है, चलने फिरने में परेशानी हो जाती है। तो इसमें जो फिजियोथेरेपी कराने का उद्देश्य रहता है कि दर्द को कम करना है और सूजन इसमें आ जाती है, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में, तो इन्फ्लेमेशन को कम करना है, नर्व का दबाव कम करना है, मसल की पावर बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग कमर में लंबर ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी का प्रयोग करते हैं जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जाकर सिकाई करती है जिससे नस पर होने वाला दबाव में जो सूजन रहती है वो कम होती है। IFT मशीन लगाते हैं, इंटरफ्रेंशियल थेरेपी, जो दर्द को कम करने और हीलिंग को करने में सपोर्ट करती है। इसमें जो मांसपेशियों के ताकत बढ़ाने की कसरत की जाती है, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज के रूप में इसको हम लोग जानते हैं या कोर स्ट्रेंथनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आप पेट के बल लेट जाएं, एक पैर को हिप जॉइंट से सीधा उठा करके करीब 15 डिग्री के एंगल पर रोक लें और 10 गिनती तक गिनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः वापस लाते हुए दूसरे पैर को इसी तरीके से उठाना है कि पेट के बल लेट करके ही पैर को सीधा ऊपर उठा करके फिर 10 सेकंड तक रोक के रखना है। दूसरी कसरत में हाथ दोनों बगल में रहेंगे, सीना और गर्दन को सिर को उठाते हुए नाभि बिस्तर से टच रहे,

0: सेकेंड तक इसको भी रोक के रखना है, जिसको कि भुजंगासन भी हम लोग जानते हैं। अब पेट के बल लेट करके ही दोनों हाथ पीठ के ऊपर रख लेना है, कमर के ऊपर, फिर सीने और गर्दन को ऊपर की तरफ उठा करके 10 सेकंड तक रोक के रखना है। इसी अवस्था में ही दोनों पैरों को मोड़ लें, एंकल के पास से दोनों हाथों से एंकल को पकड़ लें और सीने और गर्दन को सिर को ऊपर उठा करके रोक के रखें 10 सेकंड के लिए। पीठ के बल लेट करके दोनों हिप जॉइंट को अपनी तरफ मोड़ करके 10 सेकंड तक रोक करना है। इस तरीके से आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो आप निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर यशवंत कुमार की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था साटिका में फिजियोथेरेपी से उपचार, और इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और अब हम आपको जानकारी दे दें दिन भर प्रसारित होने शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा और रात 8:15 पर पूरी उड़ीसा में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे। दोनों कार्यक्रम का प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और अब हम आपको जानकारी दे देते हैं प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनेंगे 7:00 और फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन सुनिएगा और 12:15 पंडित अनोखे लाल का तबला वादन हम आपको सुनवाएंगे। 10:30 गौरी शंकर का क्लियोरिनेट वादन आप सुनेंगे। नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम का वक्त होगा 8:45 और प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की है। 9:50 पर नमिता यादव के स्वर में गाए भजन आप सुनेंगे। 10:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम और 10:30 लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं फूल चंद्र यादव, मुंशीराम बहादुर और साथी और कुंवर सिंह के स्वर में गाए लोकगीत का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम होगा लोकगीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00, प्रस्तुति दीपक राय की है और बोलती नगमे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे दिन में 11:30। 12:30 आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम आपकी पसंद में प्रस्तुति मधु कुमार की है। 12:15 पनघट कार्यक्रम में बहनी बात करेंगी नारी की समाज में भूमिका विषय पर। साथ ही उषा बाला की बातचीत सुनिएगा सिलाई कढ़ाई के हुनर से आत्मनिर्भरता। सावित्री श्रीवास्तव के स्वर में गाए लोकगीत का आनंद लीजिएगा और रसोई घर में पकेगी चना दाल की कढ़ी। युवाणी कार्यक्रम में 5:15 चर्चा होगी नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी। प्रेरणा पुंज में अरुणा आसफ अली पर होगी बात। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 बात होगी जल संरक्षण पर। लोकगीत राजमणि धमाल और साथियों के स्वर में और मेरी खेती मेरी बात में किसान चर्चा में प्रतिभागी होंगे ज्ञान सिंह पटेल, हिचलाल पटेल और राकेश कुमार मौर्य। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में प्रियंका द्विवेदी की लिखी कहानी आप सुनेंगे और ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: दिनांकपर्यन्तम् एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये त्रिदिवसीय एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और आप लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से, और इस भजन को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। नरेंद्र शर्मा की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया है। तो ये भजन चला आपके रेडियो सच पर।

श्रोताओं, सुबह सुबह भजन में अगर लता मंगेशकर जी की आवाज़ हो तो फिर दिन बन जाता है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म का ये खूबसूरत सा भजन। स्वर हैं लता मंगेशकर जी की और साहिर लुधियानवी जी की रचना है, जयदेव ने संगीत दिया है।

इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अपनी नियमित दिनचर्या में एक नियम जरूर बना लें कि एक पौधा हमें जरूर लगाना है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बनी रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ लागू। प्रदेश के लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए मिलेगा बड़ा बाजार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक पूरी हुई। समिति को अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले कई अहम सुझाव। और वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन आज। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के करीब 500 ग्राम प्रधान करेंगे प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वरुणा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को कल मंजूरी दे दी। 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 10,958 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा।
1: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल 7 महत्वपूर्ण फैसलों को स्वीकृति दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा जिस पर 14,448 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी।
1: गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमिकॉन 2.0 को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी स्वीकृति दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भव्य काशी सुगम काशी को समर्पित ये परियोजनाएं श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुगम बनाएंगी, यातायात को नई गति देंगी और पर्यटन व्यापार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और

0: सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही ये कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। कल देश भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा।
1: अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवेयर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16% का शुल्क लगाया जाता था, ये शुल्क जीरो हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल्स की बात करें, रेडीमेड गार्मेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क जीरो हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोजगार और उद्यमिता से आत्मनिर्भर बने युवाओं को सम्मानित किया। समारोह में केंद्र सरकार के 12 वर्षों में प्रदेश में हुए कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका कौशलम का विमोचन भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
2: सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक कल संपन्न हो गई। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों और विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। समिति ने प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले।
3: 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमिटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वो हम पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देंगे।
0: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में बिजनौर जिले के 16 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना एजेंसी साचीज के 3 सदस्यीय विशेष दल ने बिजनौर के 20 अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया था। साचीज की CEO अर्चना वर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 16 अस्पतालों में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पाया गया। इनमें से 6 अस्पतालों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं और उनके भुगतान रोकने के आदेश दिए गए हैं। बाकी 10 अस्पतालों को अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज पंच सम्मेलन का आयोजन होगा। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के करीब 500 ग्राम प्रधान शामिल होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाना है। साथ ही इस सम्मेलन के जरिए VBG रामजी अधिनियम 2025 के प्रावधानों और उद्देश्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की समझ को भी मजबूत किया जाएगा। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: रुक रुक कर

0: रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं देवरिया में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आज कहीं कहीं बारिश, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने, गर्मी और उमस भरी स्थितियां बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ लागू। प्रदेश के लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए मिलेगा बड़ा बाजार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक पूरी हुई। समिति को अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले कई अहम सुझाव। और वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन आज। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के करीब 500 ग्राम प्रधान करेंगे प्रतिभाग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: वीटीवी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं श्रोताओं, और लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको उल्लास बापट का संतूर वादन सुनाएंगे। राग है चारू केशी और आपके साथ तबले पर संगत किया है शैलेंद्र कुमार ने। तानपुरे पे है राकेश कुमार यादव। लीजिए सुनिए पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन सुन रहे थे। राग था चारुकेश। आपके साथ तबले पर संगत किया शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने और तानपुरे पर थे राकेश कुमार यादव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: कैच द रेन, एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अंबिका ने होरमुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: ನೀಲಾಂಚಲ ನಿವಾಸಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಾಭ್ಯಾಮ್ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಜಗತ್ ಕೆ ನಾಥ್ ಕಹಿ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ರೂಪ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಉನ್ಕೆ ಬಡೆ ಭಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ಬಲಭದ್ರ ಔರ್ ಬಹನ್ ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾ ಭವ್ಯ ರಥೋ ಪರ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೋಕರ್ ಶ್ರೀ ಮಂದಿರ್ ಸೆ ಲಗಭಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ್ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಿಚಾ ಮಂದಿರ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಮಾನ್ಯತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಮಂದಿರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಮೌಸಿ ಕಾ ಘರ್ ಹೈ, ಜಹಾ ತೀನೋ ದೇವತಾ 9 ದಿನೋ ತಕ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಹತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ವೆ ದೋಬಾರಾ ಮಂದಿರ್ ಲೌಟತೆ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಪಾಹಂಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ್ ಸೆ ಹೋತಿ ಹೈ. ಇಸ್ಮೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ ಭಜನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಔರ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ರೀತಿ ರಿವಾಜೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ತೀನೋ ವಿಗ್ರಹೋ ಕೋ ರಥೋ ಪರ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಕರಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಲಾಖೋ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ರಸ್ಸಿಯೋ ಸೆ ರಥ ಖೀಚತೆ ಹೈ, ಜಿಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಔರ್ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ನಗರ ಭ್ರಮಣ ಕೋ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ದರ್ಶನ್ ಔರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇನೆ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ.
1: ಲೀಲಾ ಚಲ್ವಾ ರೆ ತೂ ನ ಸಂಭಾಲೆ ತೋ ಹಮೇ ಕೌನ್ ಸಂಭಾಲೆ.
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है.
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे. पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे. फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे. प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार.
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है.
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा.
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया. रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं.
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं. दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा. इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी. आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा. मंदिर में आज शाम से लेकर

0: कर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
1: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले

0: USA has launched a new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों के आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में नामानिकारों को जानकारी देते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगी। इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ सेमीकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कूरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: जनाब वैष्णव ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए

चार अहम इकदामात किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगी, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं योम आज़ादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया।

0: केरल में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निज़ाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाज़त होगी, ताकि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों के तहफ़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमज़ोर करने की खातिर फ़ौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी, लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले 1 मैच में इंग्लैंड को 6 से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी 1 मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने भारत और बरतानिया के दरमियान हुए जामे इक्तसादी और तजारती मुआहदे के नाफिजुलअमल होने की खबर को अपने पहले सफ़े की बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि ये भारत बरतानिया शराकत दारी में एक अहम लम्हा है। राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने पार्लियामेंट हाउस में 2 मुंतखब अरकान मंसूर अली खां और रजनीश कुमार अग्रवाल को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस खबर को प्रताप ने पहले सफ़े पर पेश किया है। सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस खबर को कई अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके 2 भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों के तहफ्फुज़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8:45 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं को सुप्रभात, मैं आपकी वीडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। तो सुविचार हमें नीरा त्रिपाठी जी ने भेजा है कि शब्दों की ताकत को कम मत समझिए, एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरी ज़िंदगी बदल देता है। क्या बात है, इन्होंने लिखा है। नीलम जी नमस्कार, तो आपको भी गुड मॉर्निंग नीरा जी। इनका एक और सुविचार है कि नादानियाँ भी ज़रूरी हैं इस ज़िंदगी में, ज़्यादा समझदारी भी ज़िंदगी का चैन छीन लेती है। विश्वास का पौधा लगाने से पहले ज़मीन ज़रूर परखना चाहिए, क्योंकि हर ज़मीन उपजाऊ नहीं होती। यूं तो कोई सबूत नहीं कि कौन किसका है, क्या बात है, पर ये दिल के रिश्ते तो बस विश्वास से चलते हैं। क्या बात है नीरा जी, आपके सुविचार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में भाग लिया और अपना सुविचार हमें भेजा। आपके सुविचार बहुत ही अच्छे होते हैं। और अब हम बात करते हैं श्रोताओं आज के विषय पर। आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स पर। आज जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर अपना अधिक से अधिक समय बिता रही है, तो क्या ऐसे में आप इस बात से सहमत होंगे कि कम से कम एक दिन डिजिटल डिटॉक्स ज़रूरी है। अच्छा, पहले हम आपको बता दें कि ये डिजिटल डिटॉक्स है क्या। तो भाई, डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ है जानबूझकर डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना, ताकि स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग को कम किया जा सके और ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। प्रौद्योगिकी के इस बढ़ते उपयोग के जवाब में उभरी यह प्रथा स्क्रीन की लत से स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित चिंताओं को दूर करती है, मानसिक तनाव को कम करके बेहतर नींद और वास्तविक दुनिया में लोगों के साथ जुड़ने में मदद करता है। आप बड़ी आसानी से श्रोताओं डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, जैसे गैर ज़रूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन डिसेबल कर दें ताकि आपका बार बार ध्यान न भटके। रात को सोने से एक घंटे के लिए या वीकेंड पर डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। स्क्रीन पर समय बिताने की बजाय किताबें पढ़ें, प्रकृति के बीच समय बिताएं या कोई नई कला सीखें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको बताऊं, अपनों के बीच समय बिताएं, क्योंकि आज हम अपने स्मार्टफोन में इस कदर बिजी रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अपनों को हमारी कितनी ज़रूरत है। जब आप अपना फ़ोन खुद से कुछ समय के लिए अलग रखते हैं ना, तो आप अपने परिवार, दोस्त और जीवन के सही मूल्य को समझ पाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल से आप में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कुछ छूट जाने का डर और एंग्जाइटी यानी भूल जाने की समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी ब्लू लाइट नींद के चक्र को प्रभावित करती है, जिससे हमें नींद कम आने की समस्या हो जाती है। भाई, नींद कम आने की समस्या तो हो ही जाती है और फिर हम सोने के लिए दवाइयों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और इन दवाइयों से हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। हम इस पे और भी बातें करेंगे श्रोताओं, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब, हम बस अभी हाजिर होते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए।

0: अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और दोस्तों, इस वक्त आपकी रेडियो हमला आपको बता रही है कि डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें और उसकी क्या खामियां हैं। लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर भी चलते हैं, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी, म्यूजिक तो बनता है।

मुझे उम्मीद है कि ये गीत सुन के बहुत सारे लोगों को अपने कॉलेज टाइम याद आ गया होगा, क्यों दोस्तों। बहरहाल आपकी वीडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव आपको बता रही है कि डिजिटल डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है और इसके नुकसान से हमें क्या, हमारे शरीर को क्या नुकसान हो रहा है। तो हमें नींद कम आने लगती हो और इन दवाओं से हम जब सोने के लिए नींद की दवाओं का उपयोग करने लगते हैं और इन दवाओं के उपयोग से हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। क्या आप चाहेंगे कि आप हर वक्त बीमारियों से घिरे रहें? नहीं ना। तो जिस तरह हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं वैसे ही डिजिटल डिटॉक्स भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिजिटल उपकरणों से दूरी बना लें, बल्कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें और इस भागती दौड़ती हुई ज़िंदगी में ज़रूरी भी है अपनों के लिए थोड़ा सा या अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने की। और जब आप ये तय कर लेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, अब मैं पहले से बेहतर सोच पा रहा हूँ, हमारी काम करने की गति में सुधार हो रहा है। तो आज से ये तय कर लें कि कम से कम एक घंटा ही सही, पर डिजिटल उपकरणों से आप खुद को दूर रखेंगे और बिताएंगे अपनों के साथ कुछ खूबसूरत से पल। और रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए और चलते हैं इस आफरीन से सफ़र पर।

अगर आप सभी श्रोताओं को मेरी ये बात सही लग रही है कि डिजिटल डिटॉक्स ज़रूरी है, तो मेरी ये छोटी सी कोशिश सार्थक हुई। और अब कल फिर मिलने के वादे के साथ, अभी के लिए अपनी वीडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की थी। नमस्कार प्रयागराज।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा

0: है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: का नाम है जिंदगी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: सुनो ना,
0: इस गीत को हम आपके लिए लेकर आए हैं फौजी कॉलिंग फिल्म से, और इस गीत को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है हरिहरन ने। रचना है राजेश की और विजय वर्मा ने संगीत दिया है।

श्रोताओं, ज़िंदगी ने चाहे कुछ भी दिया, गम या खुशी, ये तो ज़िंदगी के रंग हैं, तो हंस कर बिताइए, रोना क्यों। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम लेकर आए हैं साया फिल्म से, और इस गीत को अपनी स्वर से सजाया है श्रेया घोषाल ने। सईद कौदरी जी की रचना है, अनु मलिक ने संगीत दिया है, और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

जब आप ज़िंदगी के हर फैसले से सहमत हो जाते हैं तो ज़िंदगी आपके साथ साथ चलने लगती है।

और श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कॉरपोरेट फिल्म से। इस गीत को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है आशा भोसले जी ने। रचना हम आपको बता देते हैं, रचना की है संदीप नाथ ने और समीर टंडन ने संगीत दिया है। तो देखिए, लम्हा लम्हा है जिंदगी, जी लेने दो।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ज़िले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: वाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल,
1: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए ललितपुर और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
2: ललितपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और समृद्ध जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को अनावश्यक रूप से दूसरे जिलों में रेफर करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि जिन बीमारियों का इलाज जिले में संभव हो उनके लिए मरीजों को बाहर भेजना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की व्यवस्था का भी जायजा लिया और निर्देश दिए कि सभी मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। यदि कोई चिकित्सक बाहर की दवा लिखता है या बिना ठोस कारण मरीज को रेफर करता है तो संबंधित चिकित्सक की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने प्रसव कक्ष, SNICU, औषधि भंडार और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों के स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। ड्यूटी से अनुपस्थित मिले चिकित्सकों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा गया। साथ ही अस्पताल परिसर के सामने दो चरणों में पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए गए। बरसात के मौसम को देखते हुए ललितपुर में संचालित रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान शुरू होने से पहले जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता व अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों को माइक्रो प्लान के अनुसार 100% कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और जल भराव रोकने पर जोर दिया। जिला मलेरिया अधिकारी अनिल क्रिस्टोफर मैसी ने बताया कि हाई रिस्क में लार्वानाशक दवा का छिड़काव, गड्ढों को भरने, रुके पानी की निकासी और साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 35 करोड़ वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत ललितपुर में भी मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिले में एक ही दिन में करीब 94 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। गोविंद सागर बांध की तलहटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश, अपर आयुक्त प्रियंका, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। अभियान के दौरान सभी को एक पेड़ मां के नाम लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी और अपर आयुक्त ने कल्याणपुरा में विकसित मियां बाकी वन का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण किया। अधिकारियों ने इस महा अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और अधिक से अधिक लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक में खेत तालाब योजना को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत किसानों को खेत तालाब निर्माण पर 50% यानी 52,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 में जिले के 180 खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि खेत तालाब जल संरक्षण के साथ साथ मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन और अन्य जलीय गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। ललितपुर में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की देवी आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम प्रधानों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए और गांव-गांव में सर्पदंश, डूबने, आकाशीय बिजली तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि जिले में सोशल मीडिया, राहत चौपाल, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आपदा से बचाव की जानकारी दी जा रही है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री

0: आवास योजना ग्रामीण की भी समीक्षा की गई, जिसमें 2019 से 20 से और 2025-26 तक 9098 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई।
1: ललितपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
2: कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मथुरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि अंतरित की गई है तथा शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सजीव संबोधन को सुना गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े लगभग 12 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य कर्मचारी उठा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए DBT के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु प्रति छात्र को 1200 की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी आयुष्मान भारत पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना कैशलेस हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। बाइट प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मथुरा के गांव सिंगापट्टी में मां ओणम देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यकरण का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। योजना के अंतर्गत करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर का सौंदर्यकरण किया जाएगा। साथ ही जहांगीरपुर के महालक्ष्मी मंदिर में करीब 50 लाख रुपए, ग्राम माल के मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि में करीब 50 लाख रुपए, वृंदावन के शोध संस्थान के भवन जीर्णोद्धार के 1,22,00,000 रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा, देश और प्रदेश की सरकारें विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3,000 से ज्यादा मंदिरों में विकास कार्य कराया गया है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफल 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज नगर निगम मथुरा वृंदावन के सभागार जनरल गंज मथुरा में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बलदेव पूरन प्रकाश द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाखों रेहड़ी पटरी एवं पथ विक्रेताओं के लिए वरदान सिद्ध हुई है। योजना के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन, ऋण स्वीकृति, वितरण, क्रेडिट कार्ड वितरण की सुविधाएं प्रदान की गईं। परियोजना अधिकारी डूडा राजकुमार चौधरी ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण, डिजिटल लेन देन पर कैशलेस, समय पर ऋण अदायगी पर ब्याज अनुदान तथा क्रमश अधि राशि के ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के माध्यम से हजारों परिवारों की आजीविका सुदृढ़ हुई है तथा वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याण जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप शहरी गरीबी स्ट्रीट वेंडरों एवं लघु उद्यमियों को आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आज देश में वित्तीय समावेशन एवं स्वरोजगार संवर्धन का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है।
1: यह था

0: आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

पहले और दूसरे दरवेश की सरगुजश्त सुनने के बाद अब दास्तान का एक और निहायत दिलचस्प बावा होने जा रहा है। अब महफिल में तीसरे दरवेश लबकुशा हैं, जो अपनी जिंदगी के नशेबो फराज, इश्क व मुहिमजुई और गर्दिश जमाना की एक ऐसी दास्तान सुनाने वाले हैं, जिसका हर मोड़ तजस्सुस से भरपूर और हर वाकया हैरत अंगेज है। तो आइए मजीद इंतजार किए बगैर सुनते हैं तीसरे दरवेश की अपनी जुबानी उनकी सरगुजश्त।

मलामत कर रहे थे। शहजादे ने निहायत अदब से सलाम किया, अपनी गलती का एतराफ किया और माफी तलब की। बुजुर्ग ने फरमाया, बेजुमान मखलूक को सताना मुनासिब नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे। शहजादे ने अपनी गलती पर माफी मांगी, हिरन के जख्म से तीर निकाला, मरहम लगाया और बुजुर्ग की खिदमत में शरीक रहा। थकन के बाइस वो सो गया, मगर जागा तो हैरान रह गया। न बुजुर्ग थे न हिरन, सिर्फ एक पर्दे के पीछे एक बेहद हसीन दोशीजा दिखाई दी।

जिसके कदमों में वही बुजुर्ग जारो कतार रो रहे थे। शहजादे ने लड़की से बात करने की कोशिश की मगर वो खामोश रही। उस पर शहजादे ने कहा, कम बोलना अदा है हर चंद,

जिसके कदमों में वही बुजुर्ग जारो कतार रो रहे थे। शहजादे ने लड़की से बात करने की कोशिश की मगर वो खामोश रही। उस पर शहजादे ने कहा, कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना, मुंद जाए चश्म आशिक तो भी वो मुंह न खोले। इस पर भी जब कोई जवाब न मिला तो शहजादे ने करीब जाकर देखा, मालूम हुआ कि वो तो पत्थर का मुजस्मा है। ये मंजर देखकर शहजादा हैरान रह गया और बुजुर्ग से इस राज की हकीकत पूछने लगा। पहले तो बुजुर्ग ने इश्क की तबाही कारियों से डराते हुए कुछ न बताया, मगर शहजादे के इसरार पर अपनी दास्तान सुनाने पर आमादा हो गए। बुजुर्ग ने कहा, उनका नाम नुमान सयाह है और वो एक बड़े ताजिर थे। दुनिया के बेशुमार ममालिक की सैर के बाद उन्होंने जजीरा फरंग जाने का इरादा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक निहायत खूबसूरत, साफ सुथरा और खुशहाल शहर देखा। चंद ही दिनों बाद शहजादी की तरफ से एक ख्वाजा सिरा आया और उन्हें शाही महल में हाजिर होने की दावत दी ताकि वो अपने नायाब तहाइफ पेश कर सकें। अगले रोज नुमान सैया शाही दरबार में हाजिर हुए, जहां उनका निहायत इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल किया गया। नुमान सैया को शाही महल के एक निहायत शानदार कमरे में ले जाया गया, जहां हुस्न और जमाल का ऐसा मंजर था कि वो हैरत में डूब गया। जब उसकी नजर शहजादी पर पड़ी तो उसके हुस्न का असीर हो गया और उसके होश उड़ गए। उसने अदब से सलाम किया और अपने साथ लाए हुए कीमती जवाहरात, उम्दा कपड़े और नायाब तहाइफ पेश किए। शहजादी उन तहाइफ से बहुत खुश हुई और उन्हें अपने खजानची के हवाले करते हुए हुक्म दिया कि उनकी कीमत फहरिस्त के मुताबिक अदा कर दी जाए। नुमान सैयाद दिल ही दिल में खुश था कि इसी बहाने उसे दोबारा फिर दरबार आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन महल से वापस आकर उसकी हालत बदल गई। वो हर वक्त शहजादी के ख्याल में गुम रहने लगा। अगले रोज वो दोबारा दरबार में हाजिर हुआ। इस मर्तबा शहजादी ने सब हाजरीन को रुखसत करके उसे तन्हाई में बुला लिया। उससे नरमी से गुफ्तगू की और पूछा कि इन तहाइफ पर उसे कितना मुनाफे मतलूब है। नुमान सैयाह ने आजिजी से जवाब दिया कि उसका असल मकसद तजारत नहीं बल्कि शहजादी की ज़ियारत थी जो अब पूरी हो चुकी है, इसलिए वो खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता है। शहजादी उसके खुलूस और सादगी से मुतासिर हुई और फरमाया कि उसके तमाम तहाइफ की पूरी कीमत अदा की जाएगी। साथ ही उसे एक निहायत अहम जिम्मेदारी सौंपी। उसने एक मुहर बंद खत और अपनी अंगूठी देकर कहा कि दिलकुशा नामी बाग में जाकर खुसरो नामी शख्स के हवाले ये अमानत कराए और उसका जवाब लेकर फौरन वापस आए। नुमान सैयाह बाग में पहुंचा तो देखा कि खुसरो एक बहादुर सिपहसालार की तरह मसले महाफिजों के दरमियान बैठा है। उसने अंगूठी देखकर नुमान को बाग के अंदर भेजा, जहां एक दरख्त से लटके आहिनी पिंजरे में एक निहायत खूबसूरत नौजवान कैद था। नुमान ने उसे खत दिया मगर जवाब मिलने से पहले ही हबशी सिपाहियों ने हमला कर दिया। उन्होंने नुमान को बेरहमी से जख्मी करके नीम मुर्दा कर दिया। जब उसे होश आया तो सिपाही उसे उठाए ले जा रहे थे। उनकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि पिंजरे में कैद नौजवान दरअसल इसी सल्तनत का असल वारिस शहजादा है। मरते वक्त उसके वालिद ने अपने भाई को वसीयत की थी कि बेटे के बालिग होने तक सल्तनत संभाले, फिर अपनी बेटी का निकाह उसी शहजादे से कर दे और हुकूमत उसके हवाले कर दे। लेकिन चचा इख्तदार के लालच में वादा भूल गया, शहजादे को दीवाना करार देकर कैद कर दिया और अपनी बेटी को भी उससे जुदा कर दिया, हालांकि दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। नुमान सैयाह ने इसरार किया कि वो आगे का मंजर भी देखना चाहता है। सिपाहियों ने उसे छिप कर देखने की इजाज़त दे दी। दरबार में बादशाह ने मलिका को हुक्म दिया कि वो अपने महबूब शहजादे को अपने हाथ से कत्ल करे, मगर जब मलिका उसके करीब पहुंची तो तलवार फेंक कर उससे जा मिली। शहजादे ने भी मोहब्बत का इजहार किया। ये मंजर देख कर बादशाह सख्त गजबनाक हुआ। इसी दौरान वजीर ने शहजादे को कत्ल करने के लिए तलवार उठाई, लेकिन अचानक गैब से एक तीर आकर उसकी पेशानी में लगा और वो वहीं हलाक हो गया। इस गैर मामूली वाकये के बाद शहजादे को दोबारा पिंजरे में कैद कर दिया गया और बादशाह वापस चला गया। इसी दौरान मलिका

ने नुमान सयाह को अपने पास बुलवाया, उसके जख्मों का बेहतरीन इलाज करवाया और एक माहिर तबीब की निगरानी में उसे मुकम्मल सेहत याब करवा कर दोबारा अपने हुजूर तलब किया और उसकी वफादारी से खुश होकर उसे कीमती खिलत, बहुत सा माल उजर और इनामात अता किए। उसके बाद नुमान ने अपने साथियों को वतन वापस भेज दिया, गुलामों को आज़ाद कर दिया और खुद उसी पहाड़ पर एक इबादत गाह बनाकर पत्थर के बुत की परस्तिश और मलिका की याद में जिंदगी गुजारने लगा।

नुमान सियाह की दास्तान सुनकर मुल्क अजम का शहजादा भी मलिका की जस्तुजू में मुल्क फरंग रवाना हुआ। उसने फकीराना लिबास इख्तियार किया, तवील सफर की सोबतें बर्दाश्त की और आखिरकार फरंग पहुंचकर अपनी मंजिल की तलाश शुरू की। कई दिन तक वो शहर की गलियों और बाजारों में सरगर्दा रहा, मगर मलिका तक पहुंचने की कोई सूरत न बन सकी। एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया और उसकी मुलाकात एक बहादुर नौजवान से हुई, जो हर माह एक ताबूत उठाए अपने आका का मातम किया करता था। उस नौजवान ने बताया कि ताबूत में उसी मजलूम शहजादे की मैयत है जो कभी पिजरे में कैद था। जालिम वजीर ने उसे कत्ल कर दिया, लेकिन उसी वक्त उसने भी वजीर को उसके जुल्म की सजा दे दी। अब वो हर माह उस शहजादे की याद में सोग मनाता है। शहजादे ने भी उसे अपना सारा हाल सुनाया तो वो उसकी सच्ची मोहब्बत और बेलौस जज्बे से मुतासिर हुआ। उसने वादा किया कि वो उसे मलिका से मिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। चुनाचे एक रात वो शहजादे को शाही बाग में ले गया, जहां मलिका अपने चंद खास खादिमों के साथ आई। नौजवान ने शहजादे की वफादारी, मोहब्बत और कुर्बानी का जिक्र किया। मलिका ने जब ये दास्तान सुनी तो फौरन शहजादे को अपने सामने बुलवा लिया और शहजादे से कहा कि वो इस कैद और बंद की जिंदगी से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वो उसे अपने साथ किसी दूर दराज मुल्क ले जाए, जहां दोनों आज़ादी और सुकून से जिंदगी गुजार सके। शहजादे ने फौरन उसकी ख्वाहिश कबूल कर ली और दोनों रात की तारीकी में महल से निकल पड़े, मगर आगे उनके लिए आजमाइशों का एक नया सिलसिला मुंतजर था।

सुबह होते ही पूरे शहर में तहलका मच गया। शाही मुनादियों ने ऐलान कर दिया कि मलिका महल से गायब हो चुकी है। सिपाहियों को हुक्म मिला कि शहर का गोशा गोशा छान मारा जाए, हर घर की तलाशी ली जाए और जो शख्स मलिका का सुराग दे उसे 1000 अशफियां और शाही खिलत से नवाजा जाए। इसी हंगामे के दौरान एक चालाक बुढ़िया फकीरनी का भेस बदल कर हवेली में दाखिल हुई। उसने अपनी गुर्बत, बेटी की बीमारी और बेबसी की ऐसी दर्दनाक दास्तान सुनाई कि मलिका का दिल पसीज गया। मलिका ने उसे खाने के लिए नान और कबाब दिए, साथ ही अपनी एक अंगूठी भी अता कर दी ताकि वो उसे फरोख्त करके अपनी जरूरत पूरी कर सके। मगर बुढ़िया का मकसद खैरात लेना नहीं बल्कि मलिका का सुराग हासिल करना था। वो अंगूठी हाथ में लिए जैसे ही बाहर निकली, ऐन उसी वक्त हवेली का मालिक बहादुर सिपाही बहजाद खान शिकार से वापस आ पहुंचा। उसने खुला दरवाजा और बुढ़िया की मशकूक हरकत देखते ही सारा माजरा भाप लिया। उसने बुढ़िया को गिरफ्तार कर लिया और यूं एक बड़ा खतरा टल गया।

बहजाद खान ने शहजादे और मलिका को तसल्ली देते हुए कहा, अब आप दोनों बेफिक्र हैं, जब तक आप इस गरीब खाने में हैं कोई आप तक नहीं पहुंच सकता, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी हिफाजत करूंगा। बहजाद खान की बेमिसाल वफादारी, जुर्रत और इखलास ने शहजादे को बेहद मुतासिर किया। उसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, बहजाद खान तुमने आज दोस्ती और वफादारी का हक अदा कर दिया, अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर दूंगा। इस तरह बहजाद खान की वफादारी और जानिसारी की बदौलत शहजादा और मलिका कई माह तक सुकून से जिंदगी गुजारते रहे। मगर एक दिन शहजादे को अपने वतन और वालिदैन की याद बेहद सताने लगी। उसकी उदासी देखकर बहजाद खान ने वजह पूछी। शहजादे ने कहा कि अब वो अपने वालिदैन की कदम बोसी करना चाहता है, जना जाने उसकी जुदाई में किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। ये सुनकर बहजाद खान ने फौरन वापसी का इंतजाम किया। उसने उम्दा घोड़े तैयार किए, खुद हथियारों से लैस हुआ और शहजादे और मलिका को साथ लेकर रवाना हो गया। शहर के दरवाजे पर पहुंचकर बहजाद खान ने बादशाह को ललकारा कि अगर ताकत है तो अपनी बेटी को वापस ले जाए। ये खबर महल तक पहुंची तो बादशाह ने लश्कर रवाना कर दिया, मगर बहजाद खान तने तनहा दुश्मन के सामने डट गया। उसने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पहले दोनों सिपह सालारों को कत्ल किया, फिर खुद बादशाह की फौज को भी शिकस्त दे दी। दुश्मन पसपा हो गया और तीनों बखैरियत मुल्क अजम की सरहद तक पहुंच गए। शहजादे ने अपनी आमद की इतला वालिद को भेजी। बादशाह बेहद खुश हुए और तमाम अमीरों के साथ इस्तकबाल के लिए दरिया के किनारे पहुंच गए। शहजादा शौक मुलाकात में बाप के गले जा लगा, लेकिन ऐन उसी लम्हे तकदीर ने एक और आजमाइश खड़ी कर दी। मलिका का घोड़ा बेकाबू होकर दरिया में जा गिरा और मलिका तीज भंवर की नजर हो गई। बहजाद खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी, मगर वो भी उसी भंवर में गुम हो गया। गोताखोरों ने बहुत तलाश की, मगर न मलिका का सुराग मिला और न बहजाद खान का। इस हौलनाक हादसे ने शहजादे को तोड़ कर रख दिया। वो दुनिया से बेजार हो गया और दरवेश का भेष इख्तियार करके दरिया किनारे आवारा फिरने लगा। एक रात उसने खुद भी दरिया में डूबकर जान देने का इरादा किया, मगर उसी लम्हे एक नकाब पोश सवार नमूदार हुए। उसने शहजादे को खुदकशी से रोका और खुशखबरी दी कि मलिका और बहजाद खान दोनों जिंदा हैं, वक्त आने पर उनसे मुलाकात जरूर होगी। फिर उसने शहजादे को रोम जाने का मशवरा दिया, जहां उसकी मुलाकात दूसरे दरवेशों से होगी और इसी सफर में उसकी मुराद भी पूरी होगी। इसी उम्मीद के साथ तीसरे दरवेश ने अपनी दास्तान खत्म की। सामईन अजीज, इस तरह तीसरे दरवेश ने अपनी सरगुजश्त बयान की। इस दास्तान में मोहब्बत की सच्चाई, बहजाद खान की बेमिसाल वफादारी और तकदीर के अनोखे खेल ने हर सुनने वाले को मुतासिर किया। आखिर में नकाबपोश सवार की दी हुई उम्मीद ने दरवेश के दिल में फिर से जीने की ख्वाहिश जगा दी। यूं तीसरे दरवेश का किस्सा इख्तिताम पजीर हुआ, मगर उसकी मुराद की मंजिल अभी बाकी है।

0: इसके साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि बाग व बहार की ये दास्तान आपको पसंद आई होगी और आप आइंदा भी इसी मोहब्बत के साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे। मुझे यानी शाज़े खान को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी। आदाब।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का

0: विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप नमिता यादव के स्वर में गाए भजनों का आनंद लेंगे। तो लीजिए सुनिए नमिता यादव के स्वर में गाया ये खूबसूरत सा भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप नमिता यादव के स्वर में गए भक्ति रचनाओं का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 10 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा के समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे कम्प्लीट 6 लेन और 4 लेन

0: एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी नई वेबसाइट का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसकी आसान प्रतिक्रिया पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज पूरे देश में शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की मौसी का निवास स्थान माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में ठहरते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा या वापसी रथ यात्रा कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध ये रथ यात्रा अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। उन्होंने भगवान से सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान हफ्ते में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गई हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली टैंकर को रोक दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत करने की कोई योजना नहीं है। भारत और बेल्जियम व्यापार और निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गार्डन ने पहला गोल किया। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप का खिताब जीता था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हो रहे हैं श्रोताओं, और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, है ना, फिल्म से लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज़ है और इस गीत की रचना रविंद्र जैन ने की है। रविंद्र जैन जी का ही संगीत है।

श्रोताओं, जीवन का एक रंग ये भी है कि आप खुश हैं तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि हम क्यों को इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये क्यों हमारे जीवन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। छोड़िए ना इस क्यों को, थोड़ा कम कीजिए इस क्यों को। चलिए हम आपको सुनवाते हैं गेम फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और इस गीत की रचना की है जावेद अख्तर जी ने, शंकर एहसान लय का।

तो भाई ये गीत सुनकर मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घर में डांस तो ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं उस गीत का फिल्म जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है अलका याग्निक और कुमार सानू जी ने। फिल्म का नाम है सोल्जर और समीर की रचना है, अनु मलिक का संगीत है। अच्छा, जब आप पार्टी वगैरह में जाते होंगे तो कोई एक चेहरा ऐसा होता होगा ना जिसे आप बार बार देखने को पलट पलट करके देखते होंगे, भाई ये इसका ड्रेस सेंस कितना अच्छा है, ये कितनी खूबसूरती से तैयार हुई है। तो कुछ ऐसा ही इस गीत में भी कहा गया है। तो ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

कुछ मत करिए, बस सुनिए आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र को। और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आवारापन फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है मुस्तफ़ा जाहिद ने। रचना है सईद कौद्री की और प्रीतम का संगीत है। आपका और हमारा रिश्ता इतना प्यारा बन गया है श्रोताओं कि बस आपकी पसंद के खूबसूरत से गीत सुनवाने का दिन भर मन करता है और आपसे बातें करने का बहुत मन करता है। तो ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर। आपको ये गीत कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के आखिर में कोई आप सा नहीं फिल्म से गीत, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है सोनू निगम जी ने। समीर जी की रचना है, हिमेश रेशमिया का संगीत है, तो आनंद लीजिए इस गीत का। और ये है कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

श्रोताओं, आपका और आकाशवाणी प्रयागराज का तो रास्ता बहुत ही पुराना है। कभी कभी आपको लगता है ना कि हमारी जो जहन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वही गीत आज रेडियो पर बज गया। कितना खूबसूरत लगता है। के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं फूलचंद्र यादव और साथी मुंशी राम बहादुर और साथी, और साथ ही आप सुनेंगे कुंवर सिंह और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं फूलचंद्र यादव और साथियों के स्वर में गाया ये देवी गीत।

मुंशी राम बहादुर और साथियों के स्वर में लीजिए, सुनिए, गाया ये खिमटा गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और अब हम आपको सुनवाते हैं कुंवर सिंह और साथियों के स्वर में गाया ये लाचारी गीत।

श्रोताओं, इसी बारहमासा गीत के साथ लोकगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

धन्यवाद नीलम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। अब हम पेश करेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं आनंद बख्शी।

ये कार्यक्रम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान, प्रस्तुति दीपक राय की है।

आरएन बख्शी का जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। 1947 के दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारे के बाद आपका परिवार लखनऊ में आ बसा। आपने रॉयल इंडियन नेवी में बतौर कैडेट काम किया, लेकिन वो गायक बनने बम्बई पहुंचे, जो आज का मुंबई है। सबसे पहले उन्होंने 1958 में भगवान दादा की फिल्म भला आदमी में गीत लिखा। हालांकि उन्हें पहचान 1962 की मेहंदी लगी मेरे हाथ से मिली। फिर 1955 की फिल्म जब जब फूल खिले के सभी गाने सुपरहिट रहे। उसी साल की फिल्म हिमालय की गोद में का ये गीत चांद सी महबूबा हो मेरी बहुत पसंद किया गया। 1967 की मिलन के गीत सावन का महीना पवन करे शोर के बाद वो सफल गीतकार बन गए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

आनंद बख्शी जी के जीवन का एक वो पल हम आपसे साझा करना चाहेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आनंद बख्शी मृत्युशैया पर थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जीवन के आखिरी दिनों में थे। एक दिन दिलीप कुमार उनसे मिलने आए। जैसे ही दिलीप साहब उनके कमरे में घुसे तो उन्हें देखते ही वो बोले, लाले कैसा है तू? आनंद बख्शी जी बिस्तर पर पड़े थे, काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। दिलीप साहब को देखकर वे उठने की कोशिश करने लगे। दिलीप साहब ने जब गौर किया कि आनंद बख्शी उठकर बैठने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो बोले, हो तू मेरे कोल नहीं आ सकता, मैं तेरे कोल आ रहा हूँ। पंजाबी में उन्होंने कहा कि तू मेरे पास तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं ही तेरे पास आ रहा हूँ। दिलीप साहब ने अपने जूते उतारे और आनंद बख्शी साहब के बिस्तर पर पहुँच गए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो देखकर कमरे में मौजूद आनंद बख्शी जी के पुत्र राकेश बख्शी की आंखें नम हो गईं। दिलीप साहब आनंद बख्शी के बराबर में लेट गए और उन्होंने बख्शी जी को गले लगा लिया। वो मुलाकात ख़त्म करके जब दिलीप कुमार वहाँ से चले गए, राकेश बख्शी ने अपने पिता आनंद बख्शी से कहा, दिलीप साहब तो बड़े महान आदमी हैं। आनंद बख्शी ने बेटे से कहा, वो हमेशा से ही ऐसे हैं। फिर आनंद बख्शी ने बेटे को एक बहुत पुराना किस्सा सुनाया। वो घटना 1965 के किसी दिन घटी थी। शशि कपूर और नंदा की फिल्म जब जब फूल खिले ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। उस साल की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब जब फूल खिले। फिल्म का संगीत ज़बरदस्त हिट हुआ था, जिसे कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया था और सभी गीत आनंद बख्शी जी ने लिखे थे। फिल्म के सभी प्रमुख कलाकारों को सम्मानित करने के लिए मुंबई के षणमुखानंद हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया था। स्टेज पर सभी लोग बैठे थे। दिलीप कुमार उस समय उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। आनंद बख्शी जी को यूं तो अब तक 8-9 साल हो चुके थे काम करते करते, लेकिन जब जब फूल के लिए उनकी पहली हिट फिल्म थी। स्टेज पर आनंद जी की कुर्सी सबसे कोने में थी। दिलीप साहब सहित स्टेज पर मौजूद सभी लोगों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया, लेकिन आनंद बख्शी जी को कोई गुलदस्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद दिलीप कुमार ने नोटिस किया कि सभी के हाथों में गुलदस्ता है, लेकिन आनंद बख्शी के पास नहीं है। दिलीप साहब को भी एक गुलदस्ता दिया गया था। वो गुलदस्ता हाथ में लिए दिलीप साहब आनंद बख्शी जी के पास आए और उनसे पूछा, तुम आनंद बख्शी हो ना? इस फिल्म के गीत तुम्हें नहीं लिखे हैं ना? बख्शी जी बोले, हाँ जी, मैं ही आनंद बख्शी हूँ। जब दिलीप साहब ने उनसे पूछा, तुम्हारे हाथ में बुके क्यों नहीं है? शायद ख़त्म हो गया होगा, बख्शी जी ने जवाब दिया। दिलीप साहब ने अपना बुके आनंद बख्शी जी को थमाते हुए कहा, तुम इस इंडस्ट्री में नए हो, लोग कहते हैं मैं स्टार हूँ, लेकिन अगर मेरे हाथ में बुके नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे हाथ में बुके होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये बुके तुम रख लो। वो बुके थमाकर दिलीप साहब वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। आनंद बख्शी हैरान थे। कुछ देर तक यूं ही दिलीप साहब को देखते रहे। उनकी नज़रों में दिलीप साहब के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई थी। ये किस्सा आनंद बख्शी साहब ने अपने बेटे को सुनाया था। तो जो समारोह आयोजित हुआ था, उस फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं उसी फिल्म के एक गीत से, जो यहाँ लाजमी भी है आपको सुनवाना, आप भी सुनिए।

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं गीतकार आनंद बख्शी। जब जब फूल खिले का सुपर डुपर हिट होना था कि अगली फिल्म हिमालय की गोद में भी बेहतरीन सफलता के साथ आई, यानी ये फिल्म भी सुपर हिट रही। और इस फिल्म का गीत चांद सी महबूबा तो हर किशोर और युवा के दिलों की धड़कन बन गया। ये गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे।

1967 में आई फिल्म मिलन भी सुपर डुपर हिट रही और इसके गीत भी आनंद बख्शी ने ही लिखे थे और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। एक चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने सभी संगीतकार जोड़ियों के साथ ट्यूनिंग की, यानी कि एक ऐसा ऐसी ट्यूनिंग हुई कि सबके साथ बेहतरीन तालमेल बना। जहाँ इन्होंने रफ़ी के लिए गीत लिखे, वहाँ मुकेश के लिए, वहीं लता मंगेशकर के लिए, वहीं किशोर कुमार के लिए, तो इससे साबित होता है कि उनके साथ, सभी के साथ काम करने की अद्भुत क्षमता थी। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था कि वो किसी के साथ भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे, ये बड़ी बात होती है। अब हम आपको मिलन का गीत सुनवाना चाहेंगे, हालांकि अभी सावन नहीं आया है लेकिन बारिश तो शुरू हो चुकी है।

1969 की आराधना के गीत भी उन्होंने लिखे थे। इसका ये गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसे किशोर कुमार ने गाया था और अभिनेता राजेश खन्ना और संगीतकार आर डी बर्मन थे, ये बहुत सफल रही। आगे चलकर इन लोगों की जुगलबंदी में कई और सदाबहार गीत निर्मित हुए। इसके बाद 2002 में अपनी मृत्यु तक वो सक्रिय रूप से गीत लिखते रहे। अपने 40 वर्षों के

ऊपर के करियर में उन्होंने लगभग 600 फिल्मों के लिए 4000 से अधिक गीत लिखे। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए 40 बार नामांकित किया गया और 4 बार विजेता रहे। 4000 गीतों में से कुछ गीतों का चुनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको वो गीत सुनवाएं जो उनकी ज़िंदगी और उनकी सफलता का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से। इसे किशोर कुमार ने आवाज़ दी है और संगीत जोड़ी है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की।

एसडी बर्मन के साथ भी आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हुई। कहना ना होगा कि आपने देखा कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एसडी बर्मन, इनके साथ यानी कि इन तीनों संगीतकारों के साथ या संगीतकार जोड़ियों के साथ इनकी बेहतरीन ट्यूनिंग थी। और वो इंसान ज़्यादा सफल माना जाता है जो किसी के साथ भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म से, जिसे किशोर कुमार ने आवाज़ दी है।

पुराने संगीतकारों के साथ साथ उन्होंने नए संगीतकारों के साथ भी तालमेल बना कर रखा, जैसे शिवहरी हैं, बिजू शाह हैं, आनंद मिलिंद हैं, नदीम श्रवण हैं, बापी लहड़ी हैं। कुल मिलाकर के आपने एक बेहतरीन गीतकार का जीवन जिया और फिल्मों के लिए अच्छे गीत लिखे। 30 मार्च 2002 को इस भौतिक संसार से आपने विदाई ली।

इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं जब जब फूल खिले, हिमालय की गोद में, मिलन, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और आराधना। अब इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को दीजिए इजाज़त। प्रस्तुति दीपक राय की थी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: में रहने वाले लोगों ने थोड़ा कम देखा
1: हाँ, ये
0: होगा।
1: भी आजकल के समय की तो दिक्कत है एक तरह से कहिए तो।
0: आंगन वैसे ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे कुछ फूल होते हैं, कई लोगों के घर में हैंडपाइप होता है, लोग वहाँ पे आराम से बैठते हैं, गप्पे मारते हैं।
1: अचार बनाया जाता है, पापड़ सुखाया जाता है, मसाले तैयार किए जाते हैं, उसी आंगन में बैठ के गपशप होती है, नेहा जी सब्जियां कटती
0: और
1: हैं।
0: ख्वाब भी तो बुने जाते हैं
1: साथ ही साथ जब बारिश की बूंदें गिरती हैं आंगन में,
0: जी।
1: तो फिर वो आंगन ऐसा लगता है कि उसमें अपनी खूबसूरत सजावट कर दी है, और वो जो छमछम की एक आवाज़ आती है, तरंग होती है, वो हृदय में भी जाकर वहाँ पर भी धड़कती हुई सी महसूस होती है, और मन बावरा जो होता है वो खिंचता हुआ सा चला आता है
0: देखने के लिए,
1: देखने के लिए और भीगने के लिए भी।
0: भीगने के लिए ना।
1: जी
0: आपको पता है, ऐसा ही कुछ ख्याल फैज अनवर साहब के मन में आया। उन्होंने कागज पे उतार दिया और उस्ताद राशिद अली खान ने इतनी सुंदर रूहानी सी आवाज में जब जब भी मिट का ये गाना गाया। कौन सा सुने
1: चलिए।

0: कैसा लगा?
1: नेहा जी देखिए, अभी हम लोग खिलखिला कर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने ये गीत सुनवाया, ये पहला बस इसका मुखड़ा भर सुना है, तो बहुत सारी यादें जो होती हैं जहन में वो दस्तक देने लगती हैं, जो कुछ उदासियां लेकर आती हैं, एक मिलन का ख्वाब भी सजाती हैं, और एक इंतज़ार, एक जो प्रतीक्षा होती है, उसका जो दर्द होता है, तनाव होता है, वो लगता है कि ये जो बारिश हो रही है और जो होने वाली होगी जब कोई आएगा, तो वो जो बारिश आंसुओं की होती है, वो आंसू की बारिश जो है, वो उस बारिश में यानी सावन में जब ढलेगी तो हरियाली छा जाएगी और उम्मीद की एक रोशनी सी जाग पड़ेगी।
0: जरा सोचिए, जब इम्तियाज अली ने जब वी मेट बनाई, बिल्कुल बबली सा किरदार है करीना कपूर इस फिल्म में, उनका नाम गीत है, हैप्पी गो लकी और ठाएं लग रही हैं जैसे डायलॉग हैं, वहीं पे इम्तियाज अली ये सोचते हैं कि इस जनरेशन को भी कुछ ऐसे रूहानी गीत दे देना है जिसको वो सदियों तक याद रखें, और उन्होंने जो सोचा हुआ भी वैसा ही। तब उस्ताद राशिद अली खान साहब याद आते हैं और उन्होंने इसको ठुमरी और कजरी के अंदाज में गा दिया।
1: हम ये भी बता दें कि संदेश शांडिल्य ने इसका संगीत तैयार किया है, सारे गाने जो और जो संगीतबद्ध हुए हैं वो प्रीतम के संगीत निर्देशन में हुए हैं, और जिस हिसाब से कहानी की बुनावट की गई है, जहाँ पर एक शोख लड़की जब फर्स्ट हाफ में जो चुलबुली सी दिखाई पड़ती, जिसके व्यक्तित्व में जीवन जिंदगी बोलती हुई सी, नाचती हुई सी, घूमती हुई सी दिखाई पड़ती है, और वही लड़की जब सेकंड हाफ में आकर उदास होती है, जब प्रेम से मिले दुख को अपने भीतर वो पाती है, तब उसका व्यक्तित्व कितना थम सा जाता है, कितना रुक सा जाता है।

रे गजरारे हैं और अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। करीना कपूर को बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें दिखाया गया है, उनकी आंखों को, कि वो शाहिद कपूर से कुछ कहती नहीं है विरह से पहले, और अनजाने में ही बहुत सारी बातें दोनों के बीच हो जाती हैं और गाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राग इस गीत का जो है तिलक कामोद में रिकॉर्ड किया गया है। और जब वो फैज़ अनवर साहब कहते हैं ना कि चंदा को ता

धीरे आगे बढ़ रहा है। राग इस गीत का जो है तिलक कामोद में रिकॉर्ड किया गया है। और जब वो फैज़ अनवर साहब कहते हैं ना कि चंदा को ताको रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में, कैसे वो कह देते हैं कि ये बात अभी तक एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कही तक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनकही बात कही हुई सी मालूम होती है कि जिंदगी जो शायद पहले मेरी थी वो अब तुम्हारी अमानत हो गई है। बहुत ही खूबसूरत।

0: नेहा जी, बहुत ही खूबसूरत ये गीत था और इस गीत में शब्दों ने तो अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया ही किया, संगीत ने भी किया, आवाज़ ने तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ एक बांसुरी जो बज रही थी, जो सुनाई पड़ रही थी,
1: किसकी?
0: वो दिल के जो हमारे जज्बात है, जो एहसास है, जो इस गीत को सुनने के दौरान थोड़े से उदास हो चले हैं, बेकरार से हो चले हैं, उसको और ज़्यादा बेकरारियाँ बख्श रहे थे, वो थे बांसुरी वादक नवीन कुमार जी।
1: बिल्कुल, नवीन कुमार जी की बांसुरी मीठी है और रूहानी है, और ये जो सहज से शब्द गहरे अर्थ लिए हुए मालूम पड़ रहे हैं इस गीत में, झूम झूम के, हम लोग कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना? लेकिन जब राशिद अली खान साहब गा रहे हैं तो अपनी गहराई में उतरते चले जाते हैं। मुझे लगता है ये उस्ताद साहब ही कर सकते थे।
0: बिल्कुल सच कह रही है नेहा जी। लेकिन हाँ, अभी जो सावन किसी के मिलन, किसी के आगमन की बात कर रहा था, जो झूम झूम के बरसेगा, वही सावन जब बहुत गहरी उदासियों की तरफ जाता है, तब जो आंखों से बारिश होती है, वो जो सावन बरसता है, वो दर्द का होता है, उसमें आहें छुपी होती हैं, बहुत सारी यादें भी छुपी होती हैं, जो दिल की जमी को भिगोती ही भिगोती हैं नेहा जी। और ये शानदार सा जो गीत अब आएगा, ये जुबिन गर्ग की आवाज़ में है। ऐसे गायक जिन्होंने दिल को मोह लिया, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही शानदार सा गीत।

0: feeling blue. My heart says it can't be true. शब्दों को इतने खूबसूरत तरीके से पिरोकर संगीत बनाने का जो काम प्रीतम ने अद्भुत काम किया है, मुझे लगता है कि ये शायद कभी कभी ही संभव होता होगा। और कई बार मुझे ऐसा लगता है वंदना जी कि कुछ गानों को हम समझते नहीं हैं शुरुआत में, लेकिन अच्छे लगते हैं, शायद ये उन गानों में से एक है।
1: हाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसी अनुभूति हो सकती है जैसे आपको अनुभव हुआ है।
0: हाँ,
1: जी
0: सच कह रही हूँ।
1: लेकिन जब भी कभी ये गीत रेडियो के जरिए हमारे कानों में पहुँचता है तो सीधे दिल पर उतर जाता है, क्योंकि इसमें जो शब्दों की बुनावट की गई है वो इतनी खूबसूरती के साथ मन के भावों को दर्शाया गया है। इसमें रिश्तों की जो पेचीदगी होती है, जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुखर दिखाई पड़ती है, जहाँ पर हमको समझ में नहीं आना है कि किसी रिश्ते में हमको बंधना है, जाना है या उसे छोड़ देना है, ये उआ पोह वाली जो स्थिति, कश्मकश वाली जो होती है नेहा जी, वो इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाई गई है। राहुल बोस नजर आ रहे हैं, जब हम राहुल बोस को देखते हैं तो इतने शानदार तरीके से वो एक आम जो व्यक्तित्व होता है, आसपास जो लोग दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही अपने आप को करेक्टर में वो ढाल लेते हैं और उसी रूप में यहाँ पर वो नजर भी आ रहे हैं।

0: जैसे ये गीत आगे बढ़ रहा है, मुझे याद है कि बड़े से सिल्वर स्क्रीन पर प्यार के साइड इफेक्ट रिलीज हुई थी
1: जी।
0: उस समय मैं कॉलेज डेज में थी और मयूर पुरी जी का ये जो लिखा हुआ गीत है, उनके बोल हैं, जाने क्या चाहे मन बावरा। लोग कई बार अपने ही मन को समझ नहीं पाते कि मन क्या चाह रहा है, जहन कुछ और चाहता है, दिल कुछ और चाहता है, कोई निर्णय नहीं है कि असल में हो क्या रहा है, हम चाहते क्या हैं। उसी कश्मकश की जो बात आप कह रही थी, रिश्ता जो बहुत ही खूबसूरत सा है, शायद वो जिम्मेदारी और कर्तव्य की मांग करता है और कर्तव्य में जब हम चूकते हैं तब ये वाली लाइन बिल्कुल मुफीद जान पड़ती है, जाने क्या चाहे मन बावरा।
1: नेहा जी, लेकिन साथ में जब ये बात आती है ना कि सघन अचल सराबोर होवे,
0: हाँ।
1: जाने असुवन में क्या जोर होवे,
0: हाँ।
1: तो ये जो एक बात होती है कि आंसू में इतनी ताकत होती है, और खास तौर पर जब प्रेम में बहाया हुआ जो एक एक कतरा होता है आंसू का, वो पत्थर दिल को तोड़ देता है।
0: मुझे इस गीत की जो ये आखिरी लाइन है, पवन पुरवा में मन उड़ता जाए, बदरा चंदा से मन जुड़ता जावे। कई बार हम जिंदगी जी रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से कोई आता है और जब किसी का आगमन होता है तो हम बादल से बात करने लगते हैं, चंदा को देखने लगते हैं। ऐसे हम इतने बिजी रहते हैं कि कभी सर उठा के देखते ही नहीं कि हमारे मस्तक के ऊपर चांद भी सोहता है। क्योंकि हम ये बातें कई बार हम लोगों ने बोलते हैं नगमे में ये बात की है कि इस तरह की बात शायद हम अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं कर सकते, तो बेस्ट फ्रेंड की जगह लेगा कौन, शायद चंदा लेगा।
1: लेकिन नेहा जी, जो बेस्ट फ्रेंड की जगह चंदा ले रहा है, लेकिन जब कभी उपेक्षा की हवा ठोकर मार

0: आती है तो टूटी पतंग की डोर जैसा मन जो होता है वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता है ये पतंग कहाँ जाकर दिल की ठहरेगी, फट जाएगी किसी तार में अटक कर या ज़मीन पर कहीं गिरी मिली होगी, छत विक्षत सी नज़र आएगी। तो दिल का भी यही हाल होता है, जब तक चीज़ें अपने अनुकूल होती है तो बहुत अच्छा लगता है मन को भी और वो चांद और सितारे सब एक अलग रूप रंग में नज़र आते हैं जो दिल को खुशियाँ बख्शते हैं। लेकिन वही प्रेम अगर ज़रा सा भी कठोरता बरतता है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है तो मन
1: कि सच्चाई से जब हम वाकिफ होते हैं ना
0: जी,
1: जो सामाजिक सच्चाई भी होती है।
0: हाँ देखिए अनिया जी, समाज चाहे जैसे कितनी भी तमाम तरह की बाधाएं क्यों ना खड़ी करे लेकिन अगर प्रेम उसमें बाधा नहीं डालता है तो सब कुछ स्वीकार्य होता है। लेकिन जब प्रेम बाधित कर देता है, प्रेम की तरफ से कोई प्रताड़ना मिलती है दिल को, तब वो असहनीय पीड़ा दे जाता है। तो वही भाव यहाँ पर भी नजर आ रहा है।

0: दोस्तों, इन दो प्यारे से गीतों के बाद एक गजल की धुन आपको सुनाई पड़ रही है क्या? बोलिए।
1: नेहा जी, बिल्कुल सुनाई पड़ रही है।
0: अब यहीं पर एक मिनट, नहीं आप धुन से पहचानिए कि ये क्या हो सकता है, पहचानिए पहले, उसके बाद कुछ बात करेंगे।

0: इस धुन से पहचानिए।
1: देखिए नेहा जी, जो मुझे पहचान में बात आ रही है, यहाँ पर भी उदासियों का ही जोर है, क्योंकि जो एक आवाज उभरेगी अब वो दिल के बड़े ही करीब है हम सबके ही। तो एक खूबसूरत सी गजल जिसका संगीत तैयार किया है जगजीत सिंह ने, लेकिन गाया किसने है, चलिए सुनते हैं।
0: हाँ,

0: अच्छा, याद कीजिए, आपने कुछ समय पहले जब ये गज़ल इंट्रोड्यूस किया था, हम दोनों सिस्टम पर बैठे हुए थे और आपने कहा कि ये वाली गज़ल सेव करके रखते हैं और लेंगे कभी। जब आपने ये बात कही तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं सुन रही थी, एक बार सुना, घर गई, दो बार मैंने उसको सुना। पता नहीं क्यों, जैसे कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि आप उससे दूर जाना चाहते हैं लेकिन फिर वो पुकारती है। ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ। पहली बार एसटी प्रेमन साहब बंदिनी फिल्म में, वो गाना आपको याद होगा,
1: मेरे साजन है उस पार,
0: उस पार
1: जी।
0: और ये मेरे साथ ये दूसरा वाकया है। मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे डिटैच होना है, मैं नहीं सुनूंगी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। इतनी पवित्र सी आवाज़ है, मुझे

0: तो जैसे जो आप आंगन में वो बारिश की बूंदों की बात कर रही थी प्रोग्राम के शुरुआत में ही, जब एक पवित्र सी बूंद टपकती है और दिल का चैन चुरा लेती है, शायद वैसा ही मुझे कुछ लगा है।
1: और ये चित्रा सिंह जी की आवाज़ है जो कि जगजीत सिंह जी की शरीके हयात रही हैं, और दोनों का प्रेम का बहुत ही खूबसूरत रूप दिखाई पड़ता है जब हम इन दोनों के गीत सुनते हैं साथ साथ। और इतनी खूबसूरती के साथ लफ्ज़ों को पिरोया गया है, एक एक अगर लफ्ज़ इसके देखेंगे तो इतनी गहराई लिए हुए है, इतनी गहरी वो बात करता है, असर पैदा करता है कि हमारा हृदय भी खिंचा सा चला जा रहा है।

दोस्तों, जब इस गज़ल का अगला हिस्सा या अगला शेर हम कहें, जब वो गा रही हैं, मैं एक ख्वाब ही सही आपकी अमानत हूँ। कई बार लोग जो है वो अपने ख्यालों से प्रेम करने लगते हैं, तो इसी गज़ल के ज़रिए, इस शेर के ज़रिए ये बात कही जा रही है, हो सकता है कि मैं ख्वाब हूँ, लेकिन इसको उसी तरह से संजोना जैसे कि हम एक काया को संजोते हैं, जैसे कि हम कोई बहुत ही प्यारी चीज़ को संजो करके रखते हैं, उसको देखते हैं, उसके साथ जीते हैं। ये मुझे लगता है कि कल्पना की गहराई या उसकी पराकाष्ठा कहें, बहुत ही सुंदर है। जब आप ठहरेंगे तो पता चलेगा कि आपके जहन में न जाने कितने सारे ख्वाबों ने कब जन्म लिया होगा और वो आपके साथ चल रहे हैं, अनजाने में ही सही।

0: वाह क्या बात है, शायर जो शायरी करता है तो वो कितने एहसासों के दरमियान वो गुजरता है, वो अपने एहसास पिरोता है और हर एक दिल जो उसे सामने दिखाई पड़ता है, हर दिल को पढ़ता है और अपनी शायरी में अपने सफ़े पर उसे कलमबद्ध कर लेता है। तो यहाँ पर जो ये शायर हैं प्रेम वारबर्टनी साहब, उनकी ये खूबसूरत सी गज़ल है और हर चीज़ को संजो के रख लेने वाली ये बात होती है। तो इस तरह की जो गज़लें होती हैं वो भी संजो कर रखने लायक होती हैं। इस गज़ल में और भी बहुत सारे शेर हैं, जिसमें कि एक बहुत ही खूबसूरत शेर है नेहा जी, जिसे इस गज़ल में नहीं लिया गया है, लेकिन है वो इतना खूबसूरत कि उसे कहे बिना मन रुक नहीं रहा है। तो कहिए
1: तो न रोकिए खुद को।
0: तो देखिए वो कहते हैं ना कि भरी बहार का सीना है जख्म जख्म, मगर सबा ने गाई है लोरी शफीक माँ की तरह।
1: वाह,
0: तो ये कितनी बड़ी बात है, एक ममत्व की छांव तले जब हम होते हैं तो हम चाहे कितने भी जख्मी क्यों ना हो, लेकिन हमको हर एक जख्म हमारा भरता हुआ सा महसूस होता है, क्योंकि वो एक ममता की छांव तले उसे दुलार प्यार मिल रहा होता है, मरहम की तरह से वो जख्म पे लगता है ममत्व। तो ये देखिए आगे जो बात कही जाएगी अब, वो भी बहुत

0: वंदना जी, दोस्तों मैं सच कहूँ तो मैं प्रेम साहब से पहली बार मुखातिब हो रही हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नई हूँ, तो ये जाहिर है। कई बार हम लोगों ने मजरूह सुल्तानपुरी साहब की, शैलेंद्र जी की और हसर जयपुरी साहब की, फैज़ अनवर साहब की बात की है, लेकिन जब हम अभी प्रेम साहब को पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अलग तरह की गहराई है और आप मुरीद होते जा रहे हैं। क्या कहूँ कितने सारे अर्थ इसमें छुपे हुए हैं। ये जो रुत है, ये जो समा है, कहीं बीत न जाए खिजां की तरह। ये शायद पतझड़ की बात हो रही है एक आखिरी पड़ाव, एक आखिरी पल की बात हो रही है ना?
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जो पुकार उठ रही है, जो बसंत की तरह से किसी को महसूस हो रही है, वो पुकार सुनने में देर ना की जाए, नहीं तो फिर पता चलेगा कि वो पतझड़ का मौसम कब आ जाएगा, वो पतझड़ ऐसा जो स्थायी हो जाए शायद, तो इससे बचना चाहिए। और नेहा जी, समय अब बच नहीं रहा है कि बहुत सारी बातें और की जाए। बहुत ही खूबसूरत गीतों नगमों को हम लोग आज बोलते नगमे में पिरो कर लाए हैं। दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी हमारी ये पेशकश
0: जी,
1: लेकिन अभी फ़िलहाल विदा लेने का समय आ गया है, तो दीजिए हमें इजाज़त।
0: नमस्कार।
2: बोलते नगमे,
3: अभी आप सुन रहे थे बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता, वंदना राठौर, कथा प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारी स्टूडियो घड़ी में मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, बने रहे हमारे साथ।

ऐसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर ने

0: विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today, Mr. Doval said, disruptions in global supply chains have resulted in economic hardship for all the countries. He said, there is an urgent need for BIMSTEC member countries to collaborate, take decisive actions for the mutual benefit and find solutions through mutual discussions. Mr. Doval highlighted BIMSTEC brings together the most significant and vibrant regions of the Indian Ocean with a combined GDP of nearly $5 trillion.
2: BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building and economic security should continue to drive our collective efforts. For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to act East policy and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions.
1: The central government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel, ATF, as part of its latest fortnightly review of fuel export taxes.

मिनट पर। पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 6:30 पर। पंचम लाल से रानू की बातचीत सुनिएगा किसान चर्चा में। राजमणि घायल के गाय लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में।

युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम में युवाणी शाम 5:15 पर आज की पीड़ा पुंज अरुणा आसिफ अली। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम से 4:00। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित होगा 2:30 पर। ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट सुनिएगा 1:15 पर। उषा बाला की वार्ता होगी सिलाई कढ़ाई के हुनर से आत्मनिर्भरता। इसके अलावा सावित्री श्रीवास्तव के गाय लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद 12:30 पर। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित अनोखे लाल से 3 ताल में तबला वादन हम आपको सुनवाएंगे।

अभी आप सामूहिक स्वर में देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज सुनते हैं पंडित अनोखेलाल से तीन ताल में तबला वादन।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम ये आप सुन रहे थे पंडित अनोखे लाल से तीन ताल में तबला वादन। अभी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद है अब आप सबने ट्यून कर लिया होगा आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, क्योंकि समय है आपकी पसंद कार्यक्रम का। अर्ज किया है, जख्मों पर मरहम हम लगाते हैं धूल से, जख्मों पर मरहम हम लगाते हैं धूल से, देखो गुलाब मांग बैठे हम बबूल से। गवाह हैं सभी किस किस से पूछोगे, कांटे चुभे थे हमें तो हर एक फूल से। तो चलिए चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की तरफ और

खाना है ना, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़ी नाजुक चीज होते हैं। जी हाँ, इस गाने की फरमाइश हमें आई है गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो आइए सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म का ये गाना।

0: तो खुद घायल होते हैं फूल आहिस्ता फेंको।
1: दोस्तों आज की जिंदगी में हम सब भागे जा रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे और कोई दूसरों से आगे निकलने के पीछे। पर एक दिन जब मंजिल मिलती है तब एहसास होता है कि जिस जिंदगी के लिए हम दौड़े थे उसे तो जीना ही भूल गए। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले गीत की तरफ और फिल्म का नाम है केदारनाथ और इस गीत की फरमाइश हमें आई है मुबारकपुर ऊंची तकिया से दिलशाद हुसैन, गुजरात से धीरज वीर रबारी, संजय और सचिन, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे दीपक और अंकुर राघव गुप्ता, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम।

रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का केदारनाथ फिल्म का ये गाना।

अर्ज किया है कि हौसला रख, बदल जाएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। ये मुट्ठी भर आसमान भला क्या हौसलों को रोक पाएगा, मुफलिसी में जलेगा कुछ और दिन, जुगनू भी एक दिन आफताब बन जाएगा। और अब आ गया है हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है रॉकी और इस गीत की फरमाइश आई है मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, गोविंदपुरा से दातार सिंह, संगीता, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान और शहनाज खान, मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। तो सुनिए अपनी पसंद का रॉकी फिल्म का ये गाना।

अगले गीत की फरमाइश हमें की है नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विनी और मंगला बेंचा कृष्णा पार्क नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना आर्यनगर से उत्तम जंघैल मोरस अनिल अजित आयुष और नंदिनी दादनपुर प्रयागराज से विकास और नीतीश आर्या पवन निषाद प्रभाकर तिवारी और गुलाब चंद्र यादव पुलिस चौराहा प्रयागराज से मधु कनौजिया गोविंद कनौजिया बाला कनौजिया हनी कनौजिया और गौरा कनौजिया आप सबकी पसंद का हम सुनवाने जा रहे हैं ये गाना फिल्म का नाम है सनम रे तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत

दोस्तों कहा गया है जीवन को समझना हो तो लूडो से समझिए। जी हाँ, लूडो से। उम्मीद तो हम हमेशा छह की करते हैं, पर एक भी आए तो चलना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी पासे की आवाज से नहीं, इरादों की गूंज से चलती है। यहाँ हार वही मानता है जो रुक जाता है, वरना धीमी चाल भी मंजिल तक पहुँचा ही देती है। और ऐसा ही एक मंजिल के पास जाने की गाने की फरमाइश आई है हमारे इन श्रोताओं की। इनके नाम है नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत और वाणी पामिका। मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। मध्य प्रदेश से धनराज बैरागी, सीमा बैरागी, किट्टू, खुशी और लक्ष्मी। तो सुनिए किशोर कुमार की आवाज में इम्तिहान फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित, संदेशों पर आधारित फिल्मी ढाबों का प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रस्तुति मधु कुमार की थी। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके बाद इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी हमारे लखनऊ केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की।

0: ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defense Minister Rajnath Singh has said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. He emphasized that the government's endeavor is to build an India where borders are secured and connected. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization. He said the infrastructure being built today will define the country's civilization in the coming years. He said the government's aim is to ensure that no citizen living in any remote area feels cut off from the mainstream.
2: We understand that the stronger a country's infrastructure, the stronger its future will be. We have ensured that no citizen living in the most remote corner of the country feels disconnected from the mainstream. We have undertaken a mission to connect every village, every city, mountains, rivers, and remote regions across the country. We have pursued this vision because we believe that connectivity is an essential pillar of a nation's development.
1: National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today, Mr. Doval said disruptions in global supply chains have resulted in economic hardship for all countries. He said there is an urgent need for BIMSTEC member countries to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions through mutual discussions.
3: BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building, and economic security

0: We should continue to drive our collective efforts. For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to Act East policy, and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions.
1: The Supreme Court today directed all states and union territories to formulate and implement a comprehensive policy for the early or premature release of prisoners who are of advanced age or are terminally ill. The court ordered that the policy be framed and notified within 3 months to ensure a uniform mechanism for considering such cases across the country. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the directions by invoking its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution while deciding a public interest litigation plea seeking a humane and uniform framework for the release of elderly and seriously ill prisoners. The Delhi High Court today directed authorities to monitor the health of activist Sonam Wangchuk on a daily basis, stressing that life is precious. Mr. Wangchuk is on an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi. A bench of Chief Justice D.K. Upadhyay and Justice Tejas Karia asserted that Mr. Wangchuk's condition should be checked regularly by government doctors. Solicitor General Tushar Mehta, who appeared for the centre as well as the Delhi government, submitted that life of every individual is precious and there was no objection to undertaking Wangchuk's regular medical checkup. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the India-European Union Free Trade Agreement can open real doors for Indian industry and deliver tangible outcomes for Indian businesses, MSMEs and people. In a social media post, Mr. Goyal informed that he interacted with the Indian business delegation comprising members of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, ASSOCHAM and other regional associations in Brussels, Belgium. The Indian Meteorological Department has issued orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal and Odisha today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Assam, Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Uttarakhand for the day. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain on Sunday night. And with that, we end this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्तावानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में 7 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के बारे में मालूमात फराहम करते हुए इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि काबीना ने वाराणसी में बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए दरियाए वरना के 7-6 लेन और 4 लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस 43 किलोमीटर तवील राहदारी पर 10,998 करोड़ रुपये लागत आएगी और वाराणसी के अहम मकाम को जोड़ेगी।
3: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम बोट में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा। गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
2: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के लिए मरकजी काबीना की तरफ से मंजूर शुदा प्रोजेक्टों का खैर मकदम किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ग्रैंड काशी काबिल रसाई काशी के लिए वक्फ ये प्रोजेक्ट अकीदतमंदों के सफर को मजीद काबिल रसाई बनाएंगे, ट्रैफिक को फिर से मुतहरिक करेंगे और सयाहत तजारत और तवानाई डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में शुमाल मशरकी रेलवे के ऐश बाग जंक्शन का वज़ीर-ए-आज़म अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर के 75 तज़ेन और आरई शुदा रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह आज पंजाब के जालंधर कैंट स्टेशन से होगा। 20 रियासतों में फैले हुए 75 अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एक और अहम कामयाबी की निशानदेही करता है जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन की तामीर नौ के प्रोग्रामों में से एक है। تقریباً 1570 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار

0: गंगा, अरे ओ गंगा, हम कहा बहनी राम राम बोलते नहीं हो।
1: राम राम सत्या बहनी, कुछ सोचे लाग रहे। पनघट सुने वाले सब बहनी हरन के सत्या और गंगा के राम राम।
0: राम ई बतावा, पनघटे पर आवत बेरी का सोचे लगी रहू?
1: सोचत रहे देखा कि जोन हमार बहनी हरे हैं कितनी समझदार हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: हाँ।
1: आज समाज में हर मुकाम पे, मतलब चाहे जोन भी क्षेत्र हो, हर जगह अपन पहुंच बनाए हैं।
0: देखा बहनी, एक के लिए दूर न जा। अब जैसे विनीता काकी के देख ले।

0: साल घर गृहस्थी खेती किसानी सब संभालिन और उनकर बेटवन जब बड़े भन तो उन्हें जोन बाटे प्रेरित किए कि अब ग्राम प्रधानी के लिए लड़ाई के लिए है ना। तो देखा जब ग्राम प्रधानी में आईन वो ईश्वर की कृपा से वो विजयी भी भइन तो देखा गाँव के भी जोन बाटे रूपरेखा कितने अच्छे से बदल दी
1: अच्छे से बदल थे। फिर देखा एक अगर कदम आगे बढ़ावा थे तो फिर और भी जो महिलाएं हैं बहनी हरन हैं उन सब जागरूक होती।
0: बिल्कुल देखा कहे के मतलब यह है कि नारी के समाज में भूमिका हर तरह से हर रूप में है और वो के बड़े अच्छे से निभाई रही हैं। और तो यह चर्चा पर हमार मन करता टे कि आज अपने बहनी हरेन से कसने यही पे बत कहू कह लीन जाए।
1: बिल्कुल है ना, ये सोचत रहे कि आज चल पनघटे पे तो ये पे बात करब हम सब की नारी की समाज में भूमिका का का बा है ना। देखो कहा गए बा यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देव मतलब जहाँ नारी के सम्मान होते है वहीं देवतन के वास होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहती हो। हमारे समाज में महिलाएं के समझ ले जन्म से लेके मृत्यु तक एक आपन अलग अलग किरदार निभावत रहती ना, बड़े अच्छे ढंग से निभावत है ना।
1: खाली मनुष्य भर ना है इन, हाँ। वो जीवन के सृजन करता है इन, संसार के आधारशिला है इन, और परिवार के धुरी है इन,
0: बिल्कुल
1: और समाज
0: सही कहती
1: के प्रेरणा भी।
0: बिल्कुल कहे के मतलब है कि अलग अलग रूप में अपने हर कर्तव्य के बड़े सही ढंग से निभावत है। और एक महिला के जिंदगी सामान्य नहीं होते, कभी वो माँ बन के, कभी बेटी बन के, कभी भी जोन बटे पत्नी बन के और बहन के अपन अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से भूमिका के निभावथिन। और हर रिश्ते का अगर देखा जाए तो नीव ई बहनी हरे ही होथिन है ना।
1: अच्छा देखा कल्पना करा अगर संसार में नारी ना हो तो का हो, न माँ हो मतलब न माई होती न बहनी होती न बेटी हो और न जीवन में मधुरता हो।
0: बिल्कुल सही कहती
1: तो देखा मानव सभ्यता के अस्तित्व ही समाप्त हो जाते हैं ना। इही लिए ये कहा बिल्कुल उचित बा कि नारी खाली समाज के हिस्सा ना है बल्कि समाज के आधारशिला भी है। अब ये कहूँ ना कि जैसे देखा माँ तारी बहन पत्नी हर रूप में अपन योगदान दे थी, तो देखा इतना स्नेह जीवन साथी बन के अलग तरीके से मतलब सहयोग कर थी घर में, बिटिया बन के घर में खुशी भी खेल थी। देखा वास्तव में नारी अपने प्रत्येक रूप में समाज के प्रेम त्याग सेवा और संस्कार प्रदान करत है।
0: बिल्कुल सही कहती हो। ओकरे साथ साथ देखा घर बाहर दोनों जगह ही अपने जो है कर्तव्यन के निभावत हैं। अगर बहनी हरे सही शिक्षा का व्यवस्था उन्हें मिल जाता और ओके साथे साथे अवसर मिल जाता तो एक औरत घर के साथे साथे पूरे देश के भी चलावे के जज्बा रखत है।
1: बिल्कुल है ना, आजकल देखा शिक्षा के क्षेत्र में समाज के विकास शिक्षा के बिना संभव तो ना है।
0: बिल्कुल हाँ।
1: तो एक महिला शिक्षित होते तो खाली एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार शिक्षित।
0: बिल्कुल
1: होते।
0: बिल्कुल
1: अगर एक पुरुष के देखा शिक्षित करते हैं तो खाली वो व्यक्ति शिक्षित होते हैं ना, लेकिन एक महिला अगर शिक्षित होते तो पूरा परिवार पूरा समाज शिक्षित होते जैसे बताए। तो आज बहनी हरन देखा विद्यालय में भी महाविद्यालय जैसे अभी
0: हर जगह अपन स्थान बनाए हैं,
1: विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करत है और शिक्षा देत है।
0: बिल्कुल ओकरे साथे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पृथ्वी पर हर चीज का जोन बटे एक संतुलन बनाए के एक आधार होता, वही तरह से मानवी जीवन में संतुलन बनावे के लिए अगर देखा जाए तो बहनी हरे बहुत अच्छे ढंग से अपन जोन बटे निभावथिन। कहे कि संतुलन बनावे के लिए एक स्त्री पुरुष दोनों जरूरी हैं। मुना बहनी हरे घर बनावथिन वही समाज में भी अपन गणना का देथिन। कहे कि चाहे देखा जाए जैसे अभी शिक्षा का क्षेत्र कहूँ, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र चाहे खेल का ही क्षेत्र देख ले, हर जगह ज्ञान विज्ञान में हर जगह वो अपन करथिन। सब बहनियरे समाज के विकास में अपन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावथिन। महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार समाज देश सही तरीके से नहीं चल सकते। कहे के मतलब नारी हर नर के अंतर मन में बसे वाली वो आत्मा की तरह है जो हर संबंध में है ना अपने आप के एक ऐसे रमाय देथिन कि एक अलग ही खुशबू बिखेर देथिन। ये नारी जोन बटे ना बहनी जन्मदाता होथिन और अपन जन्मदाता तो दे होथिन एक माँ के रूप में आवथिन, फिर मुना ओकरे साथ साथ एक पत्नी के रूप में अपने पति के प्रेम देथिन, एक माँ के रूप में अपने बच्चे के ममता लुटावथिन और शिक्षिका के रूप में भी देखा ज्ञान भी बिखरावथिन। कहे के मतलब है कि हर जगह बहनी हरेन आपन भूमिका इतने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं कि हर क्षेत्र अब अधूरा लगत है इनके बिना।
1: बिल्कुल देखा देखा इतिहास में भी बाकी रानी लक्ष्मीबाई के साहस

0: अहिल्याबाई के सुशासन, सावित्रीबाई फुले के शिक्षा के प्रति समर्पण और आधुनिक भारत में देखा बहुत सारी महिलाएं उपलब्धियां प्राप्त करके हमारे प्रेरणा बना थी, है ना। तो इन सब ये सब सिद्ध की इनकी नारी अवसर मिले पे इतिहास बदल देते।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो आज आवश्यकता केवल महिला सशक्तिकरण के ना बल्कि महिला सम्मान के भी बा।
1: बिल्कुल।
0: सशक्तिकरण के अर्थ खाली नौकरी देना है कि नौकरी मिल जाए तो बस चला महिला सशक्त होएगी, महिला अपने पैर पे खड़ी होएगी, ना बिल्कुल ना। उनका हर जगह मतलब शिक्षा, आत्मविश्वास, सुरक्षा, समान अधिकार, समान अवसर और सम्मानपूर्ण जीवन, ये कुछ ऐसी चीज है जिनका कि अगर मिले तो नारी हर जगह हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर।
1: बिल्कुल। और देखो अपने घर में ही अगर ध्यान दिया जाए तो चाहे स्त्री हों चाहे पुरुष हों, स्नान ध्यान करे के बाद, स्नान करे के बाद जब पूजा अर्चना के लिए जातीन तो ऐसा कोनो मंदिर ना हो जहाँ माता भवानी या दुर्गा मैया की फोटो ना हो। वहीं से देखा एक नारी को ही पूजे के आपने मन में बना लेतीन। तो जब देखा हम नारी के पूजा के स्थान पे देखी था, कर्म के स्थान पे देखी था, हर स्थान में वो अपने आप की एह तरीके से स्थापित किए हैं कि घर में अगर एक दो दिन के लिए बहनी हरे कहीं बाहर भी चली जातीन तो वो घर देखा कितना खाली लगा था।
0: देखा कुल मिलाए के हम ही कहे चाहे कि आज की नारी अबला ना है सबला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहनी।
0: तो खाली सपने ना देखती, उन्हें साकार भी करती, खाली परिवार ना संभलती बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के निर्माण में भी अपन अमूल्य भूमिका निभावत है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो सब लोग देखा कितना अच्छा से बात सुने हुई है बहनी हरन, तो जब गुने हुई है।
1: बिल्कुल। देखा जब सुन लिहिन गुन लिहिन तो कस ने यही बात पे एक खिनी नीक नीक कहरवा सुनाई दिन जाए। सावित्री श्रीवास्तव की आवाज में हमार बहनी हरे सुने और तू सुन ले
0: नेकी और पूछ पूछ चला सुना जाए।
1: बिल्कुल।

0: सत्या भाई नी
1: हाँ
0: कितनी नीक गवनई रही ना।
1: बिल्कुल नीक गवनई रही। और देखा गवनई वगैरह ऐसा होता कि मन ही बिसर जाता है ना, हर चीज वही में रम जाता है।
0: तो ही खोई गए कि फिर पनगटे बनी आनंद से बतिया एक बार यो बुलाए गए।
1: नहीं बहनी तो जौन बतिया की बात नहीं बोला फिर आगे।
0: देखा बतिया की बा कि कहा थे इनकी इंसान के सबसे बड़ी पूंजी होकर हुनर होते है ना। धन दौलत कभो भी कम या ज्यादा हो ही सकते है, लेकिन अगर कोनो व्यक्ति के हाथ में हुनर बा तो वो कोनो भी परिस्थिति में अपने लिए रोजगार के रास्ता बनाए सकते है।
1: बिल्कुल सही।
0: सिलाई कढ़ाई भी ऐसने एक हुनर है जैसे न जाने कितनी बहनी हरन युवा और परिवार के जीवन में खुशहाली लाए हैं।
1: बिल्कुल सही कहती हो। और देखा ये जब हुनर की बात की हो तो देखा अपने गांव घरे में भी हुनर कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है ना। जो आशा अपने गांव के हैं इनके ही तो देखा जरूरत पड़त रहा था लोगन के कोनो काम से तो जाए पड़त है। हाँ तो जब हम गए बहनी उनके यहाँ तो उनके डेहरी से अंदर गोड़ धरत भय। उनके घर में हर जगह हाथ से सिलाई कढ़ाई, जो कढ़ाई नहीं होते क्रोसिया से द्वार का बढ़िया पे पर्दा हाँ लटकन बढ़िया सुंदर सुंदर। और यहाँ तक कि अगर नजर दौड़ी उनके यहाँ तो जोन बटे तखत का जो कोना कोना रहा थी ओहमन वो चद्दर बिछाए रही है चद्दर के किनारे किनारे हाथे से ही होकर लैस के तरीके से जो नहीं होते बनाए के। मतलब कहे कि चले जैसे उनकर गुनी बिटिया रही वैसे गुनी उनकर पतो हो आई गई।
0: देखा कम चीज में कितना बढ़िया अपन घर सजाए के रखे हैं।
1: हाँ
0: है
1: तो देखा जब ये पर आप बात उठाई दिए हो तो हमार मन करता ठीक अपने पनघटे पर एक कसन पर चर्चा हो जाए, सिलाई कढ़ाई हुनर से आत्मविश्वास। और एक विषय में देखा बतावे के लिए अपने पनघटे पे आई हैं उषा बाला श्रीवास्तव बहनी है ना। तो चलो और ओकरे साथे साथे आप और हम है ना
0: सब पर चर्चा किया जाए। तो उषा बाला श्रीवास्तव बहनी के बहुत बहुत स्वागत
1: स्वागत बा। तो बहनी आप बतावे सिलाई कढ़ाई हुनर से आत्मविश्वास कैसे बढ़त।
2: देखो बहनी जैसे हम लोग जानी था कि रेल के दो पहिया की तरह पति और पत्नी होती परिवार के चलावे के लिए दोनों पहिया जरूरी होते। तो ये तो हम लोग जनते ही यही परंपरा से चली आए बा कि भाई एक पुरुष जो ना है वो घरे से बाहर जाए के अपन काम धंधा करत थी और घर का आर्थिक स्थिति बनावत थी जैसे पूरा घर चला था समाज चला था राष्ट्र चला था। लेकिन कि आजकल महंगाई का जमाना लड़कन के पढ़ाई लिखाई का खर्चा ये सब इतना बढ़ गया बा कि हमरे बहनों के चाहे कि वो अपन जो है कुछ न कुछ काम करत रहें। अब जरूरी नहीं ना कि सब बहनी दफ्तर में जाए के जो है कलम चलावे
1: है ना। सही कहती हो।
2: जरूरी नहीं ना,
1: जरूरी नहीं ना कि हर बहनी के दफ्तर में रुचि हो,
2: रुचि हो। हाँ सबके पास जैसे एक पेड़ होता कि उसमें खाली पत्ती लगा था, एक में खाली फूल लगा था, एक में खाली फल लगा था, वही तरह हर व्यक्ति के पास अपना अपना एक एक हुनर होता है। उ जे के पास जौन हुनर बा के पास कढ़ाई सिलाई के बा, केहू के पास खाना बनावे के बा, केहू के पास वो मेकअप करे के जौन आजकल ब्यूटी पार्लर चला।

0: बा, सही कहते हो,
1: ब्यूटी पार्लर बा, केहू घरे में बैठी के ट्यूशन बहिन हरे कर लेते हैं, पढ़ी लिखी आई भाई बाहर जाए
2: तेल मसाला देखा, अचार मसाला मुरब्बा में बड़ा अच्छा हाथ रहा था,
1: अचार उचार बनावे, बड़ी मुंगौड़ी बनावे, पापड़ उपड़ बनावे, तो जेके पास जौन होना रहा है, हम तो कही भाई जेके पास जौन बा उही का प्रयोग करके उही साधन से और शांति से, सबसे बड़ी चीज यह है कि शांति से। अब जरूरी नहीं ना कि हम टीचर हो ही पाई, भाई ना ही हो पाए, हमारी योग्यता नहीं रही, लेकिन हम सिलाई कढ़ाई जानी था, पापड़ बड़ी बनाई जानी थी, तो आज तो हम इस बात पर चर्चा करा जाए कि सिलाई कढ़ाई के द्वारा कैसे हम लोग, देखा एक बहन जो नहीं अगर वो कुछ ना ही जानते, मान ल जब ब्याह भाई के आई तो घरे मशीन चलावे थे जानत रही ना, तो भाई देखा तकिया के गिलाफ में कोनो कटिंग ना ही ना, एकदम सीध सीधे की ओंकी ओंकी ओंकी चारू खाना से दिए, जना तकिया गिलाफ बन गया, जैसे तकिया गिलाफ बना था भाई नहीं देखा वो कि झोला बना था, आजकल धरे धरे चला था ना प्लास्टिक हटाओ झोला लाओ, तो झोलवा कहाँ से आए बहनी, हरे तो सब सिल ही ना,
2: बिल्कुल और का
1: सादा है? सादा झोला सिल दीन और मेकटी अपन लगाई दीन, हैंडल लगाई दीन, होएगा
3: सब्जी उब्जी
1: सब लेके आए, तो अगर कुछ नहीं जाने तो इतना तो जाने थी बहन लोग, जे सिलाई के मशीन चलावे जाना था वो इतना जरूर जाने, तकिया गिलास सिल ग, झोला सिल ग, छोट छोट लड़की लड़का है, फटाहा पुरान जौन जहाँ से सिलाई खुली बा ओका तो सिलाई जाना थी ना,
2: बिल्कुल
1: ओका सिल दिया। अब कुछ बहन ऐसी हैं जौन अपने कुंवारेपन में ही वो अपन थोड़ा सा सिलाई सीखें, तो सूट सलवार देखा बहनी सब ही पहना था आजकल, धोती होती तो चला गया जमाना, तो सलवार सिल दीन, कुर्ता सिल दीन। अब हम कई बार बहनी घरे कहती अब कहाँ पाई कुर्ता, अरे भाई घरे घरे जाए के पता कर, जहाँ सभी जगह मेहरारूवन तो बहनी हरे बिटिया हरे सभी घरे में हैं, तो घरे घरे जाए के बताओ भाई कि हमका सिलाई आवत है, या दुईठी सिल करके अपन पहन करके उनका दिखावा कि देखा भैया ये तो हम अपने से सिले हैं,
3: देखा बतवाहू ना पड़त बहनी आजकल जान जाते हैं कि फलाने की बिटिया सिलत भैया बिल्कुल सिलत बा, तो वो खुद ही आए के संपर्क दे ही, हाँ बहनी कपड़ा सिल दे,
1: बिल्कुल सही कहती है कि वो अपने से आए के बताई हाँ। कि भैया हम तो सुना कि तू सिलत हो बहनी, हमारी ही सिल दिया एक बारे, हम तो कही थे तनिसो आगे बढ़ा, तो आजकल तो देखते हैं सरकार जो ना है बढ़िया बढ़िया सुविधा दिए बा कि भाई कोनो छोटा सा लोन हो जाए कुछ कितना 8,000 रुपया 12,000 रुपया जौन भी
2: स्वरोजगार के लिए,
1: हाँ स्वरोजगार के लिए अपन एक ठी मशीन ही आएगी भाई हमारे हाँ, केहू के औकात नहीं ना क्यों मशीन खरीद सके, तो मशीनों खरीदे बेरे सरकार पैसा देते है, एक ठी दुई ठी मशीन सिल लिया, देवरानी जेठानी ननद भौजाई जितने जने है घरे में मिल के अपन धीरे धीरे सिलाई पंचायत पंचायत करे से बढ़िया आई बा कि चार पैसा जौन है जौन इन कि आत्मनिर्भरता, तो एक आर्थिक सहयोग होएगा परिवार के बने और अपन आत्मनिर्भरता एक अपन आत्मसम्मान होता कि चला भैया हम ई काम कैले था और ऐसे हम इतना पैसा कमाई ले था।
2: और जानत हो गंगा सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग कुछ अपने हाथे से सिल लिया जैसे हाँ। अभी बताओ था इन ब्लाउज बना लिया या सूट बना लिया कुछ भी तो देखा अगर ओका कैल और कमवा अगर फिट हो जाता
3: हाँ।
2: है ना तो इतना खुशी होता बहन,
1: बहुत बहुत
2: आज जौन बटे हम पैसा बचा लिया कुछ
3: बिल्कुल
1: पैसा बचा लिया और पहन के खुशी होता
2: हाँ।
1: अरे का बताइए एक ठीक रामचरित मानस में चौपाई है कि निज कबित के लागन नीका सरस होई अथवा अति फीका, अच्छा होई तो खराब होई तो जौन आपन अपने से बनावा जाता जेका कहती खुद बनाए यही है खुद सिए यही खुद बनाए यही तो ओकर जौन एक खुशी है और जौन एक आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता
2: बिल्कुल बढ़ जाता है। तबियत का था नीक होए बहनी चाहे नेवर है तो हमार एह दैया थोड़ा कम अच्छा बनावा अगली दैया बनाओ तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहूँ जैसे जैसे काम करत जाब कुशलताओं में बढ़त जाए। अब आजकल देखा बहनी डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चलता है बहुत दिन से आए लेकिन हमरे लोगों के जमाने में नहीं रहा फैशन डिजाइनिंग और ड्रेस डिजाइनिंग है वो तो ओमे पूरा सब बतावा थे कि कपड़ा जौन जैसे हम लोग सलवार कुर्ता पहनी थे सब बहनी लोग ओका और कैसे आकर्षक बनावा जाए ओमे कौन डिजाइन बनाई दिन जाए कि वो और अच्छा लगे
2: हाँ, रचनात्मक तरीके से ऐसे डिजाइन ले आवे
1: कहाँ कढ़ाई कह दे कहाँ पैच लगाए दे तो बना बनावा फूल उल मिला थी तितली उतली ओका कैसे ओमे टांग दिया जाए कैसे टांग दिया तो ये सब जन का आवत रहा था तो समझे कि वो एक टेलरिंग का दुकान खोल सके जेका अपने लोग कही थी ना कि दर्जी की दुकान यहाँ
3: बिल्कुल लगाए कि देखा ओकर दाम भी बढ़ जाते हैं उनका मुनाफा भी हो जाता
1: मुनाफा हो जाता। अब और आगे अगर हम तो एहू बरे सरकार लघु मध्यम उद्योग के लिए भी सरकार एक निश्चित पैसा देता देव चार छठी मशीन लगा लिया कढ़ाई का मशीन रख लिया दो चार अपने साथे अपन कार्य

0: करती रख लिए बहन लोगन का गांव देश
1: के, धीरे धीरे कही के बढ़ावत जाओ।
0: हम तो मतलब हमरे पास तो हुनर है बहन बा, लेकिन हम चार लोगन के लगाई लिए के तुरपाई करता, के काज बनावता, के बद्धी बनाई के टाकता।
2: गंगा कहे के मतलब समूह के हिसाब से, जैसे समूह में बहनियां रे दोपहर के खाली बहन तो अपन समय निकाल के अपने जोन बटे काम कर लेथिन, ओकरे साथ साथ देखा ई जोन बटे कहीं ना बहन जैसे व्यवसाय, छोटे व्यवसाय का शुरुआत भी कीन जा सकता है ना। अगर आप छोटे से शुरुआत करत हो तो आपके देखा लागत भी ज्यादा नहीं होते है ना, और मानसिक रूप से दबाव भी नहीं रहते कि समय पे आपके इतना काम कहके दे के बाटे।
0: मतलब ये है देखा बहनी कि अगर हम छोटे से शुरू करके हम ऊपर भी जा सके ना। बहुत लोग कहते हैं का यही में जीवन बिताई दे, चार पैसा कमाई के चाठी पेटी कोट सिल के चाठी झोला तकिया गिलास। तो अगर हमरे अंदर हुनर, जैसे बात भाई टॉपिक पे कि हाँ हुनर के द्वारा, तो अगर हमरे पास हुनर और बा तो हम और ऊपर काम कर सके थे। ओके बाद हम
1: मटबे की है देखा आज मतलब लाखों ऐसन बहनी हरे हैं कि जेके सिलाई कढ़ाई के माध्यम जोन बनावत हैं सहायता समूह के माध्यम से।

0: कोट सिल के चाठी झोला तकिया गिलास। तो अगर हमारे अंदर हुनर, जैसे बात भाई टॉपिक पे कि हाँ हुनर के द्वारा, तो अगर हमारे पास हुनर और बा तो हम और ऊपर काम कर सकते थे। ओके बाद हम
1: मटबे की है देखा आज मतलब लाखों ऐसन बहनी हरे हैं कि जेके सिलाई कढ़ाई के माध्यम जोन बनावत है इन सहायता समूह के माध्यम से प्रशिक्षण लेके तो अपने जीवन के भी बदलत है न, और देखा देश विदेश तक उनका कपड़ा जा रहा
0: है। बिल्कुल यही यही हमारे कहे का मतलब था रहा,
1: मतलब आत्मनिर्भर है उन्होंने केहू से कोनो इना है कि हम उनके भरोसे चलत है।
0: ये बात
1: वो आत्मनिर्भर है कि हम कुछ भी कह सके थे, हम अपन घर चला सके थे, हम समाज के चला सके थे, अपने बच्चन के अच्छे से।
0: सबसे बड़ी चीज यह है कि लड़कन बच्चन के परवरिश में हम अपन आर्थिक योगदान दे सकी था।
2: बिल्कुल, और जैसे शुरू में सबसे पहले उषा बहनी कहिन की स्त्री पुरुष जोन बटे दुई पटरी ऐसन होती कि जो घर गृहस्थी का गाड़ी बड़े अच्छे ढंग से चल सके। तो अहमद हम ये कहे थे कि अगर भैया हरे कमाए रहा है परदेश है या कहीं भी है, किसी कारणवश से पैसा नहीं भेज पाए तो एकदम उन्हीं पे आश्रित नहीं है इन बहनी है रे, अपन कुछ बचत कर ले थी। ओकरे साथे साथे सबसे बड़ी बात होता कि जब उनके आर्थिक सहयोग मिले लगा था और आर्थिक सहयोग के साथ साथ जोन बटे मानसिक सहयोग मिला था, मनोबल बढ़ा था। और देखा जब आपके मनोबल बढ़ा था तो अच्छे अच्छे विचार आपके मन मस्तिष्क में आवत थी और राह चुने में आपकी कठिनाई नहीं।
0: बस बस सबसे बड़ी बात यह है जो हम बार बार कहते रहे कि पहले एक मशीन रखा, थोड़ा सा काम किया, फिर उसके बाद दो चार मशीन का जौन हमका आर्थिक सहायता सरकार से मिली तो दो चार मशीन और खरीद गए। ओके बाद हम जौन ये रेडीमेड कंपनी है ना, हम उनसे संपर्क कर लेते थे, या उससे पहले हम ही करी थी कि और जौन बड़े बड़े टेलर हैं जिनके यहाँ ज़्यादा काम बा, हम उनसे जाके काम ले आई था और हम अपने घरे में वो काम करके उनका पहुँचाई था। ओके बाद अगर और हमें ऊपर भगवान और अपन आत्मविश्वास, अपन कार्य कौशल और भगवान की कृपा, बड़न का आशीर्वाद जब सब मिला तो समझ लो हम बड़ी बड़ी कंपनी से अपन सिलाई कई कई के अपन कपड़ा दे थी, अपन कढ़ाई का आइटम दे थी, तो वो कंपनी हमारे जौन है सामान जब खरीदी तो हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज़ जौन है वो यही है कि हमारा आत्मविश्वास रोज प्रतिरोज प्रतिरोज जौन है वो बढ़ जाए। और हमका देख के बहन, हमका देख के
2: चार
0: लोगन और जौन है प्रेरित हुई है कि जे के जौन हुनर बा, जरूरी नहीं ना कि हम सिलाई करते ही तो सिलाई करी, लेकिन वो कहीं अरे भाई हम टिफिन बनाई ली था, हम स्कूल में चार टीचर के टिफिन पहुँचावा था, हम फलाने जौन है दफ्तर में चार टिफिन पहुँचाई था, कोनो बहनी है जे बड़ी पापड़ मुंगौड़ी अचार बनाई लेती हूँ, कहीं भाई हम तो कुछ आवा था। गृह उद्योग में आप लोग देखते ही हुई, हम लोग खाबा ही करी था सब लोग कि गृह उद्योग के बड़ी है पापड़ है मुंगौड़ी है, तो वह अपन जे के पास जौन हुनर बा वही, जैसे हम बताए ना कि कोनो पेड़ खाली पत्ता देती कि फूल देती कि फलऊ देती, तो जे के पास जौन हुनर सबका उपयोग अलग अलग है।
1: बिल्कुल, तो कहे की मतलब एक जैसे हुनर हमें सिखावत है कि परिस्थिति चाहे जैसन हो,
0: बिल्कुल
1: अगर मन ही मेहनत करत कबो हार नाय मानत बस तो वो सफल जरूर हुए। तो अपने देश के देखा संस्कृति में बहुत सारी चीजें जैसे आप अभी बताएं कि हस्तकला, कढ़ाई, चिकनकारी होएगी, फुलकारी होएगी, तो ये सब देखा कढ़ाई जरी के काम महीन होते हैं, लेकिन कितना बढ़िया करे थे ना ओकर, मतलब अच्छा खासा दाम भी मिलत है जरी वाला काम करे के। तो अगर ये सब करे से तो रोजगार भी बढ़े और अपन जो सांस्कृतिक विरासत
0: सुरक्षित रहे, सुरक्षित
2: और स्थानीय जो गुण है सबके लोगन में, देखा हर स्थान का एक अलग अलग गुण होता है, जैसे कि गर्म इलाकन का एक अलग तरीके से कपड़े का इस्तेमाल, ठंडे में देखा वो लोग कैसे अच्छे अच्छे तरीके से बनाओ थी, तो एक स्थानीय पहचान भी बना था। और जैसे बहनी बताएं कि इनका जोन बटे की हर जगह धीरे धीरे शुरुआत करत करत कितने ऊंचे पे जाती, आजकल देखे वो बहनी कि कई लोग जब मिलके करत थीं तो वहाँ कई आदमी लोग आवत थीं और उनसे सामान ले ले के वो गली मोहल्ले मोहल्ले में फेरी लगा के बनी बड़े अच्छे दाम पे और बहुत अच्छे तरीके से बिक जाता है। अच्छा, जेके हाथे में हुनर नहीं रहते ना, कहा जाता है ना दूसरे की बहुत अच्छा लगता है, तो अगर हमारे अंदर हुनर नहीं ना तो वो चीज़ की हमें जरूरत तो पड़बा ही करे, ऐसा तो बा नहीं कि बिना जरूरत के रह जाए मैं नहीं है ना, तो वो बड़े शौक से खरीदा
1: था। सबका सब कुछ ना आवत, जेकरे सिलाई कढ़ाई ना आवत ओकर कुछ और गुण,
0: वही तो हम बताए ना, वही बताए ना कि जेके पास जौन हुनर बा वही हुनर से ही ना सोचे कि अरे ये तो सिलाई कई ले थी हम तो नहीं कह पाई, तो ए बरे जेके पास जौन गुण बा वही से अपने आप को ऊपर उठावे।
2: बिल्कुल, कहा जाता है ना जहाँ चाह रहा था गंगा वहाँ राह बनिन जाता और जौन बाटे हर व्यक्ति अपने में विशेष होता है ना।
1: बिल्कुल, तो हुनर कबो छोटा ना होता ही नहीं, छोटा खाली हमारे सोचे के तरीका हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो देखा अब इतनी अच्छी परचर्चा भाई, तो कस न एखनी नीक नीक आओ।

0: जानू गंगा
1: हाँ।
0: कि देखा मने इतर आए ना कि हमार बलम जन बाटे पुलिस में बा थाने में बा दरोगा में बा देखा
1: थानेदार है।
0: हाँ, गांव के प्रधानों कम नहीं होते न।
1: बिल्कुल
0: पूरे गांव के नचाए देथिन
1: देखा थे तो एकदम झूम ही गौ एकदम गीत गौनाई से
0: गौ नहीं धमका वाकई में बड़ा अच्छा लगा कि कप्तान करू आप सबई नहीं दिखा सकते जेके जौन बा वही करू आप दिखा
1: वही करू आप दिखा ना? सही बात है तो बनी देखा मौसम ऐसा हो तो
0: हाँ
1: कि कुछ थोड़ा चटपटा खाए जाए।
0: बिल्कुल सही घर में बिल्कुल सही कहूँ बहनी। और हम आज आवत रहे जानत हूँ तो हम जोन बटी रोज रोज खाना में का बनावे एकदम थक जाते मने सवेरे समझा खाना बनावे से ज्यादा सोचे पड़ा था का
1: बनावे
0: तो वही हम जोन बटी रतिया में चना के दाल भिगोए दिए रहे जानू तो हम कहा बेसन का कढ़ी तो हमेशा बना था आज चना के दाल भिगोए है चलत ही उही का कुछ बना ले तो हम सोचा थे कसना अपने बहनी हरन से ही पे चर्चा के लिए जाए है ना चने दाल का कढ़ी है ना। और जानत हूँ गंगा कि बहनी भोजन बनावे के तो मेर मेर के होता कुछ अलग अलग तरीके से बहुत ढेर सारी रहत है तरीका
1: हाँ,
0: है ना
1: हाँ।
0: मुना जरूरी है कि ओका कौने विधि से हम सब अपने जीवन में अपने भोजन में रसोई में ओका सजाए सवार के परोस सकी था।
1: बिल्कुल
0: तो देखा एक के लिए जरूरी है कि चना दाल के रात में भिगो लें खूब अच्छे से चना दाल खूब अच्छे से भीग जाए फिर ओका खूब पीस लें।
1: अच्छा
0: हाँ, और बहुत लोग मिस्सी में पीसा थीन और
1: हाँ,
0: कुछ लोग
1: सिल
0: सिलबट्टा पे
1: पीसा
0: थीन जेके जैसे सुविधा मिल सके। हाँ, ओके बाद जोन बटे बहनी चना दाल के हिसाब से एक कप दही ले लें है ना हल्की खट्टी ले नहीं ज्यादा खट्टा हो जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता
1: हाँ, हाँ,
0: और उही में दुई बड़े चम्मच से यह जो दलिया पीसे रह बहनी उही का खूब फेट ला आपस में
1: अच्छा
0: जानू
1: हाँ, हाँ,
0: खूब फेट ला और चार पांच कप पानी कैल है
1: हाँ,
0: ना
1: हाँ, हाँ,
0: उही में जोन बटे हल्दी मिलाई ला और नमक स्वाद के अनुसार मिलाई ला और यार कढ़ैया में जोन बटे चढ़ावा जब कढ़ैया तो मन तेल से बनावे बहनी हरे तेल या घी बहुत से लोग रिफाइंड से वैसे तेल से मने ज्यादातर बनाओ था उही में थोड़ा सा जीरा डाल दें हाँ थोड़ा मेथी का दाना डाल दें और थोड़ा सा हम तो कही था कि सूखा लाल मिर्च भी डाल दें और हींग डाल के करी पत्ता डाल के ओका थोड़ा सा तड़का लगा के हाँ और उमन भीगी हुई जो दाल पीसे रहूगा वही दही बेसन के साथ फेट के नमक उमक मिलाई के ऊ घोल के कढ़ाई में डाल दें।
1: अच्छा।
0: लेकिन हमन सबसे ज्यादा विशेष तौर पे ही ध्यान दे पड़त बहनी तुरंत एक चलावत रहे धीमी धीमी आँच में नहीं तो नीचे हाँ पकड़ ले था का वो एक तरह से जमे नहीं लगते जैसे हम लोग कभी कदा रसाज बनाई थी तो जमा के नहीं बनाई वैसे हो लगा था हाँ और उबलत रहे खूब बढ़िया उबलती हुई चने की दाल जो बटे 20-25 मिनट तक खूब बढ़िया उबल जाए। अच्छा अगर पकौड़ी भी डाला चाहे कुछ बहनी हरे तो ओकर अलग से पकौड़ी डाल करके तल करके पकौड़ी भी जब खूब खौले लगे तब ओकर डालें और ओके साथे साथे जब बढ़िया से कढ़ी आपका खौल आवत भय कम से कम 5-10 मिनट पक जात है तब ओहमन खूब अच्छे से एक तरीके से कलछुल में राई दाना नहीं होते जो छोटा वाला छोटा वाला राई हाँ छोटा वाला राई है और अगर पुनः चाहें तो ही में करी पत्ता डाल दीन धनिया डाल दीन है ना ऐसे ओका तड़का लगा दीन जानू तो और यह तरीके से कढ़ी तैयार हो गई बहनी हरेन का आप बढ़िया स्वाद के अनुसार खाएं वैसे
1: देखा तू बतावा तो हमरे मुँह में आएगे पानी
0: तो चला भाई जब पन घटे
1: तो
0: से हम लोग घरे
1: चल के चाहत रहा अब हम घरे जाए तो बनाई
0: बहे लगत ऐसे चला चले लगू तो अपने घरे जाए से पहले हमरे घरे होत
1: खाए के तब जाओ
0: हाँ,
1: तो चला इतनी बढ़िया कढ़ी तू हमें बताऊ तो अब बढ़िया से हम तो एक ठो गीत सुनाई दी तीसरी मिलन फिल्म से आशा भोसले जी की आवाज में चला सुना जाए
0: चला ठीक बाटे सुना।

0: गंगा।
1: हाँ बहनी,
0: देखो पान खाए और सांवली सूरत में होठ लाल लाल तो सुंदरता तो बढ़ाई देत है।
1: बढ़ाई देत है। देखा तीसरी कसम फिल्म के कितना बढ़िया गाना रहा है।
0: बिल्कुल वही तो हम कहे थे तोहार सुनावा गाना तो बहुत ही निक रहा। मुन्ना चल अब एक संदेश भी सुन लीन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल चला सुना जाए। बहनी अरन भी सुने।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल

0: संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है
2: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो सखियन देर कोनी बात के तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
3: बेसब्री से इंतजार रही।
4: हमारे तो हस्बैंड उठबे ना करे, करो अकेले।
1: तो दिखा संदेश बहनी हरन सुन ली, तो दिखा बहनी पनघटे पे आए एक बाद जाए की तो बिल्कुल मन ना है,
4: बिल्कुल है ना? पनघटे पर हम लोग आए थे बहनी, इतनी इतनी बात लेके आई थे कि हाँ। एक बात पे दूसर बात निकलत रहा था,
1: दूसर बात
4: मिनट बंद ना ही रहते।
1: वही तो अब ही के हम सोचे हम बहनी हरन से बोला था ही।
4: हाँ। और देखा अब चले की बेला हो गए, तो बहनी हरन से विदा लीन जाए।
1: राम राम बहनी हरन।

0: Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Two-time Olympic medalist PV Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yue of China in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. PV Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16-21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open badminton tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: BIMSTEC's long-standing goals,
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में BIMSTEC के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए BIMSTEC पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
2: There is an urgent need for us.
3: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
2: 22% of the world population.
1: श्री डोभाल ने कहा कि

0: सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
1: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं।
2: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
3: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की

0: सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जिंद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ

0: कारोबार कर रहे थे। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6वीं कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियों को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 में और ये समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो आइए सुनते हैं

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
3: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
3: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
3: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
3: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
3: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिख

0: पूछते कैसे थे?
1: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा।
1: जी, वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है।
1: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था, तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था।
0: जी, श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
1: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओं, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
1: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था, लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार।
0: जी।
1: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है।
1: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
1: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी।
0: जी।
1: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी।
1: जी।
0: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
1: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
1: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था, जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
0: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी।
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी।
4: यानी

0: जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है
1: जी।
0: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड
1: जी।
0: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
1: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी
2: जी।
1: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है
2: जी। डॉक्टर देवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है
1: जी।
2: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या हैं? यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम

0: पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
1: जी।
0: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
1: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
0: जी,
1: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या हैं? यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
1: जी।
0: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
1: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
0: जी
2: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
1: जी।
2: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
0: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
1: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
0: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
0: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
0: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी,
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए लेकिन बहुत कम।
1: जी,
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर

0: मेटल कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
2: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
0: बिल्कुल।
2: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
2: जी।
0: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल। तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
0: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
2: जी
1: बिल्कुल।
2: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी।
2: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
2: जी।
0: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
2: जी।
1: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं, वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने से किताबें निकालो, चलो चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी,
1: तुम्हें भी
2: जी,
1: कह रहा हूँ। चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: जी।
1: हाँ?
0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।

0: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
1: गुरुजी,
2: हाँ बोलो।
1: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
2: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
0: जी,
2: चलो
0: जी,
2: ठीक से बैठो, इससे पीछे हो जाओ।
3: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
4: एकम पांच, पांच दूनी दस।
5: नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
6: अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं। ठीक
0: जी।
6: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
7: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
6: हाँ।
7: एक तालाब भी है।
6: अच्छा
0: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
6: शाबाश, बिल्कुल ठीक
1: मास्टर जी। वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
6: हाँ ये भी ठीक है।
8: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
6: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
0: मास्टर जी,
6: हाँ हाँ बोलो।
0: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
6: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं। ठीक
0: जी मास्टर जी।
6: लिखो फिर, सब लिखो।
3: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
9: दीदी बोलो मालती।
10: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
10: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
10: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
9: हाँ फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
10: जी।
9: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
10: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
9: हाँ।
3: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
11: नमस्ते दीदी।
12: नमस्ते
11: दीदी।
13: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते
9: दीदी। ये
13: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
8: दीदी ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
13: अच्छा
8: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
13: सच? प्रवीण इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
9: गुलाब।
13: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन

0: से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
1: दीदी जी मैं बताऊंगी।
0: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
2: गुलाब,
0: गेंदा,
2: चमेली और चमेली,
0: चमेली,
2: सूरजमुखी,
0: सूरजमुखी। शाबाश।
3: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ तेंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
0: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
3: जी जी।
0: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
3: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
0: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
3: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
3: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
3: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
3: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
3: अच्छा।
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
3: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं, इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
3: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
3: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारी स्टूडियो घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं और संपन्न होती है हमारी ये सभा। शाम की सभा 4 बजे शुरू होगी संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इस बीच हमारे बीच भारतीय के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सायंकालीन सभा। सभा की शुरुआत हम कर रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम से, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

नंदन वंदन अभिनंदन नमस्कार सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे

0: सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर्स से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति, अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम। जय हिंद
0: मैम। जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपनी बल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से रामपुर भांगड़ से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान हैं, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई दो बहनें हैं और मेरी पत्नी, दो बच्चे।
0: वाह क्या बात है, सच में आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल है। पर यही कहूँगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म हैं वो सर्वोपरि हैं और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूँगा, मेरे गाँव में पुराने समय से ही काफ़ी फौजी हैं, छोटा सा गांव है पर फौज में काफ़ी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं, पांचों में से चार जो है अपने जो है फौज में हैं।
0: वाह क्या बात है। तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम बिल्कुल। ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो है ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से, उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूँ और देश की सेवा करो।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
1: जी मैम। मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती हैं, काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है, हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
0: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियाँ सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, कैसा होता था आपके साथ?
1: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियाँ सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और

0: किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
1: वाह क्या बात है, तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
0: जी मैम, मेरी उम्र जो है मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था फिजिकल, मेरे पहले से ही टफ था मैम, मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
1: जी, तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए।
0: जी मैम।
1: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
0: मैम मैं जैसे किससे कहानी सुनता था, तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है, तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पर जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
1: वाह क्या बात है, तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आप के ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आपके
0: जी,
1: बाबा
0: जी,
1: सब फौज में रहे, लेकिन
0: जी,
1: आप चार भाई बहन, इनमें से कोई फौज में नहीं
0: जी,
1: था। पिताजी खुद जो है उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है, वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे
0: जी,
1: जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
0: जी
1: तो वो वहाँ मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए देश के प्रति।
0: जी
1: तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहाँ अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
0: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से 2 या 3, किसी के 2 लड़के हैं, 2 भी भर्ती उसी में सेना में, 3 है 3 भी, सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गाँव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं कह ऐसा कभी नहीं होगा,
1: वाह क्या
0: मेरे को
1: बात
0: देश
1: है,
0: से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊँगा।
1: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, से खास बात यही है, जिस तरह से बेटियों को जब ब्याह जाता है कहा जाता है कि जो जहाँ तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
0: जी
1: वापस लौट कर मत आना,
0: जी
1: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी या तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
0: मैडम, मेरी जॉइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का जॉइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीना तोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
1: वाह क्या बात है, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो जो 20 सालों का जो समय रहा है जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको?
0: मैम बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर बहुत यादें जुड़ी रहती हैं, और काफ़ी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूँगा, मेरी यादें काफ़ी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
1: वाह क्या बात है, निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की सोच सिर्फ देश प्रेम है ना?
0: जी मैम,
1: और हमेशा जहन में ये चलता रहता हूँ कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे, इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
1: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा, हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने, कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियाँ आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का ज़रूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है। क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी, और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियाँ, जिससे जुड़ी हुई कहानियाँ आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम।
0: जी, आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सहस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे, और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन बीरपुर बिहार में हुई। उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डी जी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनर्जी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनर्जी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया। 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
0: क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसे कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे, और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये साथ साथ आप करते रहे, और कितना समय निकाल पाते

0: मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया। कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया तो मैंने अपनी SSB में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफ़र यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे ज़रूर जो आपके साथी होंगे, और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली, और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
0: हाँ मैम, काफ़ी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफ़ी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं। बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते। और बोलते हैं कि और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
1: वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, वो लोग जो सीमा में, यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले, वो साथी,
0: जी
1: वो भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे। कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज जो खुद सेनाओं में हैं, कुछ खुद फौज में हैं, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, और क्या सा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते

0: बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया। स्टॉप वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
1: सुखद रहा है मतलब।
0: जी जी
1: अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे।
0: जी मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था, तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान, तो उनसे मैं कोचिंग लेता था। तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था, तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था, इस प्रकार से करना है, डंडे ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
1: वाह, तो जो आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर, तो कैसा महसूस होता था? और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी, और आपकी नियुक्ति कब हुई?
0: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई थी
1: जी,
0: मैम
1: ये तो आपने मुझे बताया।
0: जी,
1: तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
0: उनके बाद में हुई मैम मेरी,
1: अच्छा,
0: सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम। और जो है मैंने काफ़ी और ज़्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए, जिनको मैं
1: सिखाता था।
0: सिखाता था वो लग गए, तो मेरे को और भी ज़्यादा लगन हुई मैम, मैंने और ज़्यादा कड़ी मेहनत करी, और फिर जो है अपनी SSB बल में भर्ती
1: तो
0: हुआ
1: आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई,
0: जी।
1: यानी कि मास्टर जी।
0: नहीं मैं
1: हाँ
0: नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता,
1: हाँ
0: जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है,
0: जी मैम
1: अपने आप से लड़ना सिखाता है। और कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वहीं हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है। तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कांस्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ये ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम, सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहाँ दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफ़र बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां इनके जहन में ज़रूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ जानना चाहती हूँ। 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था, क्या हुआ था जिसके बाद आप कि चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं आपको मैम बताना चाहूँगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35BN में। एक मैम हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, आईपीएस संजय सर ने, और हमारे बल ने एसएसबी ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब हैं, डीजी साहब ने जो है अपनी एसएसबी को जो कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का। और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पर थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो है 4-5 जो ज़िले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियां होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे आईपीएस आईजी संजय सर, और डीआईजी सुमित जोशी सर थे मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट,

0: और ललित साहब, डीसी डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया कराया जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई। हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैं।
1: जी अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था उस वक्त? कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ? कैसा कैसा लगा आपको?
0: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो आईजी जो आईपीएस आईजी संजय सर थे वो, और अपने जो है डीआईजी सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर, टू आईसी नरपत सर, डीसी, ये सभी आते थे और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ। उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का CHM बना दिया जाए।
1: वाह,
0: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं CHM था, एक नंबर टीम का CHM वो था।
1: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ? किसी के साथ साझा किया था उस वक्त?
0: नहीं मैम, ये साझा तो
1: नहीं
0: ऐसी
1: किया
0: चीज़ें नहीं
1: जाता उस
0: किया
1: वक्त,
0: जाता,
1: ऑपरेशंस के दौरान नहीं किया
0: मगर जो
1: जाता।
0: है टीम जो है एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
1: मुश्किल
0: है।
1: होता है।
0: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो। एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं, भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर। जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
1: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम
0: तो
1: करते हैं।
0: जी, जिसमें कि मैम जो है आईजी जो संजय सर और डीआईजी सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं, वो कोई भी हो अपना। 7-7 दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि
1: जी
0: अंदरूनी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: अंदरूनी बातें हैं।
0: जी
1: और जब हम कहते हैं, जब आपकी फोर्स की बात होती है, तो बहुत सारे
0: जी
1: ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको
0: जी
1: हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि
0: जी
1: आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी माओवेस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मेरा चयन किया गया, हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?
0: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को

0: जितने भी मेडल लगे, जितनी डीजीटीस मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जुम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
1: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं,
0: जी
1: गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे,
0: जी मैम,
1: आतुर हो रहे होंगे जानने के लिए, वो और कौन से सम्मान हैं
0: जी मैम,
1: जिनसे नवाजा गया आपको।
0: जी मैम, मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है। डीजी साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर डीजी डिश मिली है, गोल्डन डीजी डिश 1 स्टार, गोल्डन डीजी डिश 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमांडेंट सर ने, काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया मैम।
1: वाह, क्या
0: जी
1: बात है! और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए
0: जी
1: हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति,
0: जी मैम,
1: उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है, और
0: जी
1: ये
0: जी
1: सच्चे देश प्रेम की गाथा है। शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सशस्त्र सीमा बल में रह कर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
0: जी
1: है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: मैम,
1: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
0: जी।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात ज़रूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है, अपने अपने कार्यों को कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे, बताते होंगे तो ज़रूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन्स रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए कहते हैं ना कि मजबूत एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग थी जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSV में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NSG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NSG के अंदर, वो भी किया है। वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो है PTI इंस्ट्रक्टर था NSG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज़ जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही जब तक उम्र है आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रहे हैं और 20 सालों का सफ़र यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा, निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में अपने परिवार सबसे पहले कि सहस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभाकर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम ऐसा है कि जो परिवार और देश कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को

0: देता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है। वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप, तो उनसे क्या कहा आपने, क्योंकि आप फौज में और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं। कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया, कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया।
0: मेरे को मैम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफ़ी डिफेंस में, उनको पहले से पता था। पर फिर भी जो है एक रहती है, तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक।
1: अच्छा ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली। अब बच्चों पर, जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियाँ सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
0: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है, वो NDA की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
1: वाह क्या बात है। और हम यही कहेंगे जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं उनको देखकर वो ज़रूर प्रेरणा प्राप्त करें,
0: बिल्कुल मैम,
1: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं। और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
0: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे FM रेनबो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो,
1: जी
0: तो
1: शुक्रिया।
0: ये जो जहाँ भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
1: बिल्कुल, कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है। इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। संदेश हमारे पास आए हैं, यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भागिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहीं, और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं जय हिंद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित कर रहे हैं। FM रेनबो को हार्दिक बधाइयाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें। और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल भवानी का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम ज़रूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो DP है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में, सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना
1: जी
0: कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है,
1: जी
0: और मैं यही कहना चाहूँगा सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से, निष्ठा से,

0: कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं।
1: जी, एक और संदेश हमारे पास आया है सीटी दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें। और आज मैं बहुत उत्साहित हूं, प्रसन्न हूं संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से। हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गारंट्री से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना। और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज़्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो आपसे और भी बहुत सारी बातें हों करने की, कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और ख़ास तौर पर ये नगमा भागिंदर जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागिंदर सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM रेनबो के स्टूडियोज़ में आने के लिए।
0: थैंक यू मैम।
1: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। GD राजेंद्र सिंह जी, 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए ये आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भागिंदर सिंह जी।
0: थैंक यू मैम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं मैं हूं ना फिल्म का गाना, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीत जावेद अख्तर का है और संगीत है अनु मलिक का।

चलते चलते, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार जतिन ललित।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं पद्मावत फिल्म का गाना, जिसे गाया है पलक मुच्छल ने। गीत है सिद्धार्थ का और संगीत है संजय लीला भंसाली का।

0: पद्मावत फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

100.3 FM by the studio clock, शाम के बज चुके हैं 5:15 and you have tuned your favorite radio and youth program Yuvani with me, यानी आपकी RJ साक्षी. Today we will talk on various interesting topics with musical break, but आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है. दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं क्या रोज़ एक्सरसाइज करना सच में ज़रूरी है, अगर वीकेंड पे कर लें तो नहीं चलेगा. तो आज मैं आपको इसका जवाब केवल बातों से नहीं बल्कि ऑथेंटिक साइंटिफिक डेटा और फैक्ट्स के साथ दूंगी. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में हर 4 में से एक अडल्ट उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता जितनी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है. जी हाँ, और इस फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से दिल की बीमारियाँ, Type 2 डायबिटीज़ और कई तरह के कैंसर का खतरा 20% से 30% तक बढ़ जाता है. तो सवाल ये है कि हमारे शरीर को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए. दोस्तों, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की एक मशहूर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर अडल्ट को हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी करनी चाहिए. अगर आप इसे रोज़ाना के हिसाब से डिवाइड करें तो ये सिर्फ 21 मिनट्स अ डे बनता है, यानी दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 21 मिनट. तो क्या हम अपनी सेहत के लिए इतना समय भी नहीं निकाल सकते? तो हमें ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. और अगर हम बात करें कुछ प्रमुख व्यायाम की, तो वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. जैसे पहला आता है कार्डियो व्यायाम. ये दिल और सांस के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इसमें एग्जांपल्स हैं दौड़ना, तेज चलना, साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैरना और बैडमिंटन जैसे गेम खेलना. अब आता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं. तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि दिल मजबूत होता है और जो ब्लड का संचार होता है वो बढ़ता है, फैट कम होता है और वज़न घटाने में मदद मिलती है. साथ ही सांस और हमारे स्टैमिना बढ़ता है, तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है. अब ये होता है कि हम बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे अलग अलग टाइप के, तो हम इस एक्सरसाइज को कितना करें? तो आप ये हफ्ते में 4 से 5 दिन कर सकते हैं, बट आपको पूरे 30 मिनट्स देने चाहिए इसके लिए. दूसरा टाइप है हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अब इसमें आता है कि ये मांसपेशी और हड्डियों के लिए होता है और इसमें एग्जाम्पल्स हैं पुशअप करना, स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक, डंबल, बॉडी वेट एक्सरसाइज एक्सेट्रा. इसके फ़ायदे हैं, इससे मसल बनती है, शरीर टोन्ड होता है.

होता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है। आप बैठे बैठे भी कैलोरी बर्न, पीठ दर्द और पोस्चर सुधारता है। अब बात आती है कि इसको कितना करें, तो आप 30-40 मिनट्स कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी वाले जो एक्सरसाइज होते हैं, और ये हमारे जो जोड़े होते हैं, जो जोड़ों में दर्द होता है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल योगा, स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार, ऐसे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और मांसपेशियों का तनाव कम होगा। और हमारा जो फोर्थ है वो है बैलेंस्ड व्यायाम। इसको आप फोकस बनाने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैर पर खड़े होना, ट्री पोज, और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। ये बैलेंस बनाने में और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल करता है। और आपका, और साथ में हम बता दें कि अगर आप इसको करने की बात करें, आप ये सारे जो अलग अलग टाइप के जो एक्सरसाइजेस हैं, अगर आपको शुरुआत में दिक्कत हो रही है, उसको कंटिन्यूटी बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप रोज़ 20 मिनट दीजिए स्टार्टिंग के, 10 मिनट तेज चलना, 5 मिनट स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस और 5 मिनट स्ट्रेचिंग। तो दोस्तों, मैंने आपको जो इतनी सारी बातें बताई हैं, ये तो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हमें भी काम करना चाहिए, हमें और भी काम करना चाहिए। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ, क्यों ना हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें।

वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइजेस हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि हेल्दी रहने के लिए आपको ऐसा लगता होगा कि हमें जिम जाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप घर पे भी एक्सरसाइज करें और कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करें तो उतना आपके लिए काफ़ी होगा। जब आप रेगुलर व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम फील गुड हॉर्मोन्स भी कहते हैं। हार्वर्ड TH कैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी बताती है कि रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट दौड़ने या 1 घंटा वॉक करने से मेजर डिप्रेशन का खतरा 26% तक कम हो जाता है। इसका मतलब है कि व्यायाम सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ और मूड को बूस्ट करने के लिए भी मैजिक पिल के की तरह काम करता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिसर्च के अकॉर्डिंग नियमित कार्डियो एक्सरसाइज करने से आपके दिल की कार्य क्षमता बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होता है। और कई लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आपको फिट रहने के लिए किसी महंगे जिम की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर या आसपास किसी पार्क में ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा और फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ज़रूरी यह नहीं है कि आप कहाँ कर रहे हैं एक्सरसाइजेस, ज़रूरी यह है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि अगर लोग रोज़ाना सिर्फ 5 से 10 मिनट भी हल्की रनिंग करते हैं, उनमें दिल की बीमारियाँ होने से जो मौत होती है उन लोगों की तुलना में 45% तक कम हो जाता है जो बिल्कुल रनिंग नहीं करते हैं। और दोस्तों सोचिए, सिर्फ 5 से 10 मिनट की दौड़ आपकी ज़िंदगी से के कई साल बढ़ा सकती है। तो आज का टेकअवे मैसेज यही है कि अपनी बिजी लाइफ से सिर्फ 20 से 30 मिनट निकालिए और अपने शरीर को मूव कीजिए। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। और दोस्तों आप हमारे प्रोग्राम में भी ऐसे बने रहिए, क्योंकि हमारे पास आपके लिए और भी खास सेगमेंट्स हैं। लेकिन उन पर आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक और प्यारा सा गीत हो जाए।

दोस्तों, अब मेरे पास है आपके लिए एक बेहद खास सेगमेंट, यानी आज हम सुनने वाले हैं एक फीचर, और फीचर का टॉपिक है लोक की सरसरिता तीजन बाई। और आप ये फीचर सुनेंगे दिव्या द्विवेदी और अंजलि श्रीवास्तव की आवाज़ में।

0: लोकगीत किसी सभ्यता के इतिहास नहीं लिखते, वो उस इतिहास को जीवित रखते हैं। वो पीढ़ियों की स्मृतियों को शब्द नहीं, स्वर देते हैं। और जब कोई साधक उन स्वरों को अपना जीवन बना लेता है, तब वो स्वयं लोक कथा बन जाता है।
1: भारत की आत्मा यदि कहीं सबसे सहज, सबसे निर्मल और सबसे स्वाभाविक रूप में दिखाई देती है, तो वो उसके लोक जीवन में दिखाई देती है। मिट्टी से उठती सौंधी गंध, खेतों में गूंजते गीत, चौपालों पर सुनाई देती कथाएं, त्योहारों की सामूहिक उल्लास ध्वनि और पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी पुस्तक के स्मृति में सुरक्षित लोक परंपराएं, यही भारत की सांस्कृतिक चेतना का वास्तविक आधार है। यहाँ इतिहास केवल ग्रंथों में नहीं मिलता, वो लोगों के कंठ में बसता है। यहाँ महाकाव्य केवल पढ़े नहीं जाते, वो गाए जाते हैं। और जब वो गाए जाते हैं, तब उनमें समय की धड़कन भी शामिल हो जाती है।
0: भारतीय लोक परंपरा में यदि किसी एक कला ने महाभारत जैसे विराट महाकाव्य को जन जन तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है, तो वो है पंडवानी। ये केवल कथा वाचन नहीं, केवल गायन नहीं और केवल अभिनय भी नहीं, ये उन तीनों का एक ऐसा विलक्षण संगम है जिसमें शब्द दृश्य बन जाते हैं और स्वर चरित्र में बदल जाते हैं। पंडवानी में भीम केवल वर्णित नहीं होते, वे मंच पर खड़े दिखाई देने लगते हैं। द्रौपदी का अपमान केवल सुनाई नहीं देता, वो श्रोताओं के भीतर पीड़ा बनकर उतर जाता है। और श्री कृष्ण का उपदेश केवल संवाद नहीं रह जाता, वो जीवन दर्शन बन जाता है।
1: छत्तीसगढ़ की लाल माटी में सदियों से बहती इस परंपरा को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर स्थापित करने वाली एक साधिका का नाम है तीजनबाई। 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में जन्मी तीजनबाई किसी संपन्न परिवार में नहीं पली। उनका बचपन अभावों की धूप में बीता, किंतु उसी धूप ने उनके भीतर अद्भुत धैर्य को भी जन्म दिया। घर में धन नहीं था, पर लोक कथाओं का अथाह वैभव था। खेतों की मेड़ों पर चलते हुए, पशुओं को चराते हुए, गांव की चौपालों में बैठते हुए उन्होंने अपने नाना ब्रिजलाल पारधी से महाभारत की कथाएं सुनी। वही कथाएं उनके भीतर धीरे धीरे स्वर बनने लगी।
2: जब हम लोग बढ़ गए, पर भी मेरे नाना को देखकर मैंने घबराती थी और उनके सामने में नहीं आती थी। मेरे नाना की आवाज, उनकी तमूरा की झनकार, ये सुनकर मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई और मैं अपने नाना के पास में छुप के सुनती थी। क्यों छुप के सुनती थी? कि उसको देखकर मुझे खूब डर लगते थे, तो वो मेरे को बुलाते भी नहीं, ना मैं उसके पास आती भी नहीं, छुप के देखती थी। एक दिन अचानक मेरे नाना ने मेरे को देख पाए तो उन्हें पूछने लगा कि कितने समय से यहाँ खड़ी हो। तो मैं उससे बोलने लगी कि मैं आज कम से कम एक हफ्ता हो गई हूँ ऐसे छुप के सुनती हूँ। तो बोले कहानी कितने दूर तक के हाथ तक पहुँची है? तो मैं बोले कि कल से कहानी गुरु द्रोणा पर्वत चालू हुई है, जब से मैंने सुनी, पूरी संबंधित महाभारत से थी। तो मेरे नाना जी भी बैठ के गाते थे। इस महाभारत को मैं अपने ढंग से ढालकर आज तबला, पेटी, ढोलक, बेंजो, नाना जी एक तारा और हाथ में करताल लेके गाते थे, आज मैं उसको तीन तार की बना के तीनों तार से आवाज निकाल के थी। पुरुष वर्ग तो झाड़ू राम देवांगन है, पुना राम निषाद है, इन लोग सब वेदमती शैली के गायक है और मैं शुरू से अब अभी तक मत कपालिक शैली के गायक। तो कपालिक इसलिए माना जाता है कि कल्पना करके बताती हूँ कि द्रौपदी किस तरीका जाती है, तरीका मैंने चल के बताती हूँ।
0: किसी ने उन्हें संगीत विद्यालय नहीं भेजा, किसी ने उन्हें मंचीय अभिनय का प्रशिक्षण नहीं दिया। उनके गुरु थे लोक जीवन, स्मृति और निरंतर अभ्यास। वे सुनती, याद करती और फिर अकेले में उन्हीं पात्रों को जीने लगती। कभी पेड़ों की सूखी टहनी उनके लिए भीम की गदा बन जाती, कभी बांस का डंडा अर्जुन का गांडीव बन जाता। गांव के खुले आकाश के नीचे खेलते खेलते एक बालिका अनजाने में ही भारत की सब

0: सबसे बड़ी लोक कलाओं में से एक की साधना कर रही थी, परंतु हर महान यात्रा की तरह ये मार्ग भी सरल नहीं था।
1: उस समय समाज का मानना था कि पंडवानी पुरुषों की कला है, स्त्रियां यदि गाएं भी तो सीमित दायरे में, बिना अभिनय के, संकोच के साथ। किंतु तीजन बाई ने परंपरा का सम्मान करते हुए भी उसकी सीमाओं को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कथा को केवल गाया नहीं, उसे जीना शुरू किया। मंच पर खड़े होकर पात्रों का अभिनय किया, उनके भावों को स्वर दिया और उनके संघर्षों को अपने भीतर उतार लिया।
0: समाज ने इसका विरोध किया, आलोचनाएं हुई, ताने दिए गए, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जो कलाकार अपनी साधना से प्रेम करता है, उसके लिए विरोध भी रियाज का हिस्सा बन जाता है। तीजन बाई झुकी नहीं, उन्होंने अपने स्वर को और अधिक दृढ़ बनाया।
1: धीरे धीरे गांव की चौपालें उनकी पहली रंगभूमि बनी। मिट्टी का खुला आंगन, चारों ओर बैठे ग्रामीण, बीच में एक दीपक की

0: लेकिन जो कलाकार अपनी साधना से प्रेम करता है उसके लिए विरोध भी रियाज का हिस्सा बन जाता है। तेजन बाई झुकी नहीं, उन्होंने अपने स्वर को और अधिक दृढ़ बनाया।
1: धीरे धीरे गांव की चौपालें उनकी पहली रंगभूमि बनी। मिट्टी का खुला आंगन, चारों ओर बैठे ग्रामीण, बीच में एक दीपक की लौ और हाथ में तंबूरा लिए खड़ी एक युवा कलाकार। जैसे ही उनका स्वर उठता पूरा वातावरण बदल जाता। ऐसा लगता जैसे महाभारत किसी पुस्तक के पन्नों से निकलकर उसी चौपाल में उतर आई हूँ। वो केवल कथा नहीं कहती थी, वो कथा बन जाती थी।
0: गांव की चौपाल पर शुरू हुई वो साधना अब धीरे धीरे लोकमानस की पहचान बनने लगी। जो लोग कभी कहते थे कि ये कला स्त्रियों के लिए नहीं है, वही लोग अब देर रात तक बैठकर तीजन बाई की पंडवानी सुनने लगे। उनके स्वर में केवल संगीत नहीं था, उसमें कथा की गति थी, अभिनय की शक्ति थी और लोक जीवन की सहजता थी। वे महाभारत सुनाती और उसे जीती थी।
1: पंडवानी की कापालिक शैली को उन्होंने जिस ऊंचाई तक पहुंचाया वह अपने आप में अद्वितीय है। मंच पर ना कोई विशाल सज्जा, ना प्रकाश का चमत्कार, ना दृश्य परिवर्तन, केवल एक कलाकार, एक तंबूरा और अनगिनत पात्र। क्षण भर पहले वही तंबूरा भीम की गदा बन जाता, अगले ही पल अर्जुन का गांडीव और फिर दुर्योधन का राजदंड। तीजन बाई के हाथ बदलते नहीं थे, लेकिन दर्शकों की आंखों के सामने पूरा दृश्य बदल जाता था। यही लोक कला की सबसे बड़ी शक्ति है। जहां साधन सीमित होते हैं वहां कल्पना असीम हो जाती है।
0: जब वे भीम का संवाद बोलती तो लगता मानो धरती कांप रही हो। अर्जुन का प्रसंग आता तो स्वर में संयम और साधना उतर आती। द्रौपदी की वेदना का वर्णन करते समय उनकी आंखों की नमी शब्दों से अधिक बोलती थी। श्री कृष्ण के प्रसंग में वही स्वर करुणा, नीति और धैर्य का रूप ले लेते। उनके भीतर एक साथ न जाने कितने पात्र सांस लेते थे। यही कारण था कि दर्शक केवल सुनते नहीं थे, वो महाभारत को अपने सामने घटित होते हुए अनुभव करते थे।
1: धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की सीमाएं छोटी पड़ने लगी। तीजन बाई के स्वर ने राज्य की सीमाएं पार करी और राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच गई। जहां भी उन्होंने प्रस्तुति दी वहां लोगों ने केवल एक लोक गायिका को नहीं देखा, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी मौखिक परंपरा को सजीव रूप में देखा।
0: उनकी कला की गूंज देश की राजधानी तक पहुंची। बड़े सांस्कृतिक समारोहों में उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा। उनकी प्रस्तुतियों ने यह सिद्ध कर दिया कि लोक कला किसी क्षेत्र विशेष की धरोहर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक पूंजी है। धीरे धीरे विश्व के अनेक देशों के मंच भी उनके स्वागत के लिए तैयार हो गए। फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अनेक देशों के दर्शकों ने जब पहली बार तीजन बाई की पंडवानी सुनी तो वे भाषा नहीं समझते थे, पर भाव समझ जाते थे। उन्हें शब्दों का अर्थ नहीं मालूम था, किंतु उनके स्वर में बहता हुआ भारत स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाई देता था।
1: यही किसी लोक कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जब उसकी भाषा सीमित रह जाती है पर उसकी कला समूची मानवता की भाषा बन जाती है।
2: वो देखिए, मेरे याद करने से थोड़ी न होता है, याद कराने वाले तो ऊपर वाला है। कहते ना, बिखराने के लिए दे है मालिक ने बस उतना बात। हम कुछ नहीं जानते, हम बिल्कुल नील है पढ़ाई मामला में। पद्मश्री जब मिला ना तो हमें पद्मश्री तीजन बाई कहते तो चिढ़ जाती थी मैं। तीजन बाई मेरा नाम है क्या? पद्मश्री, पद्मश्री कहते हो। इलाहाबाद के लोग को बहुत धमकाती थी, सब बच्चे को सब बधाई देने आते थे ना, तब हम चिढ़ जाते थे। तीजन बाई को बधाई हो कहो तो मेरे लिए इतना पहले था, वैसा नहीं है अब तो। पहले झोंक झोंक के आदत से पड़ गई, पद्मश्री, पद्म भूषण, अभी विभूषण, और खुशी के मारे नींद नहीं लगती, खाना नहीं आता।

0: समय के साथ सम्मान भी उनके द्वार तक आने लगे। पद्मश्री ने उनकी साधना को राष्ट्रीय पहचान दी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ने लोक नाट्य और लोक गायन के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित किया। पद्म भूषण ने उनकी कला के विराट स्वरूप को स्वीकार किया और अंततः पद्म विभूषण से अलंकृत होकर तीजन बाई भारतीय लोक संस्कृति के उन अमर विभूतियों में शामिल हो गईं, जिनका जीवन स्वयं एक सांस्कृतिक विरासत है।
1: किंतु पुरस्कार किसी कलाकार की अंतिम मंजिल नहीं होते। तीजन बाई की वास्तविक उपलब्धि ये रही कि उन्होंने पंडवानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। उन्होंने अनेक शिष्यों को तैयार किया। उन्हें केवल गायन नहीं सिखाया, बल्कि ये भी बताया कि लोक कला केवल कला नहीं होती। वो अपने समाज की स्मृति, अपनी भाषा की गरिमा और अपनी संस्कृति की आत्मा होती है। यदि लोक कला जीवित रहती है तो आने वाली पीढ़ियाँ अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं।
0: आज जब संसार तीव्र गति से बदल रहा है, तकनीक मनुष्य के जीवन का केंद्र बनती जा रही है और मनोरंजन के साधन क्षण प्रतिक्षण बदल रहे हैं, ऐसे समय में तीजन बाई का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि लोक कला कभी पुरानी नहीं होती। जब तक मनुष्य अपनी मिट्टी से प्रेम करता रहेगा, जब तक उसे अपनी भाषा से लगाव रहेगा, जब तक वो अपनी जड़ों को याद रखेगा, तब तक पंडवानी जैसी परंपराएं जीवित रहेंगी।
1: पांच जुलाई 2026 तीजन बाई का देहावसान भारतीय लोक कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति बनकर आया। उनके निधन के साथ एक स्वर मौन अवश्य हुआ, किंतु वो परंपरा मौन नहीं हुई जिसे उन्होंने अपने जीवन की तपस्या से नई ऊर्जा प्रदान की थी। उनकी आवाज आज भी पंडवानी के प्रत्येक सुर में, महाभारत की प्रत्येक कथा में और छत्तीसगढ़ की मिट्टी की प्रत्येक गंध में अनुभव की जा सकती है।
0: आज जब किसी मंच पर पंडवानी का गायन आरंभ होता है, जब कोई युवा कलाकार हाथ में तंबूरा लेकर महाभारत के पात्रों को जीवंत करने का प्रयास करता है, तब कहीं ना कहीं तीजन बाई की साधना उसके साथ चलती हुई प्रतीत होती है। आज वो हमारे बीच भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, किंतु भारतीय लोक संस्कृति की चेतना में उनका स्वर सदैव जीवित रहेगा।
1: तीजन बाई का जीवन हमें ये विश्वास दिलाता है कि कलाकार का शरीर नश्वर हो सकता है, पर उसकी साधना अमर होती है। उन्होंने सिद्ध किया कि लोक कला किसी संग्रहालय की वस्तु नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक बहने वाली जीवंत धारा है। यही कारण है कि तीजन बाई केवल एक लोक गायिका के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति की अमर प्रतिनिधि के रूप में सदैव स्मरण की जाएंगी।
2: के नीचे अर्जुन बैठी से कहा, अमर अटियावा श्री कृष्ण।

तो दोस्तों, अभी हमने सुना एक फीचर और इसका विषय था लोक की स्वर सरिता तीजन बाई, और हमने ये सुना दिव्या द्विवेदी और अंजलि श्रीवास्तव के साथ। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट में जाने से पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: दोस्तों, आइए हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, हमारे पास जो हमारा खास सेगमेंट हर बार रहता है प्रेरणा पुंज, तो उसमें हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी लेडी की जिन्हें भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं। दोस्तों, 1942 का टाइम था, देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो।

और पुलिस ने सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। आंदोलन बिना लीडर के रह गया। उसी समय 29 जुलाई को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में एक भीड़ जुड़ी और तिरंगा फहराना था। पुलिस चारों तरफ थी, कोई झंडा फहराने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ में से एक महिला आगे आई, उम्र सिर्फ 33 साल थी, और उन्होंने हिम्मत दिखाया और लाठियों के बीच से निकलकर झंडा फहरा दिया। वो महिला थी अरुणा आसफ अली। दोस्तों, उनका जन्म 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के कालका में हुआ था। और दोस्तों, हम बात करें अगर उनके और भी योगदान की, तो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे योगदान दिए। पहली, उनसे हमें कई सारी इसलिए बहुत सारी सीखें मिलती हैं, जैसे कि उनसे पहली सीख में मिलती है हिम्मत। सब डर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बीच में डर को हराया और उन्होंने उस मैदान में झंडा फहराया और ये दिखाया कि अगर आप डर को हरा दें तो आप और लोगों को हिम्मत दे सकते हैं। दूसरी सीख उनसे हमें मिलती है निडर पत्रकारिता की, क्योंकि जेल उन्होंने कई बार, वो कई सालों तक जेल में रही, लगभग 9 साल तक, और जेल से छूटने के बाद उन्होंने इंकलाब और लिंक जैसे अखबार शुरू किए और सच बोलने से कभी नहीं डरी। तो ये रही हमारी आज की प्रेरणा पुंज अरुणा आसफ अली जी, जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक और ख़ास सेगमेंट रहता है और वो है प्रश्न का, जिसमें हम आपसे हर रोज़ एक प्रश्न पूछते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना उत्तर देंगे। और हमारा जो कल का प्रश्न था वो था, विच कोर्ट हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र एनी केस एनी वेयर इन इंडिया? तो उसका आंसर है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और हमारा जो आज का प्रश्न है दोस्तों, वो है कि भारत में अध्यादेश जारी करने का नियम कहाँ से लिया गया है? आप हमें अपना उत्तर दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvani@gmail.com पर, यानी yuvvani@gmail.com पर। आप हमें अपना उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250 पर। दोस्तों, आप हमें सुन सकते हैं हमारे और एक ऐप पर, न्यूज़ ऑन एयर ऐप। और साथ ही अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रोग्राम रहा है, हम जैसा कि कहते हैं हमारा प्रोग्राम इंफोटेनमेंट प्रोग्राम है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लाते हैं आपके लिए, ताकि क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो बेसिकली है वो ओरिएंटेड है यूथ्स के लिए। हम ऐसे प्रोग्राम लाते हैं ताकि यूथ्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हम उनके फ्री टाइम में उनको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन और उनको नॉलेज दे सके, ताकि उनके काम में हेल्प मिले और वो अवेयर हो सकें। और साथ ही हम आपके लिए, हम जैसा कहते हैं कि ये इंफोटेनमेंट प्रोग्राम है, तो हम आपके लिए एंटरटेनमेंट का भी पूरी हम कोशिश करते हैं, म्यूज़िक के थ्रू, फीचर्स के थ्रू, अलग अलग सेगमेंट्स के थ्रू आपको वो दें। तो हमसे आप हमेशा ऐसे जुड़े रहिए, और मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी

का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे पुरी उड़ीसा में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे किसान चर्चा में किसान पंचमलाल से रानू जायसवाल की बातचीत। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:30 पर सुनिएगा प्रियंका द्विवेदी की कहानी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे अंकिता चतुर्वेदी के स्वर में गीत और भजन। सबरस कार्यक्रम का समय होगा 8:30। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां सुनिएगा रात 9:30 पर और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे श्री गौरी शंकर का क्लेरियोनेट वादन। ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं एक नज़र कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल की प्रातःकालीन सभा में 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अमिताभ कर से रितेश शुक्ल की बातचीत, धान की खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग एवं लाभ। सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर सुधा यादव की वार्ता होगी ल्यूकोडर्मा कारण एवं उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन, दिन में 12:15 पर पंडित अनोखे लाल का तबला वादन और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर श्री गौरी शंकर का क्लेरियोनेट वादन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 8:45 पर। सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज में सुनिएगा अभिनेत्री नुपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी की बातचीत। सुबह 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं मोहनलाल जैसल और साथी, इसके अलावा इंद्रजीत यादव और साथियों के गाए लोकगीत। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहने निखार के अंतर्गत सुनेंगी बालों को दें ट्रेंडी लुक। जायका में सुनिएगा खजूर और पिस्ता की बर्फी। इसके अलावा गृहलक्ष्मी टिप्स में रसोई के जैविक कचरे से कैसे बनाएं कंपोजिट खाद, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। शाम 5:00 नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम होगा नन्ही दुनिया। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर भास्कर मिश्र की वार्ता होगी श्री जगन्नाथ लोक यात्रा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे दीपयंती से गीत और भजन। अक्षयवट कार्यक्रम में रात 8:30 पर डॉक्टर कमलेश कुमार सोनकर से दीपक राय की बातचीत होगी वृद्धावस्था में रीढ़ की हड्डी में होने वाली समस्याएं और उपचार। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर और रात 10:00 सुनिएगा नाटक सदा नीरा, इसके लेखक हैं अंशु मालवी। ये थी जानकारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन की कहां ढूंढता ही रहा, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचोराम
1: राम।
0: हमके
1: चन्नर भैया का हाल चाल बा हो
0: भैया? देखा खेती बाड़ी के हाल चाल ठीक है चलत है। हाँ। जनते या भैया इसमें धान के जौन मड़ाई रोपाई के बात होत न।
1: हाँ हाँ।
0: तो रोपाई के काम जौन है बहुत तेजी से चलत बा। निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि हर किसान भाई इसमें धान के रोपाई के काम में व्यस्त हुई ही।
1: हाँ।
0: विशेषकर जे लोग आपन जौन नर्सरी रही धान के न।
1: हाँ हाँ।
0: वो समय से डाल ले रहे हैं या जे दो चार दिन देर भी भय रही जेका वो भी अपन रोपाई के काम करत बाटे।
1: कही गए हो चन्नर भैया। अब देखा अपन ई जौन धान के रोपाई वाली बात बताया हो तो खेती किसानी में अपन धान की जौन फसल बा ये ज़्यादा भैया देखा अपन पानी पर निर्भर होते हैं।
0: काहे न काहे न।
1: तो ई जल के जौन है हम कहब कि किसान भैया बहनी हरन अपन जल का संरक्षण करत भय अपन धान में जौन है जल के जौन है सिंचाई करें ताकि अपन ई जल के जौन स्तर भाई धरती के
0: हाँ हाँ
1: तो ई बढ़िया बना रहे और ताकि भैया देखा एक एक बूंद से घड़ा भरत है वो।
0: काहे न भैया कहा जाता ना कि भाई जौन बरसात के पानी बिना।
1: हाँ
0: यह भाई जौन जमीन के अंदर पानी के जौन जल संचय होते है
1: हाँ हाँ
0: यही बरसात के पानी के रोक के और ओका रिसाव जौन ओकर होत ना।
1: हाँ
0: जब
1: हाँ
0: रुके पानी तो
1: हाँ
0: रिसाव होए जमीन के अंदर जाए और जमीन के अंदर जब जाए तो जौन अपन जमीन के अंदर के जौन संचित जल बाटे
1: हाँ हाँ
0: भाई ओकर स्तर बढ़े।
1: कही गया। और साथ ही साथ एक बात और हम कहब हो अपने किसान भैया बहनिन से
0: हाँ हाँ
1: वो ये बात कि भैया देखा ये जोन बारिश का जोन महीना बा
0: हाँ
1: तो भैया देखा जगह जगह पर वर्षा होत है अतल वितल मा भैया देखा रुक रुक के भी वर्षा होत है तो सब किसान भैया बहनी हरन से तो हमारे ही भाई अरदास बा कि आपन जोन है ये जोन वर्षा के जल का है ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करें काहे कि आपन जोन देखा अपन पुरनिया रहन अपन दादा बाबा
0: हाँ
1: वो एक टाइम रहा कि अपन तालाब है
0: हाँ
1: तलाई है
0: पोखरा
1: पोखर
0: भाई।
1: है तो जोन जल का संचय किया जात रहा है ये कितने देखा समझदारी रही कि आज जौन है तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा अगर जल संरक्षण रही तो अपन ही धरती के जौन जलस्तर बा
0: हाँ
1: ये बढ़िया बना रही।
0: भैया हो देखा कहा ही जात ना जौन
1: हाँ
0: विशेषज्ञ भैया बाटन
1: हाँ हाँ
0: वही कहते भाई कि जौन बरसात बाव करे शुरू हो से पहले
1: हाँ
0: खेत के जौन आए मेड़बंदी अगर हो जात है
1: हाँ हाँ
0: तो भाई जब मेड़ दुरुस्त हो जाए तो पानी बरसे तो अपने खेत के जौन पानी बा खेते में रहे
1: हाँ हाँ
0: और भैया वो रिस के जमीन के अंदर जाए।
1: हाँ
0: ऐसी का होए कि जल जौन जमीन बाटे उनमें नमी लगातार लंबे समय तक बनी रहे और
1: हाँ
0: साथे साथे जौन रिसाव से जल अंदर जाए वो भाई हमेशा के लिए जब भी जरूरत पड़े ट्यूबवेल के माध्यम से या भाई समरसेबुल आजकल लगत बाटे
1: हाँ हाँ
0: ओकरे माध्यम से वो पानी के खींच के जरूरत पड़े भाई सिंचाई के काम होए पिए वाले पानी के जौन बा
1: हाँ
0: ऐसी पानी मिले भैया पिए के।
1: कही गए। अब जैसे कि मेड़बंदी वाली बात जोन बताया हो भैया चन्नर देखा कितनी पते की बात है नीक बात बताया हो किसान भैया बहनी हरन से तो हम अपने पंचायती से यह कहब हो कि अपन खेत के मेड़बंदी जरूर बनाए रखें काहे कि जोन धान की फसल बा एमा जल के जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़त है तो अगर मेड़बंदी सही रही तो चन्नर भैया हम सब्जी थे कि अपन फसल भी बढ़िया रही और साथ ही साथ जल संरक्षण होता रहे।
0: बिल्कुल भैया एक चीज़ और फायदा होए
1: हाँ
0: वही कि भाई जो ना अपन उपजाऊ मिट्टी में ना
1: हाँ हाँ
0: खेत के सबसे ऊपर की मिट्टी जो उपजाऊ होते है
1: हाँ
0: जो हमसे इतना मेहनत कई ओका बनाई थे
1: हाँ
0: उसमें
1: हाँ
0: जवांस वगैरह डाली थे
1: हाँ हाँ
0: तो वो माटी भैया अगर मेड़ ठीक से न रहे तो माटी जो है पानी के साथ बह के बगल के खेत में चला जाए।
1: हाँ
0: बगल के खेत से होते हुए भैया

0: वो नदी नाला में चला जाए,
1: हाँ
0: तो काहे मतलब जो आपन अच्छी माटी बा, उपजाऊ माटी बा,
1: हाँ
0: उहू के बाहर से रोका जा सकत है अगर मेड़बंदी सही से रहे तब।
1: हाँ ये तो बहुत नीक बात बताया हो भैया चन्नर। अब जैसे कि अपन जौन माटी की जौन ऊपर वाली जमा गुणवत्ता जमा ताकत बा
0: हाँ
1: शक्ति बा
0: हाँ
1: कि जेमा अपन जीवाश्म तत्व की जितना से ज़्यादा अधिकता बा महत्व बा तो अपन बना रही। और किसान भैया बहनी हरिन से हम तो यही कहा कि अपन जल संरक्षण भी बना रही और साथ ही साथ अपन जौन है खेत की मेड़बंदी जरूर से जरूर करें।
0: एक चीज और भैया कि जौन मेड़ पे घास होत है ना
1: हाँ
0: भाई, घास भी बहुत सहयोग करत है कि माटी जौन है पानी के साथे बहने जाए।
1: कही गया
0: तो
1: कही
0: भैया जौन मेड़ पे घास बाटे, विशेषकर दूब घास जौन होत है ना,
1: हाँ
0: निश्चित तौर पे वो माटी के बहाई से रोकत है,
1: हाँ
0: जल के खेत में रोकत है वो,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: ऐसी का होत है ऐसी आपन जौन जल स्तर बा जमीन के अंदर के
1: हाँ हाँ
0: वो और जौन है बढ़त है।
1: कही गया। अब जौन बताया कि मेड़बंदी में जौन घास उगत बा वो माटी के जो बहाव से रोकत है और साथ ही साथ किसान भैया बहनी हरिन से हम एक बात और कहा हो
0: उका
1: कि वही बा कि जैसे कि डाँड़ मेड़ में कौनो बिल कांदर हुए हो तो उन बिलन का जौन है जरूर अच्छे तरीके से उनका मूंद दें माटी के तरीके से दाब दें ताकि जो है पानी बिल कांदर से इधर उधर बहे ना पावे मेड़बंदी कटे ना पावे।
0: कुल मिला एक भैया काहे की बा कि खेत में पानी रुके या भाई जोन घर के आसपास से पानी जोन बह के जात बरसात वाला, वो भैया तालाब वगैरह में रोका जाए उका,
1: हाँ
0: अगर ये काम किया जाए तो निश्चित तौर पे जोन जल स्तर बाटे जमीन के अंदर के
1: हाँ हाँ
0: वो भाई बना रहे और वो भविष्य में आगे चल के काम आए।
1: कहिए चन्नर भैया। अब हम सब यह संकल्प ले थे कि आपन जो उन्हें जल संरक्षण बढ़िया बनाए रखें जल का इधर से उधर दुरुपयोग न हो पावे जितना ज़रूरत जल के हो उतने खेत में अपने खेती किसानी में उनका उपयोग करें।
0: बिल्कुल भैया, देखा बत कही होत रहे लेकिन सोचता है कि भाई आज देखा मेरी खेती मेरी बात के दिन आए, किसान चर्चा बाटे
1: हाँ हाँ
0: तो एका सुनवाऊ, लेकिन पहले राजमण घायल और संघातिन गवा के गौनई हो जाए।
1: हाँ हाँ सुनवा दिया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया, देखा गौने के बाद संदेश भी हो गया।
4: हाँ,
3: अब वो जो उनका हाथ रह भैया ना कि देखा किसान चर्चा बाटे एक है।
4: हाँ,
3: तो पंचम लाल भाई से रानू भैया बतियान बाटे।
4: हाँ,
3: तो आवाई हो किसान भाई को सुनवाई दिया जाए।
4: हाँ, सुनवा दिया।
5: देखा अपने पंचायती पे समय समय पे किसान भैया बहनी हरे आवत रहे थे, जो अपन प्रोग्राम किसान चर्चा चला था। आज उसी परिप्रेक्ष्य में पंचम लाल मऊआईमा प्रयागराज से आए हैं और खेती किसानी के बारे में बताई हैं कि कौन खेती से कैसे कैसे कितना लाभ हो सकता है, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो किसान भैया बहनी हरण के, और कौन कौन चीज़ के विशेष ध्यान देवे के चाहिए। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि कितना

0: खेत है।
1: भैया हमारे पास खेत जोन बा 11 बीघा एक है और 4-5 बीघा बाग बगीचा है,
0: अच्छा
1: लेकिन 11 बीघा वहाँ खेती करी थे।
0: हाँ।
1: लेकिन अब खेती करे तरीका यह है आधुनिक ढंग के खेती के लिए, सबसे पहले तो भैया माटी की जांच करा ला। अगर
0: अच्छा
1: माटी की सेहत बढ़िया बा
0: हाँ।
1: तो समझ ले जो खेती बाड़ी के जो भी अन्न पैदा किया जाएगा वो भी बढ़िया होता। अब
0: अच्छा
1: माटी की जांच करावे के लिए भैया ऐसा कहीं जाता कि एक जोने खेते का माटी यानी जांच
0: लिहा
1: करके
0: जाता
1: खेती
0: है।
1: के बाद लिया
0: हाँ
1: जाता तो करे चारों कोना के एक लाठा छोड़ के, करीब
0: अच्छा
1: एक एक लाठा छोड़ के मिट्टी खुरपी से 9 इंची के हल्का से गड्ढा बना करके,
0: हाँ
1: और एक फिर करे मध्य भाग बीचे वाले भागे से
0: हाँ
1: वो से फिर उतने मट्टी लीन जाता।
0: अच्छा
1: खोद के मिट्टी ले आई के जैसे
0: हाँ
1: 5 किलो ले हुई के मिट्टी।
0: हाँ
1: अब वो 5 किलो मिट्टी के पहले अधियाई थे,
0: हाँ
1: अधियाए फिर अधियाए फिर
0: अच्छा
1: अधियाई से अधियाते अधियाते
0: हाँ
1: अगर एक पौवा मिट्टी बच गई भैया
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ओका एक झिल्ली में पैक किन जाता, ओका लिखा जाता ये उत्तर के या दक्षिण के गाठा के फलाने गाठा काटे मिट्टी,
0: हाँ
1: उसको ले
0: हाँ
1: जाते हैं कृषि रक्षा इकाई में
0: अच्छा
1: हमारे
0: अच्छा
1: यहाँ करीब में
0: हाँ हाँ
1: है मऊआमा में, उन्हीं के यहाँ ले जाते हैं
0: अच्छा
1: उनको
0: ब्लैक में
1: ब्लॉक में ले जाए
0: हाँ हाँ
1: थे
0: हाँ
1: तो उनका दे तो आसानी से ले जाती जांच कराई के दे दीजिए भैया।
0: अच्छा
1: अच्छा
0: पंचम भैया ये बताएं का का लगाए हैं इस समय।
1: भैया ये समझ जैसे हम धान लगाए,
0: हाँ
1: धान
0: हाँ
1: हमारे करीब 6-7-8 बीघा तक धान लग चुका है, और
0: अच्छा
1: बाकी बजरी बोए हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: और बजरी 2 बीघा बोए हैं, 1 बीघा बजरी भैया तो वो खाए वाली बजरिया,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: 1 बीघा चारा के लिए गए हमारे पास 7-8 भैंस गाय सब है,
0: अच्छा अच्छा
1: बकरी भी अलग से है, इस तरह से
0: हाँ हाँ
1: है तो उनका सबको चारा के लिए ज़्यादा होती है। लेकिन अभी जैसे धान लगाए हैं
0: हाँ
1: भैया एक
0: हाँ
1: चीज़ आपको धान के बारे में बताइए, आपका
0: हाँ हाँ
1: धान जैसे अब लगाए दिए हैं तो अभी शुरुआत हुआ ये करीब 70-75 दिन के बाद जब हो जाएगा तो
0: हाँ
1: इसमें ध्यान ये दे के पड़ जाता है इसमें 4 गांठ बनती है,
0: अच्छा अच्छा
1: शुरू से 1-2-3-4 गांठ हुई, जब 4 गांठ के बाद बिल्कुल बंद हो जाती गांठ इसकी,
0: हाँ हाँ
1: जब वो चौथी गांठ के आगे बढ़ेगा तभी इसमें जो है उसका फूल आएगा, फूल
0: अच्छा
1: फल का जो भी हिस्सा बनेगा वो भी
0: हाँ
1: चलेगा,
0: हाँ हाँ हाँ
1: वो चलेगा आखिरी तक उस तरह चलेगा। इसमें सावधानी भैया बहुत बरतने की पड़ता
0: अच्छा का
1: है,
0: कब सावधानी बरतने की पड़ा था
1: सावधानी
0: मतलब।
1: भैया एमआई की एक एक खाद पानी,
0: हाँ हाँ
1: जब ये इसमें फूल आवे लगा था फूल आ गया
0: हाँ हाँ
1: तो एक सावधानी यह है कि का फूल आवे के पहले पहले का हल्की सिंचाई कर दिए खाली में ऐसे हल्का हल्का लगे, नहीं
0: अच्छा
1: तो अगर फूल आ रहा है
0: हाँ
1: तो वो तब सिंचाई करते हैं तो इसका फूल मर ऐसे जाता है,
0: अच्छा
1: होता
0: मतलब
1: नहीं
0: कहे कि
1: होता,
0: मतलब यह है कि हल्का सा पानी चटाई
1: हल्का ही
0: दे। हाँ
1: पानी दीजिए। इसमें अगर आप ध्यान दें तो फूल आते समय
0: हाँ
1: फूल में एक जो दो बूसी नहीं होती धान की,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: दोनों बूसी अलग अलग रहती है,
0: अच्छा
1: और इसके मध्य भाग में एक इसे मोर के पंखे की तरह से इसका एक जो है
0: कनखा निकला रहता।
1: कंखा रहता है, वो वही उसका जो है वो मूल तत्व बनता है।
0: अच्छा अच्छा
1: उस पीरियड में भैया अगर आप
0: हाँ हाँ
1: सावधानी नहीं बरते, अब खेत में अगर गए धान जो है 12 बजे दिन में फूल आता है जी,
0: हाँ हाँ
1: 12 बजे अगर आ गया तो आपको खेत में जाना नहीं है, अगर
0: अच्छा
1: आप जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, धान जो है आपको पटपट टाइप हो जाता है
0: अच्छा
1: और वो मैंने उसकी उपलब्धि आपको नहीं मिल पाती
0: अरे ये
1: भैया।
0: बताओ पंचम भैया हम ही कहते रहे कि कैसे ये पता चले कि धाने में कौन कौन रोग लगा है। किसान भैया बहनी हरण के सबसे ज्यादा दिक्कत ही रहते हैं।
1: भैया सुने सुने ये
0: हाँ
1: माना
0: हाँ
1: कि धान में सबसे पहले तो इसे कीड़ी हो जाती है,
0: हाँ हाँ
1: उसके गांठी के नीचे ऐसे सूड़ी टाइप का सूड़ी ऐसा होती है वो लग जाती है,
0: अच्छा
1: और कभी कभी इसकी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती, पत्ती गिरना शुरू कर जाती है, उसमें समझ लें कि अगर मिट्टी की जांच कराए यहाँ
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: जवन खाद पांच का है वो का वही के हिसाब से दवाई है, नहीं निश्चित धान में जो ना है कुछ न कुछ कीड़ा मकोड़ा लग
0: लगेगा।
1: जावे
0: अच्छा तो
1: करेगा।
0: यानी मिट्टी जांच बहुत
1: हाँ
0: फायदेमंद
1: मिट्टी
0: रहती।
1: जांच करावे की बहुत जरूरी है
0: अच्छा
1: भैया।
0: ये बताओ पंचम भैया सब्जी भी के खेती
1: सब
0: किए हैं।
1: हाँ भैया सब्जी की खेती नेनुआ है,
0: अच्छा
1: नेनुआ है करीब 1-6-7 बिस्सा नेनुआ इतने जो ना तर रोई,
0: अच्छा
1: तो अभी समय जिसको हम लोग चढ़ाते हैं इसका बांस वोत गाड़ करके
0: हाँ हाँ धागा बांध के
1: बांध करके चढ़ाते हैं,

0: और एक नेनुआ भैया एक चीज बता दी,
1: हाँ
0: जितने बढ़िया इसके खाद पात देंगे उसके
1: हाँ
0: पेड़ के,
1: अच्छा
0: वो उतने बढ़ता है।
1: अच्छा
0: बढ़ने के बाद भैया मुझे एक सावधानी बहुत बढ़िया नेनुआ में ये होता कि
1: हाँ
0: जैसे नेनुआ भैया 12 बजे माने दिन में फूल आगत,
1: अच्छा
0: और तरोई जो है वो रात में फूल आती है, नेनुआ दिन में। तो
1: अच्छा
0: जैसे सूरज निकलता है वैसे आपके नेनुआ फूल आता है,
1: अच्छा
0: और जैसे सूरज बंद हो जाता है वैसे भैया तरोई फूल आता है, और
1: अच्छा
0: आप भी
1: अच्छा
0: अपना वो अपना विकास करती है,
1: हाँ
0: फूल
1: हाँ
0: आते हैं आगे बढ़ते हैं। इसकी खेती की है 14-15 बच्चा, जब इसके छोटे छोटे गवाह हैं चढ़ा रहे हैं इसको।
1: अच्छा
0: हाँ, एक तब वो चढ़े तो अभी समय ले, 1 महीना 15 दिन तक
1: अच्छा
0: भैया।
1: बागो बगीचा है हो पंचू
0: बाग
1: भैया?
0: बगीचा भैया है, बाग बगीचा है, आम है, महुआ है, जामुन है, ये सब अपने ही उससे लगाए हैं,
1: अच्छा
0: या अपने ही उम्र के अनुसार ये
1: हाँ
0: सारे पेड़ पौधे 4-3-4 बीघा में लगे
1: हाँ
0: हुए हैं, इसकी
1: अच्छा
0: देखभाल करते रहते हैं।
1: अच्छा तो ये बेचबो करते थे बाजार में
0: अब
1: कि खाली खाए पिए अभी तक?
0: पहले तो भैया आपको बताइए, देखें हमारे यहाँ जो प्रधानी नहीं होती गांव
1: हाँ हाँ
0: की,
1: हाँ हाँ
0: 52 से हमारे पिताजी प्रधान थे,
1: अच्छा
0: और आज भी लगातार करीब करीब उसका गैप नहीं हुआ, चले आते तो हम लोगों के आदमी आते रहते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: भैया कोई ले गया, भैया हमारे ये है वो, अक्सर दे दिया जाता, बेचना बहुत कम होता है जी
1: अच्छा
0: इसके लिए। तो भैया
1: ये बताओ पंचम भैया, देखें साग सब्जी बोए हैं और साथे साथे धान के खेती किए हैं, खाद के कैसे प्रयोग करते
0: देखें
1: हैं आप? कौन कौन
0: खाद,
1: खाद
0: खाद
1: आप
0: भैया
1: प्रयोग
0: देखें
1: करते
0: ये
1: हैं?
0: जो आजकल चली ना डाई, यूरिया, पोटाश, ये सब जितना है इसका उपयोग बहुत कम करते हैं
1: अच्छा
0: हम, पूरा जैविक खेती का काम करते हैं।
1: अच्छा
0: जैविक में जैसे अभी कि इस धान जैसे नहीं बोए
1: हाँ
0: आपने
1: हाँ हाँ
0: लगाए हैं, तो इसमें वही हमारे यहाँ टमाटर खेती हम लोग ज़्यादा करते हैं,
1: अच्छा
0: टमाटर और आलू की।
1: हाँ हाँ
0: तो इसमें टमाटर के खेत में जो भी धान है वो अच्छा होता है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: उसके बाद मूंग, मूंग बोए थे, उड़द बोए थे, तो उस खेत में धान है,
1: अच्छा
0: वो उसके लिए खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना जीवांश मिल जाता। फिर खाद कंपोस्ट वाली भी डालते हैं,
1: अच्छा
0: एक खाद की और रचना कार्बनिक खाद बनाते हैं भैया,
1: अच्छा वो कैसे बनाओ थे भैया?
0: कार्बनिक खाद भैया जैसे है ना, गड्ढा 4 बाई करीब 11-12 का ऐसे करके खोद
1: अच्छा
0: करके
1: अच्छा हाँ
0: गड्ढे गहराई 3 फुट करते हैं।
1: हाँ हाँ
0: तीन
1: हाँ
0: फुट इसलिए करते हैं कि 3 फुट तक ही में ऐसे कीटाणु मिलते हैं जो खाद बनाते हैं।
1: अच्छा
0: तो उसमें जैसे अब घर का माने औरतें हैं ना, वो सब वो छीलन फीलन साग सब्जी
1: हाँ
0: का
1: हाँ खरपतवार जो निकलता है।
0: खरपतवार बहारन बटोरन सब देहात में है ना, बहारन बटोरन का
1: हाँ
0: नाम
1: हाँ
0: होता
1: हाँ
0: रहता है, तो उसको डालते रहते हैं। सावधानी भी है उसमें, कभी कभी ये होती है कि उसको देखते रहना पड़ता है, कभी कभी उसमें जैसे चूल्हे से नहीं खाना बनता
1: हाँ
0: तो
1: राख
0: वहाँ राख निकलती,
1: हाँ
0: तो भैया
1: हाँ
0: रखियो मिलावट पड़ जाता, मट्टी
1: हाँ
0: मिलावट पड़ जाता,
1: हाँ हाँ
0: ये सब तमाम जौन बा मिला के तब वोकर जीवांश करीब 6 महीना लेता है जी, छः
1: अच्छा
0: महीने में वो कार्बनिक खाद बन जाती है उसके लिए,
1: हाँ हाँ
0: फसल के लिए बहुत रामबाण
1: बहुत
0: है भैया।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: और जैसे और बकरी का भी इस तरह से करते हैं,
1: हाँ
0: बकरी
1: हाँ
0: 11-12 जिलाए भैया,
1: अच्छा
0: अब बकरी की देखें अब कहानी है कि नहीं, वृक्ष पौधा जो भी लगाते हैं वो बकरी खाद देते हैं, उसमें बकरी की खाद से उसकी पूर्ति हो जाती है
1: अच्छा
0: भैया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ये बताओ हरी खाद का भी प्रयोग करते
0: हरी
1: हैं?
0: खाद अब सनई तो कम बोई जाती,
1: हाँ
0: ढैचा
1: दहीचा
0: में ढैचा है, उस ढैचा बोए थे भैया, वो ज्यादा बढ़ नहीं पाया, लगाना
1: हाँ
0: शुरू हो गया धान में, तो उसको पटवा चिपाटा उठा चला के सरा के उसको
1: अच्छा धान लगाए दे
0: धान
1: हैं।
0: लगाए
1: अच्छा
0: करके।
1: बहुत अच्छा क्या। अच्छा ये बताओ मैं पंचम भैया, सिंचाई के क्या व्यवस्था
0: सिंचाई
1: है?
0: का अपन भैया एक 3 पंपिंग सेट निजी है,
1: अच्छा हाँ
0: 3 अपना पर्सनल है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: ये आज से नहीं है,
1: हाँ
0: सन 66 से मेरे पास लगातार जो है ये
1: अच्छा
0: अपने ही साधन से सींचते उसते,
1: अच्छा
0: खेती तभी बढ़िया हो पाती है भैया,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: गुजारा
1: देखें पानी के
0: गुजारा।
1: जो
0: हाँ भैया
1: व्यवस्था
0: ना, ये
1: जरूर
0: गुजारा
1: होता।
0: परिवार का होता है ना
1: अच्छा
0: भैया,
1: ये
0: गुजारा।
1: बताओ सिंचाई में का चीज़ का बहुत ध्यान देवे के चाहिए?
0: सिंचाई में भैया सबसे पहले तो ये जो ध्यान दे की बात आए, अपने
1: हाँ
0: खेत का समतलीकरण नहीं होता
1: हाँ हाँ
0: बराबर,
1: हाँ बराबर
0: जब
1: कराए
0: तक
1: थे।
0: आप बराबर नहीं कराओगे आप फसल अच्छी नहीं ले सकते हो,
1: अच्छा
0: कहीं कहीं पौधा बूढ़ जाता है, कहीं कहीं ऊपर
1: हाँ
0: हो
1: हाँ कतो
0: जाता
1: उच
0: है,
1: खाल रहे थे
0: समतलीकरण कराइए तब सिंचाई का माने उसमें पानी भी कम लगेगा
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: फसल भी अच्छा अपना करेगी।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा कुछ किसान भैया बहनी हैं कि पानी ज़्यादा बोर देते हैं जो
0: तो
1: उनसे पानी का भी नुकसान होता है और साथे साथे खेती का भी नुकसान।

0: होता।
1: और भैया वैसे आजकल खेती करे का जब तक आप वैज्ञानिक खेती ना करवा
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: अगर फायदा ना लेगा इससे।
0: अच्छा, ये बताओ भैया, पशुपालन भी करत हुई हैं?
1: पशुपालन भैया बताए कि हमारे पास 5-6 भैंसे, गाय
0: अच्छा,
1: अलग से, बकरी अलग
0: हाँ
1: से,
0: हाँ
1: और ये भी मेरा पैतृक एक तरह से है।
0: हाँ अच्छा,
1: और कम से कम नहीं तो ये मेरी जानिश में 70-75 साल से मेरे यहाँ, भैया सही बता रहे हैं कि मेरे यहाँ 4-6 भैंस हमेशा लगती
0: अच्छा
1: है।
0: खूटा खाली नारहन का
1: खूटा
0: भाव?
1: खाली नहीं रहता जी, ये तमाम भैंस अच्छी सच्ची भैंस रखना
0: हाँ
1: और दूध करना, उसका दूध बेचवाते हैं जी।
0: अच्छा, तो भाई दूध
1: हाँ
0: जब भाई से इतना आए हैं तो दूध
1: हाँ
0: बेचौदी।
1: दूध बेचवाते हैं, दही
0: अच्छा
1: वगैरह, आप पहुँचे कोई पहुँचा, और जो आदमी है उदमी कर रहे हैं सब उनको खिलाना पिलाना,
0: हाँ
1: तब खेती बढ़िया हो जाती भैया,
0: हाँ हाँ हाँ
1: आदमी मिल जाते।
0: अच्छा, घेऊ हो तो ही हैं?
1: और घी भी होता है, लेकिन ये कि परिवार लंबा है,
0: अच्छा
1: सब खाते पीते रहते हैं, बहू बिटिया सब जो भी है उसमें कोनो रोक टोक नहीं, खाओ काम करो,
0: हाँ हाँ
1: डेवलप करो अपना,
0: हाँ
1: कर
0: अच्छा
1: विकास करो
0: पंचम भैया, एक बात हम और
1: भैया,
0: पूछे चाहते रहे हैं
1: बताओ
0: कि
1: भैया।
0: देखें, सरकार यह समय समय समय पे मोटा अनाज के बड़ा कम से प्रोत्साहन देता है।
1: नहीं भैया आप सुने सुने भाई,
0: हाँ,
1: वो का श्री अन्न
0: श्री अन्न
1: हमारे
0: कहते,
1: माने
0: हाँ
1: प्रधानमंत्री जी
0: प्रधानमंत्री
1: जो
0: जी
1: है,
0: कहते
1: अभी
0: तो।
1: नहीं कोदो बोए हैं जी, करीब 5-6 बीघा कोदो
0: अच्छा,
1: और मकरा की बियड़ डाले हैं जी, और मकरा
0: अच्छा
1: की बियड़ अब अभी थोड़ी छोटी है, हो
0: हाँ हाँ
1: जाएगी तो उसको
0: हाँ
1: जो है अब
0: हाँ
1: लगवाएंगे मकरा को।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा तो हम ही कहते रहे हो पंचम भैया,
1: भैया,
0: जिसे मोटा अनाज जौन होते हैं तो ओके अपने बिदा रखे थे कि बाजारे में बेचबो करे थे?
1: नहीं बेचते नहीं जी, खाते खूब हैं बजरी, जैसे बताए भैया कि 1 बीघा बजरी अपने खुद के लिए जो है वो खाने के लिए,
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: ये है अनाज, ये सब खाते हैं जी।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: अच्छा
1: बताते
0: ये
1: हैं
0: बताओ पंचम भैया, का मिश्रित खेती भी आप करते हैं, जैसे किसान भैया
1: मिश्रित,
0: बनी हरे हैं कि
1: नहीं
0: एक?
1: मिश्रित खेती में जैसे हम आलू करते हैं,
0: हाँ हाँ हाँ
1: आलू में जैसे सरसों लेते हैं,
0: अच्छा
1: मटर लेते हैं,
0: हाँ हाँ
1: आलू
0: हाँ
1: लेते हैं,
0: अच्छा
1: इस तरह से खेती मिश्रित खेती करते हैं।
0: अच्छा ये समय मिश्रित खेती में
1: मिश्रित
0: जैसे,
1: खेती में इस समय हमारे पास मिश्रित खेती का कोई इस समय नहीं है,
0: अच्छा ना बोए
1: नहीं
0: हैं,
1: इस समय
0: कुछ
1: नहीं
0: किसान
1: बोई।
0: भैया बहनी अरे मक्का में उर्दी बोई देते हैं
1: हाँ वो कोई
0: और?
1: बहुत ही भैया, लेकिन हम नहीं इस तरह से।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: जैसा, और सब्जी वगैरह मसलई खेती कर लेते हैं भैया।
0: अच्छा
1: हाँ, जैसे लहसुन हुआ,
0: हाँ हाँ हाँ
1: धनिया हुआ,
0: हाँ
1: प्याज हुआ,
0: हाँ
1: इसकी खेती करते हैं
0: अच्छा
1: भैया।
0: अच्छा
1: आप लहसुन की खेती करने के तरीके बता दिए भैया, जैसे नहीं आलू वालू मेड़ी नहीं बनाते हैं
0: हाँ हाँ
1: तो हम
0: हाँ
1: करीब लहसुन की खेती ज़्यादा करते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ तो
0: अच्छा
1: लहसुन की खेती करते हैं, लहसुन खेती में खाद पान जो भी है वही बकरी
0: अच्छा
1: खाद
0: जोन
1: डालते हैं
0: बकरी
1: भैया,
0: के काम से लेड़ी
1: डालते
0: होता
1: हैं
0: है, ये
1: तो
0: सब खाद
1: लहसुन के,
0: होता है?
1: हाँ लहसुन का खेती करेंगे भैया। एक चीज़ बता दी अपने
0: हाँ
1: हम किसान भाई उनके कि
0: हाँ
1: लहसुन जैसे हरा उसका थोड़ा 6 महीने का पौधा होता है ये,
0: हाँ हाँ
1: और थोड़ा उसका डंठल जब हरा रहता है तभी खोदा जाता है। वो
0: अच्छा
1: कहीं जान ले कि लहसुन खोदे के बाद
0: हाँ
1: जौने दिन से आप खोदवा 27 दिन का भैया लहसुन बाढ़ता है। अगर 1 किलो का पौड़ा है वो
0: हाँ
1: मैं 300 ग्राम 250 ग्राम बाढ़ता है खोदने के बाद, 27 दिन के बाद जब 28 दिन लगेगा भैया लहसुन बंद हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बढ़ेगा। खोदने के बाद
0: हाँ हाँ
1: लहसुन
0: हाँ
1: अच्छा होता है
0: अच्छा
1: भैया
0: अच्छा
1: इस तरह से।
0: सिर
1: प्याज भी इस तरह से अगर बढ़िया उसको लाना है, प्याज करना है
0: हाँ हाँ
1: तो प्याज में भैया वो जो परत नहीं हो प्याज खाती तो जय पाती आप कई पौगा भैया, तो
0: हाँ
1: ये परत होए हो माँ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: एक पहले आउट ना हुई।
0: अच्छा, आप काम से हमारे प्रोग्राम में आए हैं और आपकी बातन से किसान भैया बहनी हरे लाभ ली हैं और एकर फायदा उठाई हैं, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
0: हाँ
2: हो
0: भैया,
1: चन्नर भैया,
2: देखा भाई संगमलाल भैया से रानू भैया कितना फरियाई के बतियाल हैं। संगमलाल भैया के जौन अपन अनुभव रहा है खेती बाड़ी के, ओका जौन है बताएं तो निश्चित तौर पे जौन है भाई, जौन पंचमलाल से भैया जौन रानू भैया की बती कही रही है, निश्चित तौर पर बहुत ही कारगर रही है। एका
1: हाँ
2: किसान भाई सुने हुई ही तो एका गुण ही और गुण ही भैया तो ऐसी जोन है उनका लाभ मिले।
1: कहेंगे वो चन्नर भैया। अब देखा पंचमलाल भैया कितने खेती किसानी के जागरूक किसान भैया हैं, और बड़ा आपन अनुभव बाँटिन कि भैया देखा लहसुन की खेती कैसे किहल जाए, आपन प्याज की खेती कैसे किहल जाए। हाँ जय जय पताई हुई तय परत हुई हैं, तो खेती किसानी में भी बड़ा ध्यान

0: रखब जरूरी होत है कि पेड़ है पौधन है, चाहे साग सब्जियन के होए चाहे पेड़ पौधन होए, उनके भैया देखा से टेम टेम से निराई है गुड़ाई है, साथ ही साथ अपन जैसे खाद का प्रयोग चाहे कंपोस्ट खाद हो चाहे जैविक खाद हो, भैया तरह तरह के ध्यान दिया जाए तो हम समझे थे कि किसान भैया बहनी है इनका बढ़िया लाभ मिली।
1: बिल्कुल भैया, पंचमलाल भैया कितना खेती बाड़ी के इनके पास अनुभव बा, पूरा अनुभव के भाई बताएं ना, और यही अनुभव के इनके किसान भाई सुने हुई हैं तो निश्चित तौर पर इनका लाभ होए। एक चीज और भैया,
0: हाँ
1: कि भाई देखा भाई बात कही के दौरान एक बात आई ना, कि भाई जौन है खेती बाड़ी के लिए जौन वैज्ञानिक तौर तरीका बा, जौन आधुनिक तरीका बाटे, विशेषकर जौन भाई माटी के जाँच करावे के जौन तकनीक बाटे, ये तकनीक तो भाई हर किसान भाई के अपनावे पड़े।
0: ये तो बहुत नीक बात बताइन हो भैया। अब जैसे कि आपन खेती किसानी में मुख्य बात जय देखा कि जैसे चाहे रबी के फसल हो चाहे जायद के फसल हो चाहे खरीफ के फसल हो भैया, हर एक टेम टेम पर तरह तरह के फसल किसान भैया बहनी हरिन उगावत हो। तो आपन ये जौन धरती देखा, ये माटी के गुणवत्ता बा, कौन फसल में कौन तत्व के ज़्यादा की ज़रूरत है, कौन फसल में कौन तत्व के कैसे इनका कम की ज़रूरत है। तो जब अपन किसान भैया बहनी हरिन विशेषज्ञ भैया हरिन के पास पहुँची हैं, अपन अनुभव बटियाँ दी हैं, अपन समस्या किसान भैया बहनी हरिन बताई हैं, माटी के जांच करी हुई हैं, तो तभी भैया देखा ही जानकारी मिल पाई।
1: एक बात और भैया,
0: हाँ हो भैया,
1: कि भाई देखा माटी के जांच करा ले से एक फायदा ही होते है,
0: हाँ हाँ
1: कि भाई जौन तत्व माटी में बांटे वो अनावश्यक रूप से किसान भाई चाहे वो जैवांश बा चाहे रासायनिक खाद के रूप में वो करना डली हैं,
0: हाँ हाँ
1: तो ऐसा स्थिति में भाई जौन लागत खर्च में ना
0: हाँ
1: वह संतुलित रहे वह कम होए,
0: हाँ।
1: और जब लागत खर्च कम हो जाए तो फायदा ही फायदा होए किसान भाई के।
0: अब जैसे कि किसान भैया बहनी है इनका जानकारी भली भांत नहीं बा कि कौन तत्व की कमी से कौन जैसे कि उर्वरक के जौन है प्रयोग की हल जात है, कौन से दवा दर्पण का प्रयोग की हल जात है, जैसे माटी बहुत ऊसर वाली बा तो उस रीली वाली माटी में कौन तत्व की ज़्यादा ज़रूरत है जौन से माटी के अपन गुणवत्ता शक्ति बढ़िया बनी रहे और माटी उपजाऊपन हो। तो जब किसान भैया बहनी हरिन विशेषज्ञ भैया हरिन के अपने ब्लॉक में जई हैं, तरह तरह की जानकारी ली हैं, हम समझे थे चन्नर भैया तब ही ना अपन खेती किसानी की गुणवत्ता बढ़िया बनी।
1: बिल्कुल भैया, एक बात और चर्चा के दौरान आई ना,
0: हाँ हो
1: कि देखा भाई जौन पशुपालन बाटे ना,
0: हाँ हाँ
1: भाई बहुत ही लाभदायक बा, खेती बाड़ी के साथ साथ अगर पशुपालन भी रहा है,
0: हाँ हाँ
1: और ठीक ठाक भैया अगर जानवर अच्छे नस्ल के किसान भाई गांव में रह के अगर का पालत बाटे,
0: हाँ हाँ
1: तो निश्चित तौर पे जौन दूध वाला व्यवसाय बा, जौन दूध से उत्पन्न अन्य जौन और उत्पाद बाटें ओका अगर तैयार कर लेत बाटे, तो ओहू से भैया चार पैसा उनका रोज हाथे मिलत रहे, तो ऐसी जौन आए खेती बाड़ी में भी मन लगा रहे, और जौन भाई पढ़ाई लिखाई के जौन मौके झोंके जौन जरूरत पड़ा था पैसा के ना, भाई खेती में कोनो भी फसल उगावे से पहले भाई नया बिया चाहे खाद चाहे ई कुल के लिए जौन पैसा जरूरत पड़ा था ना, भाई देखा ई पशुपालन के द्वारा किसान भाई दो पैसा बचा के और एक रख के और ये काम में लगाई सकत है।
0: कही और नगदी फसल में अपन जैसे कि दुग्ध पालन वाली बात जोन बताया हो बहुत नीक बात रही कि जैसे कि अपन किसान भैया बहनी हरें चाहे अपन भैंस के पालन करें, चाहे अपन साथ साथ अच्छी किस्म के गाय के पालन करें, चाहे भेड़ बकरी पालन करें, तो कौनों भी देखा भैया अपन पशुओं के जौन है अपन पालतू पशुओं के अपन पालन करत हैं किसान भैया बहनी हरें, तो उनके दुग्ध से भी जो बढ़िया लाभ मिलत है, और साथ ही साथ अपन जौन खेती किसानी में चन्नर भैया जौन भैया देखा चाहे चना होए चाहे मटर होए चाहे धान के देखा फसल होए, जौन भी अपन देखा अपन दाना तो अपन मिलते बा, साथ ही साथ जौन चारा है भूसा है यह भी अपन खेती किसानी से होत है, तो अपन पशुओं का भी भरपूर मिलत है, हरा चारा भी मिलत है भैया देखा, साग सब्जियन की खेती बा तो अमन निराई है गुड़ाई कीहल से भी अपन घास फूस तो निकलते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो अपन किसान भैया बहनी हरे
1: एक चीज भाई।

0: तो सब्जियों की बात की है ना,
1: हाँ
0: तो भाई सब्जी के भी नगदी फसल के रूप में एका किसान भाई उगाए के
1: हाँ
0: अच्छा भैया ऐसी फायदा ले सकते हैं।
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: सब्जी की फसल बात अच्छी प्रजाति है इनका, अगर लगावत बाटे सब्जी में
1: हाँ हाँ
0: तो भाई जवन भाई फलत होए ओका तोड़ाएं, ओका समय पे तोड़ के बाजार में ले जाएं, या
1: हाँ
0: भाई जवन है आजकल तो भाई हर गांव के आसपास जो ना है मंडी के नज़दीक बाटी भैया,
1: कहिए
0: अगर
1: बात।
0: ज़्यादा उत्पादन होत बे तो मंडी स्तर पर ले जाके बेच के अच्छा फायदा ले सकत हैं।
1: हाँ और साथ ही साथ अपने भैया चन्नर देखा गांव गिराम अभी अड़ोस पड़ोस अगल बगल भैया देखा अपन जौन साग सब्जियन के जौन अपन दुकान दौरी होत बा बेचत है किसान भैया बहनी हरे, तो रोज भैया देखा साग सब्जी की जरूरत होत है तो यहाँ तक कि गाँव में गाँव में भी देखा साग सब्जियन बिक जात है। हाँ शहर नगर में भी साग सब्जी के जौन है बिना काम ही नहीं चलता, तो साग सब्जियन से भी 4 पैसा की आमदनी होत है। किसान भैया बहनी हरे कई देखा चाहे जौन भी फसल बोवें चारी ओर से भैया देखा 4 पैसा की आमदनी होत है वो।
0: तो निश्चित तौर पर भाई देखा सब्जी उगाए से भाई अपने घर के लिए भी जरूरत की चीज़ मिले, दो
1: हाँ
0: पैसा ओका बेच के भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: हाँ
0: पशुपालन भैया अपन भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, अगर दूध का उत्पादन होए
1: कही
0: और दो
1: बात।
0: पैसा बेच के उसी कमाए भी सकते हैं,
1: हाँ
0: तो भाई इन्हन बातन पर अगर ध्यान दें तो निश्चित तौर पे गांव में भी रह के खुशहाल रही और दो
1: हाँ
0: पैसा हाथ में भी आए।
1: बिल्कुल बात सही कहे हो।
0: अब देखा हो सोचता है कि कुछ राजमण घायल और संघाती के भाई एक गौनई और सुनवाइए,
1: अच्छा
0: तब फिर
1: अच्छा
0: बत कही होत रहे।
1: हाँ हाँ तो सुनवाई दिया।

0: हाँ भैया
1: चंदन भैया।
0: देखा, राजमन घायल और संघाती के भाई उन गावा निर्गुण रहा, बहुत
1: हाँ
0: सुन लिया गया।
1: हाँ
0: एक बात और भैया कि देखा हो, कहा जाता ना कि भाई जो न मौसम होता ना,
1: हाँ
0: मौसम के हिसाब से, मौसम के देखते भय अगर खेती बाड़ी के काम किया जाए तो निश्चित तौर पे भाई जो ना है उसी जो नुकसान होए के डर रहा था ना,
1: हाँ हाँ
0: वो नुकसान होए के संभावना कम होत है।
1: कहीं गए हो।
0: अब भाई देखा बरसात का मौसम तो हवे की है,
1: हाँ
0: भाई देखा ये अलग बात है कि भाई भाई जितना उम्मीद किया जात रहा
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: उतना बारिश ना ही समझ में आवत है।
1: हाँ
0: लेकिन भाई देखा धान के खेती बात एक अगर संभाले रह जाबे
1: हाँ
0: तो निश्चित तौर पे देर सवेर पानी बरसबे करे, और जब पानी बरसे तो निश्चित तौर पे भाई समय पर अगर धान लगा रहे तो भाई निश्चित तौर पे खेती अच्छी होए।
1: कहीं गए चंदन भैया। देखा
0: और हाँ
1: टेम
0: ये
1: टेम से वर्षा हुई, मतलब भैया खेती किसानी में आपन जो है कोनो तरह की किसान भैया ढिलाई ना करे।
0: हाँ एक बात और जो ना भाई कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया की बात कही जाते हैं ना
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: खेती बाड़ी से संबंधित जौन भी कार्यक्रम प्रस्तुत होत बा, कैसन लागत बे किसान भाइन के,
1: हाँ हाँ
0: समय समय पे प्रतिक्रिया भी होकर भेजत रहें तो
1: हाँ
0: निश्चित तौर पर उसी कार्यक्रम और गुणवत्ता अच्छी आए।
1: कहिए।
0: तो हम एक व्हाट्सएप नंबर पर वह बता देता ही,
1: हाँ हाँ
0: वो पे
1: बताओ
0: अपन प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। तो 800-4926-250 भैया जो है व्हाट्सएप नंबर पे, इस पर अपन प्रतिक्रिया भेजें। और
1: कहिए।
0: देखा धीरे धीरे चलोग बेला हो तो पंचों से विदा लिया जाए, चल
1: तो
0: जाए
1: हाँ तो
0: छः
1: पंचो
0: पंचों
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश समेत

0: चार राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा को पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से करेंगे। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होगी, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन समेत 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर यात्रियों के बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने समेत कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज वाराणसी में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्रदेश के ग्राम विकास विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा।
1: विकसित भारत जी राम जी है, इसमें पीएम गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है। जो सड़क पहले लोग बनाते थे, गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनावे, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। पीएम गति शक्ति का मतलब है कि अगर आपने गाँव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़ेगा।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
2: विकसित भारत जीरामजी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में एक घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अपने गाँव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं, यह आपके ऊपर।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने आज एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर आज सुबह लगभग 1 घंटे दोनों से पूछताछ भी की। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरेल आरक्षित वन में देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली

0: वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर कल ये आदेश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को नाइट सफारी का काम शुरू करने से पहले विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने और अनुमतियां प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने बताया कि नाइट सफारी राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी श्रद्धालुओं ने रथ यात्राएं निकाली। वाराणसी में 3 दिवसीय ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का आज शुभारंभ हो गया है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती में भाग लेकर सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। हापुड़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा से सुशोभित रथ को श्रद्धालुओं ने बारी बारी से खींचा। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती गई और ड्रोन कैमरे की मदद से रथ यात्रा पर निगरानी रखी गई। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया रूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जलस्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जलस्तर की सूचना दे दी जाएगी।
0: मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा को 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी।

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रियंका द्विवेदी की कहानी।
2: आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आज एक कहानी जिसका शीर्षक है अधूरी प्रेम कहानी। आज से करीब 2 महीना पहले शोभित जिस कंपनी में मैनेजर था, वहीं समीक्षा भी एक छोटी सी नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई थी। शोभित ने उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उसे नौकरी पर रख लिया। समीक्षा के पास वैसे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी शोभित ने उसे काम पर रखा और धीरे धीरे वह काम सीख भी गई। कुछ समय के बाद समीक्षा का प्रमोशन हो गया, जिसके लिए वह शोभित का हमेशा एहसान मानती थी और अपने घर पर भी शोभित की तारीफ करती थी। उसकी बातों को सुनकर एक दिन उसकी मम्मी ने उससे पूछा, समीक्षा कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, ऐसा कुछ भी है तो मुझे बता देना। नहीं मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? समीक्षा ने बात को टालते हुए कहा। अरे कहाँ मैं और कहाँ वो मेरी कंपनी के सर, भला हम दोनों का क्या मुकाबला? मेरी तो उनसे कोई बराबरी भी नहीं है। मेरे जैसे करीब 100-200 एम्प्लाई को वो अकेले संभालते हैं, भला हम दोनों के बीच में प्यार कैसे हो सकता है? यह कहकर समीक्षा अपने कमरे में चली गई। समीक्षा को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कहीं मम्मी की बात सच तो नहीं है? क्या पता वो मुझसे प्यार करते हों। लेकिन नहीं, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, भला मुझ जैसी मामूली एम्प्लाई से सर कैसे प्यार कर सकते हैं? इसी उधेड़ बुन में पूरी रात बीत गई। सुबह जब समीक्षा ऑफिस पहुंची तो शोभित ने कहा, समीक्षा आज मेरे साथ चलो, मीटिंग में चलना है। कुछ ही देर में समीक्षा और शोभित दोनों एक कैफे में पहुंच गए। शोभित किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर के बाद शोभित ने फोन काटा, दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की। कॉफी पीते पीते शोभित ने कहा, समीक्षा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? समीक्षा अचानक से उसको बहुत झटका सा लगा, जैसे अभी वो नींद से जागी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट क्या करे। आखिर ये सब जो अचानक से हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मन से तो चाहती थी, लेकिन बिल्कुल उसे यकीन ही नहीं हुआ जो सर बोल रहे थे। अरे सर, आप क्या कह रहे हो? सर आप कहाँ और मैं कहाँ? भला हम दोनों की क्या बराबरी हो सकती है? और आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? मेरे जैसे तो ना जाने कितनी लड़कियाँ आपके अंडर में काम कर रही हैं। शोभित बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं थी। मैं काफ़ी दिनों से तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे, या मैं तुमसे इस विषय में कभी कोई बात नहीं करूंगा। हम वैसे ही स्टाफ की तरह काम करेंगे। समीक्षा बोली, सर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए, अचानक से इतना बड़ा फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ? शोभित ने आगे कहना शुरू किया, समीक्षा तुम अपना समय तय कर लो। समीक्षा बिना कुछ बोले उठ करके चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जो हो रहा था। एक तरफ तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके रात का सपना सच हो रहा हो, और दूसरी तरफ उसे लग रहा था इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भला वो मुझसे क्यों शादी करेंगे? आखिर मेरे लिए उनके मन में ये भाव कैसे आए? जिस आदमी के लिए इतनी सारी लड़कियां पलके बिछाए बैठी होंगी, भला वो मुझसे क्यों प्यार करेगा? अब तो दोनों ऑफिस में धीरे धीरे मिलने लगे। समीक्षा ने भी इस बात को सहजता से लिया और धीरे धीरे शोभित की आदत में घुलने लगी। अब दोनों प्लानिंग कर रहे हों, जैसे शादी कहाँ करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, घर के पर्दे कैसे होंगे, शादी में किसको बुलाया जाएगा, कितनी आलीशान शादी होगी। अब तो दोनों के परिवारों ने भी यह बात मान ली थी और दोनों लगभग लगभग खुश थे। परिवार वाले भी शादी से बहुत खुश थे और सभी लोग मिलकर के पूरी शादी की तैयारी करने लगे थे।

0: तभी ऑफिस में ही काम करने वाली सुनीता, जो कि शोभित को मन ही मन पसंद करती थी और उससे शादी के सपने देख रही थी, उसको पता चला कि कुछ महीनों में ही आई हुई लड़की समीक्षा इतनी जल्दी शोभित के साथ मिलकर मालकिन बनने के सपने देख रही है, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने झूठे केस में शोभित को फंसा दिया। शोभित को जेल हो गई और सभी के सामने शोभित की बदनामी होने लगी, क्योंकि लड़की का मामला था, वहां तो लड़के को ही दोषी माना जाएगा। सब कहने लगे, नहीं नहीं शोभित ने ही सुनीता को छेड़ा होगा। शोभित अपने अंडर में बहुत सारी महिलाओं को जॉब देता है और जॉब के बहाने मजबूर और बेबस लड़कियों के साथ इस तरह की अश्लील हरकत करता है। इसके खिलाफ, इसकी कंपनी के खिलाफ और इसकी छवि के खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। सब लोग एक साथ मिल करके शोभित के खिलाफ हो गए थे और सभी जो कंपनी के स्टाफ थे वो भी शोभित को ही गलत मान रहे थे। इधर शोभित की इतनी सारी बदनामी होने के बाद समीक्षा के परिवार में भी सभी लोग समीक्षा के और शोभित के रिश्ते के विरोध में आ गए थे। समीक्षा का घर पूरी तरह से समीक्षा को शोभित से दूर करना चाहता था और मिलने जाने पर भी पाबंदी लगाने लगे। किसी तरह से शोभित से उसका नाम जो जुड़ा था उसको तोड़ने में लग गए। अब समीक्षा बिल्कुल अकेली हो गई थी, जो कि अंदर ही अंदर रात दिन रोती और उसकी हालत निरंतर खराब होती जा रही थी। लेकिन किसी को भी उसके इस हाल से फर्क नहीं था। बस कोशिश ये थी कि शोभित से किसी तरह समीक्षा को अलग कर दिया जाए, क्योंकि एक बदनाम लड़का किसी लड़की से जुड़ करके सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही देगा। समीक्षा के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया और पूरी तरह से मन बना करके अब शोभित के घर वालों को भी ये बात बता दी। लेकिन समीक्षा ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया था कि कैसे भी करके मुझे शोभित को बचाना है, भले ही मेरे माँ बाप शादी करें ना करें, लेकिन मुझे शोभित को बचाना है, शोभित निर्दोष है। अब समीक्षा ऑफिस जाने लगी और ऑफिस में सारे सबूत इकट्ठा करने लगी। पूरे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। शोभित सुनीता से कब बात करता है, कब उसने अकेले में सुनीता से मिलने के लिए कभी बुलाया या फिर मिला, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो वो सब कुछ पूछताछ करने लगी, सारे कैमरे खंगालने लगी, सारे स्टाफ से, यहाँ तक कि स्वीपर से भी उसने बात की। धीरे धीरे करके सारे स्टाफ को समीक्षा की बातों में सच्चाई दिखने लगी और उन्होंने समीक्षा का साथ देना शुरू किया। अब सारे लोग मिल करके सारे सबूत इकट्ठा किए और जब कोर्ट में बयान हुआ तो शोभित के पक्ष में बयान आया। शोभित को बाइज्जत बरी कर दिया गया और ये पाया गया कि सुनीता ने अपनी मानसिक स्थिति के चलते शोभित को नीचा गिराने के लिए और समीक्षा से विवाह न हो पाने की स्थिति के लिए ऐसा झूठा आरोप लगाया था। इस पे अब जब शोभित कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ तो सीधे समीक्षा के घर वालों से मिलने पहुंचा और साथ में उसके मम्मी पापा सब लोग थे, जो कि सामान शगुन का लेकर के पहुंचे थे और समीक्षा का हाथ मांगने के लिए। इधर समीक्षा के घर वाले अपनी ही नज़रों में गिर चुके थे, क्योंकि उन्होंने तो सारा जितनी भी कसर थी वो कोई बाकी नहीं रखी थी और शोभित के साथ बिल्कुल ही अपने रिश्ते को ख़त्म करके उसे गुनहगार समझ लिया था। लेकिन जब शोभित और उनके माता पिता को घर आया देखे तो समीक्षा के घर वालों ने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया और कहा कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, शोभित वास्तव में हीरा है और हमारी हैसियत नहीं थी ऐसा हीरा ढूंढने की, परंतु आप सब ने पहल करके स्वयं हमको ये मौका दिया है, हम उसकी कीमत नहीं पहचान पाए, हमें क्षमा करिएगा। शोभित की माँ समीक्षा के सर पे हाथ रख के बोली, बेटी आज तुमने मेरे बेटे को बचाया है, तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, अब तुम अपने घर चलो। शोभित की माँ की बात सुनकर समीक्षा और उसकी माँ की आंख से आंसू बहने लगे थे और सभी एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। इधर शोभित ने धीरे से समीक्षा को देखा और उसका हाथ पकड़ के बोला, समीक्षा अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तुम मेरे लिए मेरा लकी चार्म हो, समीक्षा हम बहुत जल्दी शादी करेंगे। समीक्षा की आंखों से आंसू बहते हुए शोभित ने जैसे ही आंसू पोंछे वैसे ही समीक्षा शोभित के गले लग गई।
1: अभी आपने सुनी प्रियंका द्विवेदी की कहानी अधूरी प्रेम कहानी। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: कहाँ?
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं अंकिता चतुर्वेदी। सुनते हैं इनके स्वर में भजन। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं मीराबाई की रचना, गायिका अंकिता चतुर्वेदी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अंकिता चतुर्वेदी के स्वर में भजन। अब आपको सुनवाते हैं कबीर दास की रचना, गायिका अंकिता चतुर्वेदी।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
1: उस

लता मंगेशकर को भी आपने सुना फिल्म यादगार में, गीत इंदिवर का था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में झुक गया आसमान फिल्म का गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और इसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

आदमी और इंसान, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और बलवीर की, गीत है साहिर का और इसकी धुन बनाई है रवि ने।

महेंद्र कपूर के गाए इस गीत के साथ ही चितपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं?

लाखों श्रद्धालु और भक्तजन। कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहाँ उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के

वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन और द्वार के समीप था। लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखना

0: सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पुरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्यौहार की तरह इसको मनाया जाना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज़ की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं चंद्रू आत्मा के स्वर में भजन।

0: पंकज उदास की गाई इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता।

0: विविधता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा

0: इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
3: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की

0: हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 1 डॉलर की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। इंडिया अचीव्स मेजर माइलस्टोन ब्रिंगिंग ओवर 1 बिलियन सिटीजन्स अंडर सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between India and host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions.

0: Stock Exchange, the mid-cap 100 dropped 0.4% and the small-cap 100 index fell by 0.1%. In the forex market, the rupee depreciated by 9 paisa to close at 96 rupees and 35 paisa against the US dollar. With Ayushi's report, Anubha Rohatgi for Akashwani News.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast enhanced rainfall activity over east and northeast India, eastern Uttar Pradesh and western Himalayan region during the next 7 days. Isolated extremely heavy rainfall is also likely to prevail over Odisha today. The weather department said that Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh are expected to experience isolated to scattered rainfall tomorrow. According to IMD, similar conditions will also prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab during the next 3 to 4 days and Rajasthan till the 22nd of this month. On to sports now. Two Indian men boxers clinched gold while three others bagged silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta today. India concluded its campaign at the championships with strong performances in the finals. Vishwanath Suresh in 50 kilograms and Ganga in 55 kilograms won gold in the Under-23 men's category. Vanshaj in 65 kg settled for silver. In the Under-19 men's finals, Aditya in 55 kg and Shubham Rajput in 90 kg also finished with silver medals. In men's cricket, India have set a target of 234 runs for host England in second one-day international of the three-match series at Cardiff. India were all out for 233 in 44 overs. Earlier, England skipper Harry Brooke won the toss and opted to field. India had defeated England by 6 wickets in the first one-day international in Birmingham on Tuesday. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu outclassed world number 5 Han Yu of China to storm into the quarterfinals of the Japan Open in Tokyo today. She will next face Nozomi Okuhara of Japan tomorrow. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the US to set up the title clash with European powerhouse Spain. The summit clash will be on Sunday night at New Jersey Stadium in the US. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. Two Indian men boxers clinch gold while three bag silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And in men's cricket, India set a target of 234 runs against host England in second ODI in Cardiff. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत ने समाजी तहफ्फुज के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संगे मील उबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। और मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत में समाजी तहफ्फुज का दायरा 1 अरब से तजावुज कर गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में समाजी तहफ्फुज की कवरेज जो साल 2015 में 19% थी, साल 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा शहरी

0: समाजी तहफ़ के दायरे कार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जींद रेलवे स्टेशन से जींद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन तैयार और इंजीनियर की गई है। इसकी तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले से ही कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है, ताहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। माफ कीजिए, ये रिपोर्ट हम आपको बाद में सुनवाएंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ जाएंगे जहां वो 6,600 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम और सड़कों के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता हैं। इसके बाद जनाब मोदी जालंधर जाएंगे जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और खित्ते की माशी तरक्की को रफ्तार फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अज़सर-ए-नौ तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतजिर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स अवाम, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। ज़िराअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली जैसे चैलेंजेस के बावजूद भारत ने इस साल 376 मिलियन टन गजाई अजनास और 377 मिलियन टन बागबानी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार का रिकॉर्ड कायम किया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब साइंसदान बराह रास्त खेतों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,657 साइंसी टीमों ने 728 जिलों में खासतौर पर एल नीनो से मुतासर इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ किसानों से राबता कायम किया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बाय फोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मिशन आईसीआर 100 के तहत 100 यंग साइंटिस्ट ग्राम चैलेंज का आगाज करेगी जिसमें नौजवान साइंसदान मसनूई जहानत, AI, रोबोटिक्स, जदीद ज़राअत और आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से स्मार्ट ज़राअत जैसे शोबों में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से 100 स्मार्ट गांव भी तैयार करेगी जो पायदार, जदीद और आबोहवा की तब्दीली से हम आहंग ज़राअत के मिसाली नमूने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रई तहकीकी भारती काउंसिल ICAR ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 बेहतर अकसाम तैयार की हैं जिनमें 94% आबोहवा की तब्दीली के खिलाफ मज़ाहिम फसलें और 29 अकसाम गजाइत से भरपूर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी इदारों, सनत और रियासती हुकूमतों के दरमियान मजबूत इश्तराक की अपील की ताकि मुल्क भर में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा टेक्नोलॉजियों के बड़े पैमाने पर निफाज को यकीनी बनाया जा सके। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की एक साल तवील प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बुनियादी ढांचे की भारत की गैर मुतवक्क तौसी ने साइंसी इदारों को सड़कों, पुलों और ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों में ताउन करने का अहम मौका दिया है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके दमन के लिए एक अहम संग मील के तौर पर आज नए तामीर शुदा नमो हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली कमर्शल परवाज का आगाज किया गया। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने मजकूरा हवाई अड्डे पर एक खसूसी तकरीब में इस पहली परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेशरफ्त हाल ही में वजीर

महबूब की जुल्फों का जिक्र उर्दू शायरी की सबसे खूबसूरत परंपराओं में से एक रहा है। कभी ये जुल्फें मोहब्बत का साया बनती हैं तो कभी दिल की बेचैनी का सबब। अब आपको सुनवाते हैं मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में एक ऐसी ही दिलकश गज़ल जिसमें इश्क की नज़ाकत, यादों की खुशबू और जज्बात की गहराई बेहद खूबसूरती से समाई हुई है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, गज़ल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो कम शब्दों में दिल की गहरी से गहरी बात कह जाती है। रिश्तों में विश्वास, अपनापन और सम्मान की भावना ही उन्हें मजबूत बनाती है। लेकिन जब अपने ही लोग गलतफहमी या शक की नज़र से देखने लगें तो दिल पर सबसे गहरी चोट लगती है। चित्रा सिंह की सादगी और दर्द से भरी आवाज़ इस एहसास को बड़ी शिद्दत से अभिव्यक्त करती है। उनकी गायकी में एक ऐसी आत्मीयता है जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचती है। जो गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं उसका हर शेर भरोसे, संवेदनाओं और रिश्तों की नाजुक डोर की कहानी कहता है। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की भावपूर्ण आवाज़ में।

आखिर में आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की गाई वो गजल जिसके शब्दों में विरह की कसक है, इंतजार की बेचैनी है और मोहब्बत की वो खामोश पुकार है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। आइए सुनते हैं।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम समाप्त करने की अंशुमान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं कुर्बानी फिल्म के गाने के साथ, जिसे गाया है मनहर उदास आनंद और कंचन ने। गीत है इंदिवर का, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

पत्थर के सनम, आइए सुनते हैं इस फिल्म में मुकेश को। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कभी कभी फिल्म का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत है साहिर का और संगीत खयाम का है।

टूटते खिलौने, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गायक कलाकार हैं यसुदास। गीत रचना कैफी आजमी की है और इसकी धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

ये है अनामिका फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत मजरू का है और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्री गौरी शंकर का क्लेरियोनेट पर बजाया राग यमन।

अभी आपने सुना श्री गौरी शंकर का क्लैरिनेट पर बजाया राग यमन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग

0: पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: जग बंधु हे गोसाई।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
4: India's hydrogen train features a 10 coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi today held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring